0: एक दो कैजुअल्टीज हुए, लेकिन उन लोगों का हमने पूरा खात्मा कर दिया वहां पे, उस जगह से उनको उखाड़ फेंका। तो ये क्योंकि फैसिलिटीज मिल रहे हैं, वेपन भी मॉडर्न वेपन सारे मिल गए, दैट वन एंड नाइट विजन डिवाइसेस वगैरह दिए गए ताकि रात को एम्बुश में बैठे अगर कोई आता है तो मालूम पड़ जाए नाइट विजन डिवाइसेस। तो इन चीजों से हम काफी फायदा, हालांकि ये पंजाब में भी हमने यूज किया हुआ था
1: जी
0: नाइट विजन डिवाइसेस, लेकिन यह काफी तादाद में जब वहां यूज किए। अब नाइट एंड डे ऑपरेशन में आपको रात के समय भी पूरे अलर्ट रहना पड़ता है। तो जंगलों में आप रह रहे हो, वहीं पे खाना खा रहे हो, वहीं पे कुकिंग चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो वैसे हालात में जरूरी है कि उनके पास ऐसे सारे मॉडर्न इक्विपमेंट वगैरह हो।
1: तो पूरे देश को आपको धन्यवाद करना चाहिए, डिफेंस फोर्सेस जो आप लोग वहां तैनात होते हैं, इसीलिए हम लोग आराम से सोते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जो आप कह रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर का या एमएसएमई या स्टार्टअप्स का आना डिफेंस प्रोडक्शन में बहुत एक उत्साहजनक डेवलपमेंट है, तो इसमें जो डिफेंस एक्विजिशन रिफॉर्म्स हैं, डिफेंस प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म्स हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बता सकते हैं कि अभी क्या स्थिति है?
2: देखिए, डिफेंस एक्विजिशन में भी, और ये मैं कहना चाहूंगा, जो मौजूदा डिफेंस सेक्रेटरी साहब है, ही हैज डन सम आउटस्टैंडिंग वर्क। जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है, उनमें एक मूलभूत रूप से सुधार लाए। जैसे मैंने आपको बताया, एचएएल की प्रतिस्पर्धा में टाटा एयरबस को खड़ा किया गया, सो दैट एचएएल स्मार्टन्स अप, सो दैट आर पीएसयूज आर चैलेंज। देखिए आज चीन में क्या हो रहा है, जो प्रतिस्पर्धा है, जब चीन में आज एक एंटरप्रेन्योर सुबह उठता है, ही डज नॉट बॉदर अबाउट द अमेरिकन कंपेटिटर, ही इज मोर बॉदर अबाउट द चाइनीज कंपेटिटर। प्रतिस्पर्धा इतनी ज्यादा है कि जो 100 कंपनीज हैं, 5 बचती हैं, और ये 5 कंपनीज वैश्विक स्तर पे कंपीट करने की काबिलियत रखती हैं। सो वी नीड डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन सो दैट द क्वालिटी ग्रोज। तो ये इस क्षेत्र में बहुत सुधार हुआ। और देखिए दूसरी बात जो मैंने कही, आज आप यूक्रेन देखें, सॉफ्टवेयर इनोवेशन, पहली बात, रक्षा क्षेत्र में हमेशा हम बात करते थे प्लेटफॉर्म्स की, सू-30s, जैगुअर्स, एयरक्राफ्ट के, आज बात हो रही है सॉफ्टवेयर की, मेवन क्लॉड का इस्तेमाल हुआ है वेनेजुएला में, मशीन इनेबल्ड टारगेटिंग, डेल्टा जो यूक्रेन में, इट इज एआई इनेबल्ड डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, लैटिस जिससे ड्रोन स्वार्मिंग हो रही है। आप देखते हैं आजकल 2000 ड्रोन, ये ऐसे ही थोड़ी ना स्वार्म करते हैं, देयर इज सॉफ्टवेयर। अब इस सॉफ्टवेयर में निवेश हो रहा है, और ये जो सॉफ्टवेयर है ये 2 हफ्तों में तब्दील हो रहा है, हार्डवेयर 4 हफ्तों में तब्दील हो। अब जब ये तब्दीलियां हैं 2-4 हफ्ते की, दे के नॉट बी ड्रिवन बाय अ प्रोसीजर विच यू परफेक्ट इन ईयर्स। अब ये हमारे सामने एक चुनौती है। प्रोक्योरमेंट में काफी रिफॉर्म्स हुए, और रिफॉर्म्स की जरूरत है। देखिए पहले क्या करती थी फौज, यूज टू ले आउट अ GSQR, जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट, कि साहब हमको इस प्रकार का जहाज चाहिए, उसके ये फीचर्स होंगे, आप बनाएं। आजकल जो बाहर प्रोड्यूसर्स हैं, पामन लकी कहते हैं, यू आर नोबडी टू टेल मी द प्रोडक्ट यू वांट, आई विल गिव यू अ प्रोडक्ट दैट यू कांट रिफ्यूज। ये हकीकत हो रही है। अब GSQR, बाहर लोग बोलते हैं GSQR इज डेड। तो मैं ये कह रहा हूं कि प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म बहुत हुआ है, बट कंसिडरिंग वॉट इज हैपनिंग इन द फ्यूचर, वी नीड मोर रिफॉर्म। देखिए हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि हुई है डिफेंस एक्सपोर्ट्स, विच इज लिंक्ड टू प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म एंड ऑल। मैं आपको बताऊं कैसे, हम जब बाहर जाते थे 2005-06 में, तो लोग कहते थे थर्ड वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट आर्मी, कहते थे बहुत बढ़िया है, आप ये हमको ये बताएं कि आप किस प्रकार के असले निर्यात करते हैं। हम कहते साहब ये हमारी नीति नहीं, देयर वाज नॉट अ पॉलिसी, वी डिडंट एक्सपोर्ट। टुडे द लास्ट फिगर्स वर आर राइट, इन फैक्ट आई वाज हियरिंग द ऑनरेबल रक्षा मंत्री, 38,000 crores। अगर आप इसकी तुलना करें 2014 से, दिस इज अ 5,500% की उछाल है,
1: और 80 देशों में जा रहा है।
2: 80 देशों में, जैसे आपने कहा, आर्मेनिया, थाईलैंड, इजिप्ट, बेल्जियम, कुछ यूएसए में भी कुछ हमारे प्रोडक्ट्स जा रहे हैं। 145 फर्म्स हैं, एमएसएमईज वगैरह सब मिला के, विच आर डीलिंग विद दिस। आप हथियार देख लें, ब्रह्मोस, आकाश, 155 तोपखाना, ध्रुव हेलीकॉप्टर्स, पैराशूट्स, प्रोटेक्टिव क्लोदिंग, और ये आप देखें, दिस इज ऑल्सो जियोपोलिटिकल लीवर, जिसे कहते हैं भू राजनीतिक अस्त्र है, इट इज फॉर इन्फ्लुएंस, प्रभाव, फॉर लेवरेज, इट इज फॉर स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट। हमने किस तरह से वियतनाम, फिलीपींस को ब्रह्मोस दे के चीन को घेरा है। सो एक्सपोर्ट्स आर अ जियोपोलिटिकल लीवर, दे आर अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, दे मेक सो मच सेंस, एंड आई थिंक दिस इज वन एरिया वेर वी हैव, इन फैक्ट वी आर मूविंग फ्रॉम बींग इम्पोर्टर्स फ्रॉम द वर्ल्ड to exporters to the world.
1: इनफैक्ट जो पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट आई हैं 10 अभी तक, जिसमें लगभग 5,500 से अधिक आइटम्स हैं, आपको लगता है ये भी एक बहुत अच्छी पहल है? जब आप आत्मनिर्भर भारत बनने की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, उस दिशा में जब आप इस तरह से एक ईयर मार्क करते हैं कि ये प्रोडक्ट्स यही बनेंगे, तो एक विश्वास भी आप जता रहे हैं अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज में, और वो अब दिखाई भी दे रहा है एक्सपोर्ट्स।
2: विश्वास ही नहीं, अनिवार्य था। देखिए हो क्या रहा था, मैं आपको बताऊं हकीकतन हो क्या रहा था। मान लीजिए टैंक है भाई, हम तो अगर नवाचार नहीं जुगाड़ में तो हम बहुत बढ़िया थे, हम कहते थे वी कैन यू नो क्रिएट एनीथिंग, बट हो क्या रहा था कि एक टैंक का पाइप वॉशर ट्रैक हर चीज हम इम्पोर्ट कर रहे थे, एंड वी वर पेइंग एट डॉलर्स, वी वर पेइंग एट रूबल प्राइसेस, फॉरेन एक्सचेंज का नुकसान हो रहा था, तो भाई एक नट क्यों नहीं बन सकता है भारत में? तो हमने पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन का तात्पर्य यह था कि भाई ऑल दीज थिंग्स यू विल नॉट इम्पोर्ट, आप यहीं बनाएंगे और एमएसएमईज बना सकते हैं। आजकल तो भाई वी आर मेकिंग एडवांस्ड एयरक्राफ्ट के हम विंग्स छोटे छोटे उसके पुर्जे बना रहे हैं। तो जब आपने ऐसे पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट बनाए कि ये आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते, आप करेंगे, पहले लोग डराते थे कि सर अगर ये नहीं आए तो जहाज में क्या होगा, बट हम जो राजनीतिक नेतृत्व थे उन्होंने कहा ये आएंगे नहीं, जब नहीं आए तो हमने बना लिए। सी इंडियंस आर वेरी गुड, हमने डीपीआई नहीं किया है, बट थोड़े आलसी हो जाते हैं कभी कभी, तो सो वी सेट पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन, ये आप सब इम्पोर्ट करेंगे नहीं, नो नोइंग फुल्ली वेल दैट वी कुड मेक इट। तो इसका बड़ा फर्क पड़ा है, जो हमारी इम्पोर्ट के खर्च था वो कम हुआ, एंड नाउ दैट वी आर मेकिंग इट हियर वी परफेक्ट इट इन एक्सपोर्ट।
0: एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी कितने बढ़े, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज।
2: देखिए बुनियादी सवाल क्या था आईजी साहब ऑल्सो, पुरानी चर्चा क्या थी, डिफेंस वर्सेस डेवलपमेंट, सिक्योरिटी वर्सेस डेवलपमेंट, रॉन्ग, इट इज सिक्योरिटी एंड डिफेंस एंड डेवलपमेंट, सिविल मिलिट्री फ्यूजन साथ चलना है। सो दी जो मूल्यभूत जो चर्चा थी वही गलत थी, वी हैव टर्न्ड इट अराउंड, वी ग्रो अप इन साइलोस, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर, PSUs, प्राइवेट सेक्टर, एकेडमिया अपनी दुनिया में, अरे भाई एकेडमिया में एक आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, R&D नहीं होगी, प्योर साइंसेस नहीं होगा, कोई राष्ट्रीय सुरक्षा में तकनीकीकरण में तेजी आ ही नहीं सकती, एवरीबडी हैज टू इंटीग्रेट। सो देयर इज अ लार्जर कंसेप्चुअल चेंज ऑल्सो विच इज ड्राइविंग ऑल दीज आई वुड से मेगा रिफॉर्म्स।
1: ये जो कंसेप्चुअल चेंज की बात आप कर रहे हैं, इसका एक और रिफ्लेक्शन FTI, जो डिफेंस में FTI को लिबरलाइज किया गया है 74% तक वाया ऑटोमेटिक रूट एंड 100% वाया गवर्नमेंट, तो इसका थोड़ा सा बताएं सरल शब्दों में इसका क्या अर्थ है और ये कितना एक इम्पोर्टेंट रिफॉर्म है?
2: बिल्कुल, तो आप एक छोटी सी कहानी सुने, आई वॉज ग्रोइंग अप 1980s, आपको भी याद होगा, स्पेस इज एन एक्सक्लूसिव थिंग, फ्यू कंट्रीज टू इट, कंट्रीज आई एम एम्फसाइजिंग, सो USSR, USA, इंडिया वॉज ऑल्सो, बट हम विस्पर्स में बात कर, हमारे सिलसिले में क्या होता है, नेशनल सिक्योरिटी, only government can do it, only DRDO because it is exalted, lofty, aur us daire ke andar kya hua ki in this PSU complex a lot of shall I say slots slipped in, inefficiencies, aur usko protect karne ke liye humne kaha nahi private sector nahi aa sakta, dheere dheere kya hua bharat mein hi nahi vaishvik sthar pe private sector proved that it had efficiencies of its own, to FDI mein bhi yahi tha pehle, aur isko humne pehle kaise kaha investment प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा ही नहीं हो सकता, हमें क्यों नहीं हो सकता, प्रोडक्ट इज इम्पोर्टेंट, क्षमता महत्वपूर्ण है, चाहे वो सरकार से आए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से आए, चाहे वो स्टार्टअप से आए। सो उस तरह से ये जो FTI धीरे धीरे रिलैक्स किया गया है कंपनी स्ट्रक्चर्स में, PSU स्ट्रक्चर में, टू गिव अ लेवल प्लेइंग फील्ड। देखिए हमको PSUs या से कोई गिला नहीं है, ऑल दैट वी आर सेइंग, आप PSU हो, आप प्राइवेट सेक्टर हो, आप स्टार्टअप्स हो, आपके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड। And if you look at the future, पूरे विश्व में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इंटरसेप्टर्स की कमी, यू नीड रोबोट्स टू प्रोड्यूस एमिनेशन, सो आई एम सेइंग कि इंडिया में भी HAL, BEL, दे आर वेरी गुड कंपनीज, बट इनका आकार, इनका स्वरूप बदली करना पड़ेगा, दे हैव टू बिकम AI कंपनीज,
1: बिकॉज़ द डिलीवरी इज डिजिटल। स्टार्टअप रेवोल्यूशन जो आया है भारत में, और वी आर द थर्ड बिगेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड, वो एक बहुत बड़ा बल है डिफेंस सेक्टर के लिए भी, जिस तरह की आप बात करें कि कंपटीशन होना चाहिए और इनोवेशन होनी चाहिए उस दिशा में।
2: बिल्कुल, मेरा तो ये विश्वास है दैट द नेक्स्ट डिलीवरीज इन डिफेंस विल कम ओनली फ्रॉम स्टार्टअप्स, बिकॉज़ दे आर एजाइल, दे आर नॉट ब्यूरोक्रेटिक, नो, ये जो चीजें आजकल जैसे मैंने बताया, मेरे को तो ये लगता है, ये सब पता नहीं क्या कि सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट हुआ है AI और साइबर क्वांटम, ये राष्ट्रीय सुरक्षा में हुआ है, एंड मोस्ट ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज लाइक द कस्प ऑफ सिविल मिलिट्री फ्यूजन, जिसका इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा में है, सिविल स्पेस में भी है. आप देखिए 10 साल में कितना कमाल कर दिया. मैंने आपको नाम गिनाए थे, दीज आर जस्ट आईटी इंजीनियर्स. किसी ने गैराज में शुरू किया, किसी ने कुछ किया, बट दे हैव डिलीवर्ड. एंड आई एम ओनली टॉकिंग ऑफ द डिफेंस स्पेस. इन द सिविल स्पेस तो और भी हुआ है. सो आई विल गो बैक टुवर्ड द प्राइम मिनिस्टर. आई थिंक इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. Release the forces of innovation, energy and enterprise from the scourge of process and procedure. हमने जो इतने rules, नियम, शियम बना के रखे थे, that was throttling national security. उसको आजादी मिली है अभी.
1: सी चेंज है पूरे एटीट्यूड में अगर हम देखें पिछले 12 सालों में. मिस्टर फैतल, हालांकि हम इस पे बात कर चुके हैं, लेकिन बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, काउंटर टेररिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर. ये कितना इवॉल्व हुआ है और इसमें मजबूती कितना एक इम्पोर्टेंट उपलब्धि है हमारे जैसे देश के लिए.
0: एक काउंटर टेररिज्म के बारे में बात करें तो इट कवर द एंटायर कंट्री, राइट फ्रॉम J&K टू साउथ एंड इवन ईस्ट टू वेस्ट. और ज्यादा जो अफेक्टेड अभी है ये J&K है और नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट में भी तकरीबन खत्म ही हो चुका है, सिवाय मणिपुर के, जहाँ पे अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन अभी कोबरा बटालियन वहां पहुंच गए हैं. उसी तरह कोबरा बटालियन अब J&K में ही पहुंच गए हैं. सो दैट आर्मी इज रिलीव्ड ऑफ दिस इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी एंड कोबरा बटालियन अलॉन्ग विद अदर CRPF बटालियन आर ऑपरेटिंग इन दोथ एरिया. अब वहां पे भी स्थिति मुझे लगता है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा. और नॉर्थ ईस्ट में तो ऑलरेडी तकरीबन ठीक समाप्त हो गया. हालांकि कुछ है, एक तो उल्फा है आसाम में, जो कि अभी भी थोड़ा सा कुछ शरारत करता रहता है, लेकिन हमारे काबू में है. वो ज्यादा कुछ बड़ा ऐसे हंगामा नहीं कर सकता. लेकिन J&K में जो है वहां पर आर्मी राष्ट्रीय राइफल तो रहेगी और उनके साथ मिलके सिविल पुलिस के साथ मिलके आई एम श्योर कि आने वाले दिनों में वहां पे भी उसी तरह का पीस होगा जैसे कि 1989 से पहले था, और लोग और भी जाना शुरू कर देंगे.
1: सो इस ऑप्टिमिस्टिक नोट पर इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं. लेफ्टिनेंट जनरल शुक्ला, मिस्टर नथानियल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और भारत का जो रक्षा क्षेत्र है किस तरह से इवॉल्व हुआ है पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उस पर आपने प्रकाश डाला. बहुत बहुत धन्यवाद.
3: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 21वें संस्करण में अभी आप सुन रहे थे परिचर्चा राष्ट्रीय सामर्थ्य और सुरक्षा में आत्मनिर्भरता. इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के पूर्व महानिरीक्षक MP नथेनियल. कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं. इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं. ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अरुणा FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और इससे पहले दोस्तों आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित एक विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा। अब दोस्तों बारी है हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम का, तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत गीत के साथ, तुमसे नहीं देखा फिल्म से भीड़ में तन्हाई में उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाजों में।
1: सारे गमा कारवा 2.0

आशिक भनैया फिल्म से दोस्तों आप सुन रहे थे केके की आवाज में दिल नशे। इसी के साथ ही हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही देर बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। समाचार के उस पार हम लौटेंगे आप सबके पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। कल शुरू हुआ यह आयोजन 10 अक्टूबर तक चलेगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष का आयोजन 9 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है।
1: इस वर्ष के आयोजन में 5G और 6G, AI, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, क्वांटम कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यावरण से जुड़े तकनीकी समाधान जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर भी चर्चा की जाएगी। यह कार्यक्रम 4 नए क्षेत्रों स्मार्ट मोबिलिटी, स्टेडियम एक्सपीरियंस, औद्योगिक रोबोट और परिवहन तकनीक पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। कार्यक्रम में इस वर्ष 100 से अधिक देशों से 1.5 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। साथ ही 500 से अधिक साझेदार और प्रदर्शक, 600 स्टार्टअप और 900 विशेषज्ञ भी भाग ले रहे हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में GST से जुड़े विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। सरकार ने सिक्किम में रंगपो और रानीपुल के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 10 के विकास के लिए 993.64 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इस परियोजना के तहत इस मार्ग को पक्के किनारे वाले 2 लेन के राजमार्ग में उन्नत किया जाएगा। भारत ने अमरीका और 13

0: देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए एक संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा जारी इस साझा बयान का मुख्य उद्देश्य वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों पर रोक लगाना है। ये कदम हाल ही में अमरीका के विस्कॉन्सिन राज्य के मिलवॉकी शहर में हुई G20 देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक के बाद उठाया गया है। रूस ने यूक्रेन के कीव और करीब 12 अन्य क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए 70 मिसाइलें और कई ड्रोन दागे। यूक्रेन में कल हुए इस हमले से 25 लोगों की मौत हो गई और 100 लोग घायल हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने हमले की निंदा की है। आज भारतीय वायुसेना दिवस है। इस वर्ष का विषय है अचूक, अभेद्य और सटीक। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर कल आकाशवाणी से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना सतर्कता और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है।
1: परफॉर्मेंस इन ऑपरेशन सिंदूर।
2: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायुसेना के प्रदर्शन ने हमें गौरव से भर दिया है। हमने दुनिया को दिखाया है कि कैसे वायु शक्ति का उपयोग कर कुछ ही दिनों में निर्णायक सैन्य परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। साहसिक और सटीक हमलों ने राष्ट्र को उसकी ताकत और हवाई शक्ति के आक्रामक इस्तेमाल के महत्व को दिखाया है।
0: त्योहारों के सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे नई दिल्ली और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच आरक्षित विशेष रेलगाड़ियों के 2 फेरे चलाएगा। रेल संख्या 04083 नई दिल्ली कटरा 9 और 16 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे नई दिल्ली से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 3 बजे कटरा पहुंचेगी। वापसी की रेल 04084 कटरा नई दिल्ली 10 और 17 अक्टूबर को सुबह 10 बजे कटरा से रवाना होगी और उसी दिन रात 11:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेताओं में शामिल थे। कई दशकों के फिल्मी करियर में उन्होंने विभिन्न भूमिकाओं में अपनी पहचान बनाई। 1978 में आई फिल्म गमन से नाना पाटेकर ने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। फिल्म परिंदा में अन्ना की भूमिका को और अग्निसाक्षी में उनके नकारात्मक किरदार को लोगों ने काफी सराहा।
3: क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो? किस बात के लिए खुश हो इतने? अगर खुश हो तो खुश रहो, ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? तो कौन सा तीर मारा? ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर? और तुम्हारा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें? आवाज कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, लोगों की नींद हराम कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिवंगत नेता को निधन पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत कम अभिनेताओं में वो गहराई, अलग पहचान और दमदार मौजूदगी थी जो श्री नाना पाटेकर में थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन के निधन पर दुख व्यक्त किया है। पेचिंग में मानुष शाह और दिया चिताले ने इतिहास रचते हुए WTT चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the 10th edition of India Mobile Congress, IMC, at Yashobhoomi in New Delhi in a short while. The event showcases India's remarkable progress in telecommunications, digital connectivity and technological innovation, while providing a global platform for collaboration, investment and knowledge exchange. The theme of IMC 2026 is Scale Without Boundaries, reflecting India's growing capabilities in digital innovation, next-generation connectivity and technology-led growth. The 4-day event, which began yesterday, is being jointly organized by the Department of Telecommunications and the Cellular Operators Association of India. The 57th GST Council meeting will be held at Bharat Mandapam in New Delhi today. Chaired by Finance Minister Nirmala Sitharaman, the meeting will discuss policy reforms to resolve GST disputes and improve the flow of input tax credit with the aim of reducing the time and cost of compliance. Sources in the Finance Ministry said that the government will propose a 5-pronged plan for the next set of reforms to the GST system. These reforms are aimed at automating and easing a lot of the current administrative bottlenecks in the GST system and reducing the compliance burden, especially for small businesses. Veteran actor Nana Patekar passed away at the age of 75 after suffering a severe cardiac arrest at his residence in Goa this morning. Patekar was reportedly found unconscious at his home and was immediately rushed to a nearby hospital. As per preliminary analysis, doctors attempted to revive him for nearly 45 minutes, but he did not respond to treatment. Patekar, one of India's most acclaimed actors, was known for his performances across Hindi and Marathi cinema with a career spanning several decades. He earned widespread recognition for films such as Parinda, Krantiveer, Ab Tak Chappan and Welcome. Prime Minister Narendra Modi today expressed grief over the demise of the renowned actor of Hindi and Marathi cinema, Nana Patekar. In a social media post, the Prime Minister said that Mr. Patekar brought remarkable versatility and creativity to every role and gave characters that will be remembered for generations. The nation is celebrating the 94th anniversary of Indian Air Force today. Established on 8th of October in 1932, this momentous occasion marked the beginning of a vision for air power that would shape the nation's defense for decades to come. On this occasion, President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah have extended greetings to all air warriors, veterans and their families. India has joined the United States and 13 other economies in signing a joint ministerial statement calling for measures to address structural excess capacity and production and curb non-market policies that distort global markets. The joint ministerial statement signed by the 15 participating economies was released by the Office of the U.S. Trade Representative last night following discussions among G20 trade ministers in Milwaukee, Wisconsin on September 30th and October 1st, 2026. Government has sanctioned 993.64 crore rupees for the development of National Highway 10 between Rangpo and Ranipur in Sikkim. According to Union Minister for Road Transport and Highways, Nitin Gadkari, the project will upgrade the corridor into a two-lane highway with paved shoulders with major engineering works planned to improve safety and resilience in the challenging Himalayan terrain. India Meteorological Department has forecast heavy rainfall at isolated places over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Uttarakhand, West Bengal and Sikkim today. In table tennis, Indian paddlers Manu Shah and Diya Chitale created history by becoming the first Indian mixed doubles pair to reach the semi-finals of a WTT Grand Smash after beating Romania's Edward Inescu and Bernadette Soz 3-0 at the China Smash in Beijing yesterday. The fifth-seeded Indian duo won the quarterfinal 11-9, 13-11, 11-3. And that is the end of this news bulletin.
4: श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचारों को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब दोस्तों, सुबह के 10:10 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है आप सबका बहुत ही पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड।
5: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा।
4: प्यारे श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम में। आपके साथ में हूँ आपकी रेडियो दोस्त आरजे तुनिया। तो दोस्तों, बिना किसी देर के, बिना ज्यादा बातचीत के आइए शुरू करते हैं आज का रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम का ये सुरीला सफर। और सबसे पहला मैसेज हमें रोजाना की तरह आया है पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, श्रीवंश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप जी का। गौ परिवार ने आज रिक्वेस्ट करी है सौगंध फिल्म का लैला को भूल जाएंगे अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज के आवाजों में।

दोस्तों रेडियो अनुमान में आइए भरते हैं आगे अगले रिक्वेस्ट की ओर, जो हमें आया है बोखा खात असम से हर्षित गोस्वामी जी का। हर्षित जी ने आज रिक्वेस्ट करी है अपना सपना मनी मनी फिल्म से दिल में बजे गिटार, इस गाने को आवाज दी है अमित कुमार ने। तो आइए हर्षित जी सुनते हैं आपका पसंद का ये गाना।

0: जहाँ श्रोताओं आप बने रहे हमारे साथ आकाशवाणी टनगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहाँ हम करते हैं बात दिल से दिल तक। और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। दोस्तों लौटेंगे अगले मैसेज के साथ, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
1: अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम यानी कि ACWF अपना फर्स्ट एवर स्टेट लेवल सेमिनार आयोजित करने जा रहा है, जो होगा क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ESS सेक्टर ईटानगर नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक। इस सेमिनार के रिसोर्स पर्सन होंगे श्री जेम्स टेची तारा, प्रेसिडेंट अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम कम प्रेसिडेंट NBCC, एवेंजेलिस्ट गुमदे रिबा सोंगथिंग और एडवोकेट नाबम रामा गुवाहाटी हाई कोर्ट ईटानगर बेंच। अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम अरुणाचल प्रदेश के सभी विमेन हेड्स ऑफ डिनोमिनेशंस, हेड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिनोमिनेशंस और विमेन लीडर्स को इस सेमिनार में सादर आमंत्रित करते हैं। याद रखें, जगह है क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ESS सेक्टर ईटानगर नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक। धन्यवाद।
0: छोटे से ब्रेक के बाद दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम में। अब दोस्तों रेडियो ऑन डिमांड में अगली फरमाइश हमें आया है असम से सुनीता बसुमतारी जी का। उन्होंने रिक्वेस्ट करी है अंदाज फिल्म का आज कहना जरूरी है उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। तो सुनीता जी प्ले कर रहे हैं आपका पसंद का ये गाना।

अब दोस्तों बढ़ते हैं रिटर्न डिमांड में अगले मैसेज की ओर, जो हमें आया है बिमोल बसुमतारी जी से। बिमोल बसुमतारी जी ने रिक्वेस्ट करी है मिशन कश्मीर से, सोचो कि झीलों का शहर अदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। और बता दो बिमोल रहने वाले हैं धेमाजी मिसा के सपोरी असम का, और साथ ही हमेशा की तरह उन्होंने अपने ग्रुप को डेडिकेट करना नहीं भूला है। वो सुनना चाहते हैं अपने कुछ दोस्तों के साथ, कुछ नहीं बहुत सारे दोस्त हैं अमल बसुमतारी, गागी राभा, रुनु पात्रो, लकी पात्रो, वाइल मेहता, बाइको मुंदा, जोगेंद्र रोंगपी, देवशीष हजरिका, वीरेन हंसे, चुबाकी जमीर, कश्मीर अली, कासिम अली, सुनीता बसुमतारी और सभी आरजेस और रेगुलर लिसनर्स को उन्होंने डेडिकेट किया है। तो आइए आप सबके फरमाइश पर सुनते हैं सोचो की झीलों का शहर, उदित नारायण और अलका याग्निक की युगल आवाजों में।

0: जहाँ दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी टनगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप सुन रहे थे बिमल जी के रिक्वेस्ट पर सोचो कि जिलों का शहर। लौटेंगे दोस्तों एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि हम लौट आएंगे अगले मैसेज के साथ।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
4: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
3: बन गया बजट?
4: हाँ
3: 5,000 बच गए।
4: तो नई साड़ी ले ले।
3: ना पिछले महीने तो ली थी।
4: एक और
3: नहीं, पहले बजट बनाओ कि छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
4: बढ़ी है।
3: जाओ भाई।
5: RBI कहता है
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: दोस्तों आज सुबह ही सिनेमा जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। वेटरन एक्टर नाना पाटेकर जी अब हमारे बीच नहीं रहे। अपनी दमदार एक्टिंग, उनकी आवाज और डायलॉग डिलीवरी और हर किरदार को अपने खास अंदाज में निभाने के लिए नाना पाटेकर जी हमेशा याद किए जाएंगे। और उनकी याद में डेडिकेट करते हुए सरिहाजान, कार्बी आंगलोंग असम से जोगिंद्र रोंगपी, सोनाली इंटीपी, दौरमप्री रोंगपी ने रिक्वेस्ट करी है क्रांतिवीर फिल्म का मैंने देखा जब। अमित कुमार, सपना मुखर्जी, सुदेश भोसले और पूर्णिमा की आवाजों में। तो दोस्तों नाना पाटेकर जी को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए सुनते हैं उन्हीं का फिल्म क्रांतिवीर से मैंने देखा जब।

0: हेलो
1: हेलो,
0: मेरे साथ डांस करोगे?
1: नहीं।
0: ए, जरा मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करो।

इश्क में हो जनरेशन गैप हम मिलके करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। और दोस्तों, नाना पाटेकर जी को याद करते हुए और उन्हें डेडिकेट करते हुए एक और मैसेज हमें आया है चारडियो सनारे असम से हमारे रेगुलर लिसनर बायको मुंडा जी का। उन्होंने रिक्वेस्ट करी है गुलाम ए मुस्तफ़ा फिल्म से तेरे गम तेरा गम मेरा गम कविता कृष्णमूर्ति और हरी हरन की आवाज़ में। तो सुनते हैं आपका ये पसंद का गाना और डेडिकेट करते हैं नाना पाटेकर जी को।

0: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
1: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
0: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
1: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
0: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाएं, जांच कराएं, भेदभाव मिटाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
2: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
3: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: ब्रेक के बाद दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम में। अब बढ़ते हैं अगले मैसेज की ओर जो हमें आया है हलम आसाम से हमारी प्यारी श्रोता ज्योति सुरेन जी से। ज्योति जी को आज सुनना है सनम तेरी कसम फिल्म से एक नंबर, जिसे गाया है हिमेश रेशमिया और नीति मोहन ने। तो ज्योति जी, सुनते हैं आपका ये पसंद का गाना।

द रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम का अगला गाना आप सुन पाएंगे खिलाड़ियों का, खिलाड़ी फिल्म से माँ शेरावाली है। इस गीत को गाया है सोनू निगम ने और इस गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है बीमारी असम से लकी हेमरॉन जी ने, और उन्होंने डेडिकेट किया है इस गाने को मंशी किसको, अभिराम हेमरॉम और सभी अरुण एफएम के लिसनर्स को। तो चलिए अरुण एफएम के सारे लिसनर्स और उनके दोस्त और हेमरॉन जी सुनते हैं आपका ये रिक्वेस्टेड सॉन्ग माँ शेरावाली है सोनू निगम की आवाज में।

0: इंडिजिनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश आयोजित कर रहा है रन फॉर आइडेंटिटी इस थीम के साथ एक मैराथन 11 अक्टूबर 2026 को। ये मैराथन न्योकुम निया ग्राउंड निर्जुली से आरंभ होकर न्योकुम लापांग ईटानगर तक होंगे, जिसमें पुरुष और महिला दोनों वर्ग के विजेताओं को मिलेगा आकर्षक पुरस्कार। तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए और रजिस्ट्रेशन के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8837434121 पर।
1: जी दोस्तों, अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप बने हुए हैं हमारे साथ रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम में। और दोस्तों, आप सबके पसंदीदा गानों का आनंद लेते हुए पता ही नहीं चला और हम आज के रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम के अंतिम रिक्वेस्ट पर आ पहुंची है। ये रिक्वेस्ट हमें आई है असम से हितेंद्र दास जी का, और हितेंद्र दास जी ने लिखा है कि उन्हें कोई भी गाना सुना दीजिए। तो हितेंद्र दास जी, हम आपके लिए 90s का टाइमलेस क्लासिक सॉन्ग जब कोई बात बिगड़ जाए कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में प्ले कर रहे हैं।

और दोस्तों, इसी के साथ ही हम आज के रेडियो निर्माण कार्यक्रम के समापन पर आ पहुंचे हैं। उम्मीद करती हूं हर रोज की तरह हमने आप सबका भरपूर मनोरंजन किए होंगे। अब दोस्तों, अब से थोड़ी ही देर बाद यानी ठीक 11 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों को। और साथ ही बता दो दोस्तों, इसी के साथ ही हम आज के पहली प्रसारण सभा के समापन पर आ पहुंचे हैं। उम्मीद करती हूं इस सभा में प्रसारित सभी कार्यक्रम आपको रोजाना की तरह बेहद पसंद आए होंगे। इस सभा के कार्यक्रमों को बिना किसी रुकावट के आप तक पहुंचाने में आज हमारे साथ थे स्टूडियो तथा अजमेर में मौजूद सहकर्मी सहित प्रसारण निष्पादक गैर अर्थ तथा तकनीकी अभियंता गोलो कालो। जाते जाते बता लो दोस्तों, इसी तरह के बेहतरीन कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा हमारी आज की दूसरी प्रसारण सभा में। और दूसरी प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाएंगे आपका अपना आरजे ननास। तो दोस्तों, अब मुझे यानी आपकी रेडियो दोस्त आरजे दुनिया को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, एक बार फिर याद दिला दूं, अब से थोड़ी ही देर बाद यानी ठीक 11 बजे आप सुन पाएंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: non più può piangere che piange. मैंने सही किया कि नहीं किया, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि सारे गलत कामों को बंद करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो कितने चिल्लाते रहे चीखते रहे, मैं इसको ठान के बैठा हूं, करके रहूंगा। अगर साथियों पुरानी व्यवस्था होती तो सरकार का 5 लाख करोड़ रुपए लीकेज में चला जाता और ऐसे लोगों की जेब भर देता। मोदी ने इसको रोका है।
1: वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जीएसटी से जुड़े विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य कर अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए एक संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा जारी इस साझा बयान का मुख्य उद्देश्य वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों पर रोक लगाना है। यह कदम हाल ही में अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य के मिलवॉकी शहर में हुई G20 देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक के बाद उठाया गया है। देश आज भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ मना रहा है। 8 अक्टूबर 1932 को इसका गठन किया गया था। इस महत्वपूर्ण अवसर ने वायुशक्ति के एक ऐसे दृष्टिकोण की शुरुआत की जिसने आने वाले दशकों

0: के लिए देश की रक्षा प्रणाली को आकार दिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी वायु योद्धाओं, अनुभवी सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी है। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर कल आकाशवाणी से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना सतर्कता और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायुसेना के प्रदर्शन ने हमें गौरव से भर दिया है। हमने दुनिया को दिखाया है कि कैसे वायु शक्ति का उपयोग कर कुछ ही दिनों में निर्णायक सैन्य परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। साहसिक और सटीक हमलों ने राष्ट्र को उसकी ताकत और हवाई शक्ति के आक्रामक इस्तेमाल के महत्व को दिखाया है।
0: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेताओं में शामिल थे। कई दशकों के फिल्मी करियर में उन्होंने विभिन्न भूमिकाओं में अपनी पहचान बनाई। अभिनेता नाना पाटेकर को फिल्मों में अपने सशक्त अभिनय के लिए 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज फिजी में 31वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP31 के वार्ताध्यक्ष क्रिस बोवन के साथ मुलाकात की। श्री बोवन ऑस्ट्रेलिया के जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा मंत्री भी हैं। ये बैठक COP31 सम्मेलन से अलग हुई। बीजिंग में मानु शाह और दिया चिताले ने इतिहास रचते हुए WTT चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बनाई। मानु और दिया सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय मिक्स डबल्स जोड़ी बन गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi today inaugurated the 10th edition of the India Mobile Congress, IMC, at Yashobhoomi in New Delhi today. The 4-day event, which began yesterday, showcasing India's remarkable progress in telecommunications, digital technology and technological innovation. The theme of IMC 2026 is Scale Without Boundaries, reflecting India's growing capabilities in digital innovation, next-generation connectivity and technology-led growth. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said that the Indian Mobile Congress platform has witnessed the evolution of the telecom sector and digital connectivity in India. He said today, 5G connectivity has reached every district of the country. Mr. Modi added, there are now more than 5,50,000 base stations to operate 5G connectivity across India. Now, let's get straight to the Prime Minister's address.
3: Protocol ya architecture ki bhasha mein nahi sochta. Uske liye trust bahut ahem hai. Jab usko phone par aaye, उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है। जब मैसेज आए तो उसे पता हो कि वह असली है या फेक। जब पेमेंट हो तो उसे विश्वास हो कि उसका पैसा सुरक्षित है। जब वह किसी फॉर्म में अपना डेटा दे तो उसे विश्वास हो कि उसका डेटा सुरक्षित है। साथियों, टेक्नोलॉजी स्केल तभी प्राप्त करती है जब वो ट्रस्ट हासिल करती है।
2: On the occasion, Union Communications Minister Jyotiraditya Scindia said that Prime Minister Modi has always emphasized that technology must reach not only the last village but every single citizen.
4: From a meager base of only 60 million broadband customers, we today in India have over 1.1 billion broadband customers, 1.35 billion mobile customers. IMC 2018 talked about connecting, creating and innovating. And the Prime Minister has always insisted

नमस्कार मेरे प्यारे श्रोता दोस्तों, कैसे हो आप सब। अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास, और आप बने हुए हैं हमारे साथ हमारी दूसरी प्रसारण सभा में। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले आपके साथ थी आरजे दुनिया, जिन्होंने बिताए आपके साथ हमारी पहली प्रसारण सभा का सफर, और अब उन्होंने सौंप दिया है आगे का कारोबार मेरे हाथ। यानी कुल मिला के बात ये है कि अब इस दूसरे प्रसारण सभा में आपका हम सफर और आपका दोस्त रहेगा ये आपका होस्ट आरजे ननास। चलिए दोस्तों, इससे पहले कि हम इस सभा को शुरू करें, मैं बता दूं आप सभी को, आज की इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ है स्टूडियो और एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक टी तांगजांग तथा तकनीकी अभियंता रितेश सिंह। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा ये सफर कार्यक्रम फिल्म।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

श्रोता दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी लहरा आकाशवाणी ईटानगर का रोन एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, और इसके तुरंत बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज़।

0: सुनो दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। और इसके तुरंत बाद आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि इसके बाद शुरू होगा एक बार फिर से हमारा संगीत में सफर नॉन हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के साथ। तो बने रहिए और सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़।
1: We came to the end of today's episode of Western Melodies here on Akashwani Itanagar. I'm your host, Coco. Thank you for spending this.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत के उल्लेखनीय प्रगति को दिखाया जा रहा है। 4 दिवसीय इस सम्मेलन की शुरुआत कल हुई थी। इस वर्ष का विषय है सीमाओं से आगे विस्तार। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस मंच ने भारत में दूरसंचार क्षेत्र और डिजिटल कनेक्टिविटी के विकास को देखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशन हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में सुविधा दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने दीक्षा प्लेटफॉर्म के जरिए भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी।
3: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशन और करीब 6000 करोड़ लर्निंग मिनट दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है, हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है, इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
2: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि प्रौद्योगिकी न केवल सिर्फ अंतिम गांव तक बल्कि हर एक नागरिक तक पहुंचनी चाहिए। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। बैठक में जीएसटी विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज फिजी में 31वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP31 के वार्ताध्यक्ष क्रिस बोवन के साथ मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने कहा कि बैठक में उन्होंने संतुलित और सार्थक परिणामों के लिए भारत की प्रतिबद्धता और COP31 के वार्ताध्यक्ष के साथ मिलकर काम करने की पुष्टि की। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छिपाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कहा कि दुनिया 9/11, 26/11 और पहलगाम आतंकवादी हमलों को नहीं भूली है।

0: देश आज भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ मना रहा है। 8 अक्टूबर 1932 को इसका गठन किया गया था। इस महत्वपूर्ण अवसर ने वायु शक्ति के एक ऐसे दृष्टिकोण की शुरुआत की जिसने आने वाले दशकों के लिए देश की रक्षा प्रणाली को आकार दिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी वायु योद्धाओं, अनुभवी सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेताओं में शामिल थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत कम अभिनेताओं में वो गहराई, अलग पहचान और दमदार मौजूदगी थी जो श्री नाना पाटेकर में थी।
1: वो एक बेहतरीन कलाकार थे जिन्होंने अलग अलग किरदारों के माध्यम से दर्शकों का दिल जीता। नाना पाटेकर जी का जीवन तिरंगे की आन बान और शान के लिए समर्पित रहा। वो बंधनों में नहीं रहे, परिंदे की तरह फिल्मों के आसमान में उड़े।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi today inaugurated the 10th edition of the India Mobile Congress IMC at Yashobhumi in New Delhi today. The four-day event, which began yesterday, showcasing India's remarkable progress in telecommunications, digital connectivity and technological innovation. The theme of IMC 2026 is Scale Without Boundaries, reflecting India's growing capabilities in digital innovation, next-generation connectivity and technology-led growth. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said, the Indian Mobile Congress platform has witnessed the evolution of the telecom sector and digital connectivity in India. He said today 5G connectivity has reached every district of the country. Mr. Modi added that there are now more than 5,50,000 base stations to operate 5G connectivity across India.
1: बीते वर्षों में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया है। हमारे सामने विकसित भारत का एक विराट संकल्प है। इसके लिए हमें अपने प्रयासों को निरंतर व्यापक करते रहना है। हमें आईएमसी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट और आइडिया का एक जंक्शन बन सके।
2: On the occasion, Union Communications Minister Jyotiraditya Scindia said Prime Minister Modi has always emphasized that technology must reach not only the last village, but every single citizen. The minister lauded equipment manufacturers, telecom operators and every employee of the telecom sector for their contribution in making 5G the fastest adopted 5G technology in the world. He said India today has 550 million 5G users. He said IMC 2026 will showcase India's digital capabilities.
3: From a meager base of only 60 million broadband customers, we today in India have over 1.1 billion broadband customers, 1.35 billion mobile customers. IMC 2018 talked about connecting, creating and innovating. And the Prime Minister has always insisted that technology must permeate not only the last village, but reach every single citizen.
2: The 57th GST Council meeting will be held at Bharat Mandapam in New Delhi today. Chaired by Finance Minister Nirmala Sitharaman, the meeting will discuss policy reforms to resolve GST disputes and improve the flow of input tax credit with the aim of reducing the time and cost of compliance. The nation is celebrating the 94th anniversary of the Indian Air Force today. Established on the 8th of October in 1932, this momentous occasion marked the beginning of a vision for air power that would shape the nation's defense for decades to come. On the occasion, President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah

श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पे। तो दोस्तों, चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हमारा ये संगीत में सफर एक बार फिर से कार्यक्रम नॉन हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के साथ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

तो दोस्तों ये था आर्यंस। दोस्तों ये गाना 1999 में रिलीज हुई थी और इस गाने के अभिनेता है दी आर्यंस, एक बैंड था जो 90s के दौर में काफी फेमस और हिट हुआ करता था। तो चलिए दोस्तों आइए बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं फाल्गुनी पाठक की आवाज में ओपिया ओनली ऑन अरुण FM 103.1 MHz।

सो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गीत माला में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास, और आप हमारे साथ ट्यून इन है अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारे ये कार्यक्रम पहले गीत के साथ, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने। ये गीत थे फ्रॉम द फिल्म ट्रैफिक। लीजिए दोस्तों, इंजॉय कीजिए ये सॉन्ग। मैं लौट कर आता हूँ, सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज।

0: इंडिजिनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश आयोजित कर रहा है रन फॉर आइडेंटिटी इस थीम के साथ एक मैराथन 11 अक्टूबर 2026 को। ये मैराथन न्योकुम निया ग्राउंड निर्जुली से आरंभ होकर न्योकुम लापांग ईटानगर तक होंगे, जिसमें पुरुष और महिला दोनों वर्ग के विजेताओं को मिलेगा आकर्षक पुरस्कार। तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए और रजिस्ट्रेशन के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8837434121 पर। अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम यानी कि ACWF अपना फर्स्ट एवर स्टेट लेवल सेमिनार आयोजित करने जा रहा है, जो होगा क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ESS सेक्टर ईटानगर नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक। इस सेमिनार के रिसोर्स पर्सन होंगे श्री जेम्स तेची तारा, प्रेसिडेंट अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम कम प्रेसिडेंट NDCC, एवांजेलिस्ट गुमदे रिबा सोंगथिंग और एडवोकेट नाबम रामा गुवाहाटी हाई कोर्ट ईटानगर बेंच। अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम अरुणाचल प्रदेश के सभी विमेन हेड्स ऑफ डिनोमिनेशंस, हेड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिनोमिनेशंस और विमेन लीडर्स को इस सेमिनार में सादर आमंत्रित करते हैं। याद रखें, जगह है क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ESS सेक्टर ईटानगर नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक। धन्यवाद।
1: The Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced Level 2 ADAS, yes. Smart Power Tailgate with Gesture Control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just Rs. 10.49 lakh.
2: And benefits up to Rs. 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.

0: श्रोता दोस्तों इसी के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम गीत माला. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़. और अब दोस्तों अगले कुछ पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया. इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत के उल्लेखनीय प्रगति को दिखाया जा रहा है. 4 दिवसीय इस सम्मेलन की शुरुआत कल हुई थी. इस वर्ष का विषय है सीमाओं से आगे विस्तार. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस मंच ने भारत में दूरसंचार क्षेत्र और डिजिटल कनेक्टिविटी के विकास को देखा है. उन्होंने कहा कि इस मंच ने दूरसंचार क्षेत्र में भारत की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
2: बीते वर्षों में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया है. हमारे सामने विकसित भारत का एक विराट संकल्प है. इसके लिए हमें अपने प्रयासों को निरंतर व्यापक करते रहना है. हमें IMC को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट और आइडिया का एक जंक्शन बन सके.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है. श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशन हैं. उन्होंने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने की सुविधा दी है. केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रौद्योगिकी का व्यापक प्रसार तभी हो सकता है जब वो किफायती और समावेशी हो. वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं. बैठक में GST विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी. इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और घाना लंबे समय से साझेदार हैं. दोनों देश ग्लोबल साउथ के प्रमुख देशों के रूप में स्वास्थ्य, कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, खनन, रक्षा, रेलवे और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं. दोनों देशों ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा, जैव विविधता, वैज्ञानिक अनुसंधान और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में समझौते किए. भारत ने आगामी 31वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP31 में महत्वाकांक्षी और संतुलित परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लचीलापन, व्यावहारिक दृष्टिकोण और आपसी सम्मान की आवश्यकता पर जोर दिया है. सम्मेलन से पहले फिजी में आयोजित एक बैठक के दौरान राजनीतिक समझौते के संभावित क्षेत्र और परिणाम विषय पर पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों के मद्देनजर अब केवल बयानबाजी से आगे बढ़कर कार्रवाई और आपसी सहमति की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है. भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया है. भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छिपाने की कोशिश कर रहा है. भारत ने कहा कि दुनिया 9/11, 2008 के मुंबई और 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमलों को नहीं भूली है. देश आज भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ मना रहा है. 8 अक्टूबर 1932 को इसका गठन किया गया था. इस महत्वपूर्ण अवसर ने वायु शक्ति के एक ऐसे दृष्टिकोण की शुरुआत की जिसने आने वाले दशकों के लिए देश की रक्षा प्रणाली को आकार दिया. इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी वायु योद्धाओं, अनुभवी सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी.

0: है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेताओं में शामिल थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 883 अंक गिरकर 71,756 पर और निफ्टी 308 अंक कम होकर 22,295 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has said digital connectivity has powered education, healthcare and government services. Mr. Modi today inaugurated the 10th edition of the India Mobile Congress at Yashobhumi in New Delhi. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said today even children in remote villages and from poor families are able to access quality knowledge. Mr. Modi said, over the past 10 to 12 years, the mobile phone has emerged not only as a medium of modern communication, but also as a crucial tool for good governance. He said today, hundreds of government services are available on mobile phones. The Prime Minister said, the Indian Mobile Congress platform has witnessed the evolution of the telecom sector and digital connectivity in India.
2: बीते वर्षों में भारत ने कंज्यूमर से क्रिएटर बनने की यात्रा की। अब भारत उस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है जहां प्रोडक्ट डिजाइन भी भारत में होगा, उसकी टेक्नोलॉजी और आईपी भी भारत की होगी। इसके लिए हर जरूरी इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, हर जरूरी रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, यानी टेलीकॉम सेक्टर में भी रिफॉर्म एक्सप्रेस तेजी से आगे बढ़ रही है।
1: The 57th Goods and Services Tax GST Council meeting is underway at Bharat Mandapam in New Delhi to discuss policy reforms to resolve disputes and improve the flow of input tax credit with the aim to reduce the time and cost of compliance. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman is chairing the meeting. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis, Karnataka CM DK Shivakumar, Jammu and Kashmir CM Umar Abdullah, Haryana CM Nayab Singh Saini and finance ministers of states and union territories are also attending the meeting. Sources in the finance ministry said the government will propose a five-pronged plan for the next set of reforms to the GST system. Veteran actor Nana Patekar passed away at the age of 75 after suffering a severe cardiac arrest at his residence in Goa this morning. Patekar, one of India's most acclaimed actors, was known for his performances across Hindi and Marathi cinema with a career spanning several decades. He earned widespread recognition for films such as Parinda, Krantiveer, Ab Tak Chappan and Welcome. Prime Minister Narendra Modi has expressed grief at the demise of the renowned actor of Hindi and Marathi cinema. In a social media post, the Prime Minister said, Nana Patekar brought remarkable versatility and creativity to every role and played characters that will be remembered for generations. The nation is celebrating the 94th anniversary of the Indian Air Force today. Air Chief Marshal AP Singh today highlighted the Indian Air Force's growing capabilities and stressed that its true strength lies in its air warriors rather than merely in advanced equipment and technology. Addressing on Indian Air Force Day celebrations at Hindon Air Base in Ghaziabad, Air Chief Marshal Singh emphasized the role of air power in protecting national interests and described the Indian Air Force as the custodian of the skies. India has accused Pakistan of doublespeak on terrorism, saying Islamabad is attempting to gloss over its support for terror groups by announcing a reward for information on Jaish-e-Mohammed chief Masood Azhar. India said the world has not forgotten the 9/11, 26/11 and Pahalgam attacks. Exercising its right of reply in the UN General Assembly, India's First Secretary Raghu Puri said terrorism cannot be defeated through declarations and called for action against its perpetrators, financiers directors and sponsors. Puri questioned Pakistan's claim that Azhar is hiding in Afghanistan, noting that the Taliban government has rejected the assertion. He also termed Pakistan's fresh 7 million rupee reward for information on Azhar a gimmick. The Supreme Court today directed the centre to constitute a three-member committee to examine whether pharmaceutical companies' marketing practices, including gifts and other benefits offered to doctors, require statutory regulation. A bench of justices Vikram Nath and Sandeep Mehta issued the direction while hearing a plea seeking action against unethical interactions between drug companies and doctors. Benchmark domestic equity indices were trading over 1% lower in the afternoon session today. The Sensex declined 883 points to 71,756, while the Nifty lost 308 points to 22,295 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
3: दोस्तों आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे। चलिए दोस्तों देर न करते हुए अब आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
4: हेलो फरमाइश।
5: हेलो फरमाइश।
6: हेलो जी नमस्ते।
5: जी नमस्ते।
6: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से।
5: जी प्रेम जी कैसे हैं आप?
6: मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हो?
5: जी बहुत बहुत बढ़िया है, हम भी यहाँ।
6: जी हमारे यहाँ पे मौसम काफी अच्छा है, सोयाबीन की कटाई हो गई है और अब थ्रेसर चल रहे हैं सभी के यहाँ पर।
5: जी यहाँ का मौसम भी काफी खुशनुमा है, गर्मी से थोड़ी राहत है, अब बादल छाए हुए हैं। और बताइए आज आप कौन से फिल्म का गाना सुनना चाहेंगे?
6: आप सुनवा दीजिएगा फिल्म करा में मुझसे शादी करोगी।
5: जी
6: और हाँ गाने के बोले लाल दुपट्टा उड़ गया हवा के झोंके से।
5: जी जी जी और किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे?
6: बताना चाहेंगे क्योंकि काफी ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है।
5: जी
6: और सभी अपने अपने खेतों में काम कर रहे हैं और ये गाना जब बजेगा ना
5: जी
6: तो बहुत ही अच्छा लगेगा।
5: जी और आप इस गाने को किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं?
6: हाँ जी हमारा ग्रुप है हेलो फरमाइश एकता ग्रुप, उसके सभी श्रोताओं को और उसमें प्रमुख दोस्त है हमारे गौतम राय बोले सर, लोकेंद्र वर्मा, आशुतोष अविनाश संगीता जी, लोकेंद्र वर्मा और भगवान सिंह वर्मा, सुनील झा, रमेश टेलर और आपके लिए डेडिकेट रहेगा।
5: जी जी थैंक यू प्रेम जी, जी। हमें इसी तरह से कॉल करते रहेगा, आप हमारे प्रोग्राम से जुड़ते रहेगा, इसके लिए थैंक यू।
6: जी बहुत बहुत धन्यवाद।

0: क्या
1: हेलो
0: हो?
1: फरमाइश,
0: हेलो
1: हेलो फरमाइश।
0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी बोलिए।
0: मैं अनूप कुमार भट्टाचार्य बात कर रहा हूँ।
1: जी अनुप जी, कैसे हैं आप?
0: गारे मसाला बहुत अच्छा हो, बढ़िया हो।
1: जी

0: क्योंकि आज तो शुभ सोमवार है ना,
1: जी, शुभ सोमवार
0: और
1: हो।
0: हमारे जी का तो पूजा अर्चना तो चलता है ना।
1: जी,
0: तो बाकी पूजा अर्चना के बीच में मैं ट्राई कर रहा, पूजा अर्चना मतलब खत्म हो गया और भक्त समागम हो रहा है, और इससे अवसर पर मैं फोन लगाया
1: जी
0: और फोन भी लग गया
1: जी बताइए,
0: ना?
1: आज आप कौन से फिल्म का गाना सुनना चाहेंगे?
0: जी, बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपने मेरा फोन उठा लिया। पहला 11 बजे एक तक मेरा रिंग हुआ, नहीं
1: जी
0: उठाया तो मैंने सोचा कोई प्रोग्राम नहीं जा रहा है,
1: नहीं, प्रोग्राम तो जा रही
0: लेकिन
1: है, पर कोई बात नहीं,
0: कोशिश
1: आपका नंबर
0: बरकरार है
1: बाद में
0: मेरा
1: लगा। जी
0: जी। तो एक बात कहूँ मैम,
1: जी बोलिए।
0: बात ऐसे है, किसी ने मुझसे पूछा क्या है तेरी खुशी का खजाना, मुझे अचानक याद आ गया तेरा हल्के से वो मुस्कुराना। मेरी सांसों की डोर बस दो ही ख्वाहिशों पर टिकी है, सांस चले तो तुम साथ हो, सांस रुके तो तुम पास हो, है ना?
1: जी, काफी अच्छी साइड कर लेते हैं।
0: जी, बहुत अच्छा लगता है जब फोन मिलता है। दो तीन रोज में कोशिश किया लेकिन मेरा अवेलेबल नहीं हुआ
1: जी,
0: आज
1: कोई
0: तो।
1: बात नहीं, अगले श्रोता जो है वो, उनका शायद लग गया होगा, आपका नहीं
0: जी
1: लगा,
0: जी
1: इसलिए
0: जी
1: बिजी रह
0: सही
1: गया।
0: बात है, सही बात।
1: जी
0: तो चलिए आज एक गाने का लुत्फ उठाना चाहता हूँ।
1: जरूर बोलिए गाने का।
0: फिल्म का नाम है बागी,
1: जी, बागी
0: बागे,
1: फिल्म का कौन
0: और
1: सा
0: गाने
1: गाना?
0: का बोले, एक चंचल छोक हसीना
1: जी
0: मेरे सपनों में आए, मुझे झलक दिखला के वो मेरे दिल का चैन चुराए,
1: जी अनुप
0: ऐसे
1: जी, आप
0: करके
1: इस
0: गाने
1: गाने को
0: हैं।
1: किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे?
0: जी, डेडिकेट मैं करूंगा। पहले है हमारे बहुत अच्छे एक दोस्त थे जिनका नाम है दिलीप पाहुचा, मेरे बड़े भाई, राजस्थान से बिलोंग करते हैं,
1: जी
0: और है हमारे लोकेंद्र वर्मा जी है, प्रेमजीत चक्रवर्ती जी है, देवजीत दास जी है, और है उसका नाम है श्रीकांत जोशी जी, अमर सिंह साहू जी, और पुरुषोत्तम कुमार जी फ्रॉम कश्मीर। तो चलिए बातचीत को यही पे विराम देता हूँ। खैर हमारे मन में सबका यह है, और हमारे सहधर्मिनी जो है जिनका नाम है सुप्पा भट्टाचार्य, और आपके लिए, और हमारे बहुत अच्छे दोस्त है अनाउंसर जिसका नाम है बके बागेराज जी के लिए, और नूरी मैडम के लिए।
1: जी अनुप जी, आपके रिक्वेस्ट का सॉन्ग हम जरूर प्ले करेंगे। थैंक यू।
0: तो एक बात कहूँ मैम, मतलब आप कविता मैडम है ना?
1: हाँ जी,
0: जी कविता जी, तो चलिए बातचीत को यहीं पे विराम देता हूँ। बहरहाल आप अच्छे रहिए।

0: हेलो फरमाइश
1: नमस्ते
0: जी। नमस्ते
1: जी, योगेश जांगड़े बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ से।
0: जी। योगेश जी कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, अच्छे
0: जी
1: हैं।
0: जी जी तो मौसम बताइए, आज वहाँ छत्तीसगढ़ का किस तरह का मौसम है आज? गर्मी है या
1: अभी
0: बारिश है?
1: तो गर्मी है बहुत,
0: जी।
1: बारिश तो पूरी तरह से हट गए हैं
0: अच्छा, तो
1: जी।
0: आज आप कौन से फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं?
1: हिमालय की गोद से सुना देंगे, चांद सी महबूबा हूँ मेरी तो।
0: जी। और किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं?
1: रानू जी हैं, हरिपाल गोयल जी हैं, लोकेन जी हैं, दिलीप आहूजा जी हैं, धीरज जी हैं, तुकाराम जी हैं, जगदीश जी हैं, तेजचंद जी हैं, उदय लाल जी हैं, और तमाम साथी हैं, किसी का छूट गया हो तो। प्रेम सिंह जी और केसरी सिंह
0: जी। योगेश
1: जी
0: जी,
1: हैं
0: जरूर हम आपके रिक्वेस्ट का ये गाना प्ले करेंगे। इसी तरह से हमें सुनते रहेगा, हमारे साथ
1: जी
0: जुड़िएगा इस प्रोग्राम में। जी
1: जी जी धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार मैम।
0: जी नमस्ते।
1: जी मैम, हम धेमाजी असम जुनाई मिसा की शपुरी से विमल बसुमतारी बोल रहा हूँ मैम।
0: जी विमल जी, क्या कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा है मैम, आपका कैसा है मैम?
0: जी हम भी ठीक है।
1: हम लोग का सर नहीं, बोखे बगरा सर नहीं यार।
0: जी बोखे बगरा सर तो है, पर आज इस प्रोग्राम में मैं जुड़ी हूँ आपसे।
1: ठीक है मैम, अच्छा लगा आपसे भी बात करके, बहुत अच्छा लगता है। मौसम कैसा है मैम उधर?
0: मौसम थोड़ा बादल छाया हुआ है, लगता है बारिश होगी फिर धूप होगी, इस तरह से है मौसम।
1: जी मैम, हम
0: जी
1: लोग का इधर भी सुबह बारिश आया था, अभी ठीक ठाक है।
0: जी जी जी
1: अभी इतना गर्म नहीं है, बारिश हो रहा है इसीलिए।
0: हाँ, गर्मी थोड़ा कम हो गया अभी तो।
1: जी मैम।
0: तो बताइए आज आप कौन से फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं?
1: जी मैम, हमको आज सुना दीजिए जीप मूवी का तुझे डरती थी जहाँ भी रह जाए, ये गाना सुनना चाहता हूँ मैम।
0: जी जी जी जरूर सुनाएंगे
1: और
0: किसी को।

0: अच्छा लगता है, उन्होंने फिर हम लोग का पूरा बहुत अच्छा चैनल है, बहुत अच्छा लगता है सुन के।
1: जी, आप लोगों के इन्हीं शब्दों से हमें हमारे भी हौसला अफजाई होती है। जी, थैंक यू।
0: धन्यवाद।
1: जी, थैंक यू।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार
0: जी। नमस्कार
1: जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला हिमाचल प्रदेश से।
0: जी राकेश जी, कैसे हैं?
1: जी बहुत बढ़िया है। और आप आपके साथ पहली बार बात हो रही है, आपका नाम जानता। आप नूरी मैम बोल रही है क्या?
0: जी मैं कविता बोल रही हूँ।
1: ओके ओके ओके, क्योंकि पहली बार आपसे मेरी बात हो रही है
0: जी,
1: और
0: जी।
1: मैं आकाशवाणी ईटानगर में सुनता रहता हूँ और आपके प्रोग्राम का मैं नियमित से होता हूँ।
0: जी, शिमला का अब मौसम किस तरह का है?
1: शिमला का मौसम जो है बिल्कुल साफ है
0: जी जी
1: और ठंडी ठंडी हवा चल रही है और थोड़ी ठंड भी जो है बढ़ चुकी है।
0: जी तो इस खूबसूरत मौसम में आप आज कौन से फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं?
1: आज मुझे गाना सुनना है, मूवी का नाम है सलामी।
0: जी, सलामी फिल्म का कौन सा गाना?
1: गाने के बोला, जब हाले दिल तुमसे मिलने को कहने आती।
0: जी जी
1: और कुछ दोस्तों को याद कर सकते हैं।
0: जरूर जरूर
1: सबसे पहले तो आप मुझे गाना डेडिकेट रहेगा।
0: जी, शुक्रिया।
1: पूरण वर्मा है, तनुश्री है और भगवान से परमार हैं और राम नरेश कंजर हैं, रमेश प्रजापति हैं और अविनाश हैं और शिवा लोहत हैं और तमाम सुनने वाले श्रोता हैं और जिनका भी नाम छुट गया उनके लिए भी गाना दे दीजिए कैसे का। और अमर सिंह साहू है और परशोत्तम साहू है और तमाम सुनने वाले श्रोता है जिनका भी नाम छुट गया उनके लिए भी दे दीजिए कैसे का गाना।
0: जी जरूर राकेश जी, हम

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो नमस्कार मैम
0: जी नमस्ते।
1: जिला गुना एमपी तहसील मधुसूदनगढ़ ग्राम चीतकली से अमर सिंह साहू बोल रहा हूँ मैम।
0: जी अमर सिंह साहू जी।
1: हाँ जी मैम
0: जी, तो बताइए कैसे हैं
1: आप? कैसे हो मैम?
0: मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, आप कैसे हो?
1: हम भी अच्छे हैं मैम। अरुणाचल का मौसम कैसा है मैम अभी?
0: मौसम तो काफी अच्छा है, ना ज्यादा गर्मी है अब ना, और सर्दी आने ही वाली है, इस तरह मौसम है अभी यहाँ पे।
1: हाँ तो कविता मैम बोल रही है, आप कौन बोल रही?
0: हाँ जी जी कविता बोल रही हूँ
1: हाँ वो के बागरा ही नहीं आया आज?
0: जी। आज वो प्रोग्राम में नहीं आए पर हैं जरूर स्टेशन में
1: जी मैम जी मैम जी मैम।
0: जी। तो बोलिए, आज आप कौन से फिल्म का गाना सुनना चाहते?
1: मूवी का नाम है निकला छुपा रुस्तम।
0: जी निकला छुपा रुस्तम
1: हाँ उसमें गाना है अरे ओ शेरी बाबू।
0: जी।
1: और आपकी ज्यादा हो तो दोस्तों को याद कर लूँ
0: जरूर
1: मैम?
0: जरूर कर लीजिए
1: तेरे तो बे अपने भाई बेटे तेरे ने बो के बागरा दी तेरे था।
0: जी जी जी
1: और कविता मैम है
0: जी शुक्रिया
1: और अनु कुमार भट्टाचार्य, मणिलाल चंदेल जी है, अनु
0: जी
1: कुमार भट्टाचार्य जी है
0: जी
1: और नरेश प्रजापति है और रमेश प्रजापति है। हाँ जितने भी सब दोस्तों सुन रहे हैं सभी को ये गाने डेडिकेट रहेगा मैम।
0: जी जी जरूर, हम आपकी रिक्वेस्ट पूरी करेंगे और सुनाएंगे आपको आपके
1: और
0: पसंद का
1: पूरन
0: गाना जी।
1: वर्मा जी धन्यवाद मैम, नमस्कार अभिनंदन।

0: हेलो फरमाए।
1: हेलो
0: हेलो, हाँ जी, हेलो फरमाए से बोल रहे हैं।
1: जी, मैं पांडे बात कर रही हूँ, गोंडा यूपी से। हेलो
0: जी जी बोलिए। हेलो जी, हाँ सुन रहे हैं हम आपको। आप हमें सुन रही हैं?
1: जी मैम, आपकी आवाज आ रही है।
0: जी जी
1: आज
0: जी तो बोलिए, आप आज कौन से फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं?
1: मैं मुझको गाना सुनना है, धड़कन मूवी से कोई गाना।
0: धड़कन मूवी का कौन सा गाना?
1: अक्सर इस दुनिया में अनजाने
0: अच्छा
1: लोग
0: अच्छा
1: मिलते हैं।
0: जरूर जरूर जरूर। किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं आप इस गाने को?
1: जी मैम, अब नाच भैया हो गए, पूनम दीदी हो गए, श्री हो गए, अंकित पवार हो गए, राजेश हो गए, लक्ष्मीराम गुप्तनाथ और दिनेश कुमार पांडे।
0: जी जी जरूर, हम आपको धड़कन फिल्म का ये गाना सुनाएंगे। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत

0: हेलो फरमाइश
1: जय माता जी।
0: जी जी जय माता जी।
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंतमहल गुगला।
0: जी जी
1: कैसे हो आप?
0: मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
1: बस मैडम बढ़िया हूँ। आपका नाम जान सकता हूँ?
0: जी मैं कविता बोल रही हूँ।
1: थैंक यू मैडम, काफी दिनों के बाद में आई आप।
0: हाँ जी, काफी दिनों के बाद आई हूँ।
1: जी
0: कैसे हैं
1: तो
0: आप?
1: बस मैडम बढ़िया हूँ। आपका कार्यक्रम में कॉल भी मिला रहा था। मैं कौन सा नंबर पे आ गया हूँ मैडम? मैं
0: आप 8वें नंबर पे हैं आज।
1: थैंक यू मैडम, क्योंकि मैं हर आकाशवाणी केंद्र पे जब भी मेरा फोन लगता है ना मैडम,
0: जी।
1: तो मैं ये पूछता हूँ मैडम, जैसे आकाशवाणी गांगटोक पे हमारी एक पूनम मैडम आती है,
0: जी
1: वहां भी मैं पूछता रहता हूँ कि मैडम मैं कौन सा नंबर पे आता हूँ, तो वो बताते हैं बार आप इतने नंबर पे आ गए, इसलिए हमको अच्छा लगता।
0: अच्छा, आप नंबर का ये जो हिसाब रखते हैं, इससे आपको क्या क्या अच्छा लगता है कि आप मतलब कितने जल्दी आपका कॉल लग गया, आप ये जानना चाहते हैं या फिर क्या?
1: जी मैडम मैं ये भी जानना चाहता हूँ और ये दूसरा नंबर ये भी जानना चाहता हूँ कि जैसे मान लो अपन तोता का जैसे गिन गिन के अपन पता लगाते हैं कि भाई कौन सा नंबर पे आ गया कॉलर, जैसे जो भी कॉलर आते हैं ना,
0: जी।
1: तो मैं पता लगाता रहता हूँ भाई ये तीसरा नंबर पे आया अभी, तो चौथा नंबर पे आया, तो मेरा अब आठवां नंबर पे आया।
0: जी। आज 8वें नंबर पे हैं आप। तो बोलिए, आज आप कौन से फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं?
1: जी मैडम फिल्म का नाम है शान,
0: शान फिल्म का कौन सा गाना?
1: उसमें गाने के बोले बस आ यम्मा यम्मा यम्मा यम्मा है खूबसूरत शमा, बस आज की रात है जिंदगी कल हम कहाँ तुम वहाँ ये।
0: जी, और इस गाने को आप डेडिकेट करना चाहते हैं किसी?
1: जी ससुरल तो आप है,
0: जी
1: और
0: फिर
1: नूरा मैडम को भी सुनाना चाहता हूँ, आजकल उनकी आवाज सुनाई हमको देरी नहीं, तो वो भी मैं चाहता हूँ कि कभी उनसे भी बात हो।
0: जी जरूर, नूरी मैम तक आपका ये मैसेज जरूर पहुंचा दूंगी।
1: ओ के बाबा है, राकेश है, भगवान सिंह जी है, अविनाश जी है, ऋषि वालवाड़ है, ओ रमेश पात्रे, अमल बिमल गोल्डी भाई है, और देवाली सो आती है और खुश।
0: जी, ओके,
1: थैंक यू मैडम।
0: थैंक यू।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार बहन जी। नमस्कार
0: जी नमस्ते
1: बहन जी। मैं बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ जी।
0: जी जगदीश जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत मजे में है बहन जी, बहुत आनंद में हैं, बिल्कुल मस्त हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं।
0: जी तो बताइए, आज आप कौन से फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं?
1: बहन जी आज मैं सुनूंगा गीत फिल्म दिल ही तो है,
0: जी
1: जो पहले बनी थी, तो उसका गीत जो मुकेश और सुमन कल्याणपुर जी की आवाज में है जी,
0: जी
1: तो उसके बोल मैं तरन्नम में बताना चाहूंगा जी।
0: जरूर जरूर।

0: मौसम का ये मिजाज और ये मुकेश जी का ये प्यारा गाना काफी अच्छा मेल खा रहा है जी। बताइए आप आज इस किसे डेडिकेट करना चाहते हैं इस गाने को?
1: बहन जी मेरे मित्र हैं गौतम राय बोले जी, लोकेंद्र वर्मा जी उज्जैन मध्य प्रदेश से, और भगवान सिंह परमार जी हैं, जोगेश जांगड़े जी, धीरज बीरवारी जी, रामपाल यादव जी, और गंगा सिंह रावत जी नैनीताल उत्तराखंड से, सतीश मिगलानी जी मलोट पंजाब से।
0: जी जरूर जगदीश जी, हम आपको दिल ही तो है फिल्म का ये गाना जरूर सुनाएंगे। इसी तरह से हमसे जुड़े रहिएगा, धन्यवाद।
1: धन्यवाद बहन जी, बहुत

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी हेलो फरमाइश से बोल रहे हैं
1: जी। मैं अमल बसुमतारी बात कर रहा हूँ रंगापाड़ा सोनीपुर से मैम।
0: जी अमल जी कैसे हैं आप?
1: जी बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बोलिए आज आप कौन सा फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं?
1: तुझे मेरे कसम फिल्म का टाइटल सॉन्ग सुना दीजिए मैम।
0: जी जी जी और किसे डेडिकेट करना चाहते हैं?
1: डेडिकेट रहेगा सबसे पहले भाईकुन मुंडा, संजय मुंडा, बिमल बसुमतारी, गागे रभा, सूरज द्वारा, नीरज कोल द्वारा
0: जी,
1: और हमारे दोस्त है रमेश पत्रो, लक्की रोनु पत्रो, देवाशीष हजरिका और जगेंद्र रोंगी और अविनाश तैयारी, आशुतोष देवनाथ, संगीता देवनाथ, भगवान सिंह परमार और रमेश प्रजापति और दानुश्री है और केसरी सिंह राजपूत और मंगलराज चंदेल है और दीवा लोहर गौरम शर्मा और पुष्करनाथ शर्मा, अंजनम शर्मा, इन सबको डेडिकेट रहेगा और दानसोन हाजों है और अंजलि बसुमतारी, इन सबको हमारे और अलराम ब्रह्मा, इन पुस्तकों को सुनाना चाहूंगा और आपको भी।
0: जी जरूर अमल जी, आप को हम जरूर सुनाएंगे आपके पसंद का ये गाना। इसी तरह से हमसे जुड़िएगा, हमें कॉल करते रहिएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से 25 करोड़ छात्रों को जोड़ेगी। उन्होंने कहा, 5,50,000 से अधिक 20 स्टेशनों के साथ 5G कनेक्टिविटी हर जिले तक पहुंची। वस्तु और सेवा कर परिषद में विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा। सर्वोच्च न्यायालय ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को समिति गठित करने का निर्देश दिया। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का निधन। भारत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान पर दोहरे रवैये अपनाने का आरोप लगाया। कहा, पाकिस्तान आतंकवादी गुटों को समर्थन देने की बात छुपा नहीं सकता। और देश वायुसेना दिवस पर सेना के जवानों के बलिदान को नमन कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को दिखाया जा रहा है। 4 दिवसीय इस सम्मेलन की शुरुआत कल हुई थी। इस वर्ष का विषय है सीमाओं से आगे विस्तार। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस मंच ने भारत में दूरसंचार क्षेत्र और डिजिटल कनेक्टिविटी के विकास को देखा है।
1: बीते वर्षों में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया है। हमारे सामने विकसित भारत का एक विराट संकल्प है। इसके लिए हमें अपने प्रयासों को निरंतर व्यापक करते रहना है। हमें IMC को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट और आइडिया का एक जंक्शन बन सके।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशन हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं तक लोगों को पहुंचाने में सुविधा दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने दीक्षा प्लेटफॉर्म के जरिए भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी।
1: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशन और करीब 6,000 करोड़ लर्निंग मिनट दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है, हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है, इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार ऑपरेटरों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की।
2: 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें एक विजन दिया था। उन्होंने कहा था कि भविष्य का भारत कनेक्टेड रहे, भविष्य के भारत में डिजाइन रहे और भविष्य का भारत नेतृत्व करे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस एक दशक में जो संपूर्ण भारत की टेलीकॉम और डिजिटल फ्रटर्निटी ने करके दिखाया है, वो शायद कई और देशों को सदियों लग जाती जो 10 वर्ष की अवधि में भारत ने करके दिखाया है।
0: इस आयोजन में दुनिया भर के तकनीकी क्षेत्र के दिग्गजों, नीति निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नव प्रवर्तकों को एक मंच पर लाया गया है। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिवकुमार, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में GST विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा हो रही है। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार स्टार्टअप, शिक्षण संस्थानों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के व्यापक वर्ग तक एआई की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अब उन देशों में शामिल है जिन्होंने एआई को अपनाकर इसके वास्तविक लाभ हासिल किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टरों को दिए जाने वाले उपहारों और अन्य फायदों सहित फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को 3 सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने ये निर्देश उस याचिका की सुनवाई के दौरान दिए जिसमें दवा कंपनियों और डॉक्टरों के बीच अनैतिक व्यवहारों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई थी। प्रस्तावित समिति संबंधित पक्षों की राय और सुझाव पर विचार करेगी, साथ ही ये देखेगी कि क्या दवा कंपनियों की विपणन पद्धतियों को नियंत्रित करने के लिए किसी वैधानिक ढांचे की जरूरत है या नहीं, और यदि है तो उसकी संरचना कैसी होनी चाहिए। केंद्र सरकार से इस संबंध में हलफनामा दायर करने को कहा क्या है। अगली सुनवाई अगले साल 29 जनवरी को होगी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट AIR News हिंदी और पब्लिक पर एट AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छुपाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कहा कि दुनिया 9/11, 2008 के मुंबई और 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमलों को नहीं भूली है। एक रिपोर्ट।
5: संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रथम सचिव रघु पुरी ने कहा कि केवल घोषणाओं से आतंकवाद का खात्मा नहीं किया जा सकता। श्री पुरी ने आतंकवादियों, उनके वित्त पोषकों और समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने मसूद अजहर के अफगानिस्तान में छिपे होने के पाकिस्तान के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि तालिबान सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया है। श्री पुरी ने मसूद अजहर के बारे में सूचना देने के लिए 70 लाख रुपए के इनाम की नई घोषणा को भी दिखावा बताया। प्रमुख आतंकवादी हमलों का उल्लेख करते हुए श्री पुरी ने कहा कि आतंकवादियों को सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराना आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को कमजोर करता है। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और घाना लंबे समय से साझेदार हैं। दोनों देश ग्लोबल साउथ के प्रमुख देशों के रूप में स्वास्थ्य, कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, खनन, रक्षा, रेलवे और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। दोनों देशों ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा, जैव विविधता, वैज्ञानिक अनुसंधान और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में समझौते किए। भारत ने पिछले कुछ दिन में रियाद के अबहा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमलों की कड़ी निंदा की है। इसमें आम नागरिकों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम विशेष श्रृंखला में ऐतिहासिक जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्विकास की जानकारी दे रहे हैं।
6: जलियांवाला बाग का जिक्र होते ही वर्ष 1919 में अमृतसर में अंग्रेजी हुकूमत द्वारा किए जुल्म की दर्दनाक यादें ताजा हो जाती हैं। वह 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था जब ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल्ड डायर ने अपने सैनिकों से सैकड़ों बेगुनाहों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाकर उन्हें मार डाला था। ये लोग रॉलेट एक्ट का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। उस समय इन शहीदों की याद में बने जलियांवाला बाग यादगार को दशकों बाद पुनर्विकसित कर 28 अगस्त 2021 21 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया। जलियांवाला बाग कॉम्प्लेक्स में विकास के कई काम हुए। पंजाब की अपनी भवन निर्माण शैली के अनुसार इसकी विरासत बहाली का काम बहुत ध्यान से किया गया। उस वक्त पंजाब में घटित ऐतिहासिक अहमियत की घटनाओं को दिखाने के लिए 4 म्यूजियम गैलरियां बनाई गईं और एक

0: चेंजेस अभी आने हैं। आने वाली पीढ़ी जो आगे आ रही है जनरेशन, उनको इसके बारे में काफी अच्छे से डीपली पता चलेगा।
1: मेरा नाम आशीष कुमार मिश्रा है, मैं वाराणसी से आया हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ के बारे में सुना हुआ था अपने दादा परदादा के मुंह से, बट आज हमने ये कुछ चीजें आके यहाँ पे वो देखे कि जैसे लगा कि हमने मतलब अपने मिट्टी से जुड़े हुए सब चीजें हमको यहाँ पे मिला। और काफी चीजें देख को हमको ये लगा कि उस समय जो हुआ था हमारे यहाँ के गवर्नमेंट सरकार ने ऐसा कुछ किया है कि ये चीजें देख के जाने के बाद हम अपने अगली पीढ़ी को भी बता सकते हैं कि एक बार वो यहाँ पे आए जरूर।
2: जलियांवाला बाग मेमोरियल को आजादी की लड़ाई के दौरान भारतीयों के बलिदान की निशानी के तौर पर हमेशा याद किया जाएगा। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेता थे।
4: कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो।
5: विश्वनाथ पाटेकर, जिन्हें दुनिया नाना पाटेकर के नाम से जानती है, उनका जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के मुरुड जंजीरा में हुआ था। नाना पाटेकर उन कलाकारों में से थे जो पर्दे पर आते ही किरदार में जान डाल देते थे।
6: आज तुमने राम और अल्लाह को मारने की कोशिश की है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, हम भले ही ऊपर वाले को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन हमारा धर्म एक है, मजहब एक है, इंसानियत।
5: 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित नाना पाटेकर ने परिंदा, क्रांतिवीर, अग्नि साक्षी, नट सम्राट, अब तक 56 और यशवंत जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से अमिट छाप छोड़ी। वर्ष 1978 में गमन से बॉलीवुड में कदम रखने वाले नाना पाटेकर ने अलग अलग तरह के किरदारों को पर्दे पर जीवंत किया। शक्ति द पावर, अपहरण, टैक्सी नंबर 9211 और राजनीति जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को खूब सराहा गया। फिल्म वेलकम में गैंगस्टर उदय शेट्टी के किरदार से उन्हें खास तौर पर लोकप्रियता मिली। नाना पाटेकर ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी सिनेमा से अपना रिश्ता बनाए रखा। हाउसफुल 5, ओ रोमियो और हाल ही में रिलीज हुए सूबेदार में भी नाना नजर आए। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
3: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज शाम 4 बजे पुणे के पास डोंजे में अंतिम संस्कार किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। देश आज भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ मना रहा है। 8 अक्टूबर 1932 को इसका गठन किया गया था। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी वायु योद्धाओं, अनुभवी सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी है। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने आज वायुसेना की बढ़ती क्षमताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि वायुसेना की असली ताकत केवल उन्नत उपकरणों और तकनीक में नहीं बल्कि एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से 25 करोड़ छात्रों को जोड़ेगी। उन्होंने कहा, 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशनों के साथ 5G कनेक्टिविटी हर जिले तक पहुंची। वस्तु और सेवा कर परिषद में विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा। सर्वोच्च न्यायालय ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को समिति गठित करने का निर्देश दिया। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का निधन। भारत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया और देश वायुसेना दिवस पर सेना के जवानों के बलिदान को नमन कर रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे थे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब दोस्तों, अब शुरू होगा हमारा संगीत में सफर एक बार फिर से कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s के साथ।

नमस्कार मेरे प्यारे लिसनर्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास। और दोस्तों, हमारी स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं 2:30, यानी अब शुरू होगा कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s।

0: और दोस्तों, अगर आपको भी याद आते हैं वो ऑडियो कैसेट्स, वो वॉकमैन और वो दूरदर्शन के सुनहरे दिन, तो गाइस आप बिल्कुल सही स्टेशन पे ट्यून इन कर चुके हैं। आज हिट्स ऑफ 90s पे हम बजाएंगे कुमार सानूआर का याग्निक और उदित नारायण के वो आइकॉनिक ट्रैक्स जो सीधा दिल में लैंड करते हैं। तो अपना काम छोड़ो, वॉल्यूम थोड़ा अप करो, नॉस्टैल्जिया के इस रोलर कोस्टर राइड के लिए तैयार हो जाओ। लेट्स ट्रैवल बैक इन टाइम प्योरली ऑन रेडियो स्टेशन अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज।
1: दिल तक बात पहुंची मिलते मिलते सनम, ओ
2: गीत संगीत
3: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
2: प्यार भरे अल्फाजों में
3: दिल से दिल की बात,
2: बस आपके नाम।
3: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज।

लीजिए दोस्तों, पेश है आप सबके लिए इस कार्यक्रम में पहला गाना फ्रॉम द फिल्म मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी। जी हाँ दोस्तों, इस गाने को गाया है कुमार सानू और आका याग्निक ने। लीजिए ये सॉन्ग, एंजॉय कीजिए ये सॉन्ग। मैं लौट कर आता हूँ, सुनते रहिए अरुणी FM 103.1 MHz।

0: चलिए छोटा दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे हमारे इस संगीत में सफर को पूरा करने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ अरुण FM 103.1 MHz पे, जहां होती है दिल से दिल की बात।
1: इंडिजेनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश आयोजित कर रहा है रन फॉर आइडेंटिटी। इस थीम के साथ एक मैराथन 11 अक्टूबर 2026 को। ये मैराथन न्योकुम निया ग्राउंड निर्जुली से आरंभ होकर न्योकुम लापांग ईटानगर तक होंगे, जिसमें पुरुष और महिला दोनों वर्ग के विजेताओं को मिलेगा आकर्षक पुरस्कार। तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए और रजिस्ट्रेशन के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8837 43

0: 4121 पर। अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम यानी कि ACWF अपना फर्स्ट एवर स्टेट लेवल सेमिनार आयोजित करने जा रहा है, जो होगा क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ESS सेक्टर ईटानगर नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक। इस सेमिनार के रिसोर्स पर्सन होंगे श्री जेम्स तेची तारा, प्रेसिडेंट अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम कम प्रेसिडेंट NBCC, एवांजेलिस्ट गुमदे रिबा सोंगथिंग और एडवोकेट नाबम रामा गुवाहाटी हाई कोर्ट ईटानगर बेंच। अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम अरुणाचल प्रदेश के सभी विमेन हेड्स ऑफ डिनोमिनेशंस, हेड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिनोमिनेशंस और विमेन लीडर्स को इस सेमिनार में सादर आमंत्रित करते हैं। याद रखें, जगह है क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ESS सेक्टर ईटानगर नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक। धन्यवाद।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
4: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
5: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
4: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
6: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
7: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
6: और लाइट बिल के,
7: अब जीरो रुपए कैसे दूं?
6: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
7: पक्का।
4: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
8: सो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अपना होस्ट आरजे ननास। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं ये संगीत में सफर एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुनेंगे बादशाह फिल्म का ये बेहतरीन गाना हम तो दीवाने हुए, जिसे गाया है अभिजीत भट्टाचार्य ने। लीजिए दोस्तों ये पैसे, ये बेहतरीन गीत आप सभी के लिए, सुनते रहिए अरुण FM 103.1 MHz।

श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s आकाशवाणी ईटानगर का रुन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। इसके तुरंत बाद आप सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस, और उसके तुरंत बाद मिस मी कमान श्रोताओं का समाचार, और फिर उसके तुरंत बाद ताहिर खान की श्रोताओं का समाचार। लेकिन हम फिर मिलेंगे एक बार फिर से संगीत में सफर में हमारे हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के साथ। तो बने रहिए और सुनते रहिए रुन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

阴柔暗柔，善弱善烂柔，六书在内，破戒为马事，安善安善的爹地咯，善人嘅，安乐啦。

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट्स में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास, और आप ट्यून इन कर चुके हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। दोस्तों, बॉलीवुड अपडेट्स यहां हम देते हैं टिंसल टाउन की हर एक स्पाइसी हॉट और ब्रेकिंग न्यूज सीधा आपके हेडफोन्स तक। तो गाइस, चाय की चुस्की हो या गाड़ी का सीट बेल्ट, वॉल्यूम को अप करो, क्योंकि आज बॉलीवुड की गलियों से मेरे पास है ढेर सारी खबरें।

सबसे पहले एक बहुत ही बारी दिल के साथ एक बड़ी खबर। गाइस, हिंदी सिनेमा के एक एब्सोल्यूट टाइटन, लेजेंडरी एक्टर नाना पाटेकर जी अब हमारे बीच नहीं रहे। 75 की उम्र में गोवा में सीवियर कार्डियक अरेस्ट के वजह से उनका निधन हो गया। तिरंगा से लेके वेलकम तक और क्रांतिवीर से लेके अग्नि साक्षी तक उनके आइकॉनिक डायलॉग्स और वो इंटेंस एक्टिंग स्टाइल हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। एंटायर फिल्म इंडस्ट्री, वेदर इट्स अमिताभ बच्चन, रजनीकांत और अक्षय कुमार, सभी इस वक्त डीप शोक और ग्रीफ में है। नाना पाटेकर की लास्ट राइट्स पुणे में उनके फार्म हाउस पर होने वाली है, फुल स्टेट ऑनर्स के साथ। मूविंग ऑन टू द बॉक्स ऑफिस, वेयर विजय सालगांवकर इज बैक एट मेकिंग हिस्ट्री। गाइस, अजय देवगन की दृश्यम 3 द कंक्लूजन ने बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी है। मूवी को रिलीज हुए बस कुछ ही दिन हुए हैं और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ का माइलस्टोन इजिली ब्रीच कर दिया है। इंडिया में ही फिल्म 230 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। तबू और अजय देवगन के साथ इस बार जयदीप अलावत ने जो परफॉर्मेंस दी है, इट्स माइंड ब्लोइंग। सिनेमा हॉल्स हाउसफुल जा रहे हैं और अगर आपने अभी तक नहीं देखा और अगर आपको जानना है कि 2 अक्टूबर वाली स्टोरी का फाइनल क्लाइमेक्स क्या था, तो बॉस इस वीकेंड आप प्लान सेट कर सकते हो। और दोस्तों, अब बात करते हैं उन मूवीज की जो इस मंथ आपके पास आ रही है। सबसे पहले आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की कॉमेडी थ्रिलर उड़ता तीर, जहां आयुष्मान एक ऐसा स्पाई बने हैं जो अपनी मेमोरी भूल जाता है। और मिड अक्टूबर में आ रही है राजकुमार राव की प्रहार, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्जैन निकम, ये एक कोर्टरूम ड्रामा होने वाला है। दोनों ही मूवीज के ट्रेलर्स ऑलरेडी यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहे हैं। दोनों फिल्म्स के अलावा रणबीर कपूर की मेगा बजट फिल्म रामायण का फीवर भी लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है, जिसका पार्ट 1 दिवाली के आसपास आने वाले हैं। तो गाइस, इस महीने बॉलीवुड में होने वाला है धमाका। तो दोस्तों, ये थी आज की बॉलीवुड अपडेट्स और आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में एक बेहतरीन गीत आप सबके लिए, फ्रॉम द फिल्म रंगिनी MMS, जिसे गाया है मुस्तफा जाहिद ने, ओनली ऑन आरओएनएफएम 103.1 MHz।

सदा दोस्तों आप सुन रहे हैं वांचो सदा दोस्तों आप सुन रहे हैं बॉलीवुड अपडेट्स आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे और इसके तुरंत बाद आप सुनेंगे वांचो श्रोताओं का समाचार। हम फिर मिलेंगे हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के साथ, तो बने रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे।

0: सतोष ऑप्शन रहित कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स आकाशवाणी ईटानगर का अरुणा एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब अगले कुछ पलों में आप सुनेंगे ईद मिस मी स्वताओं का समाचार, लेकिन अब फिर मिलेंगे हमारे संगीत में सफर में एक बार फिर से हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के साथ। तो बने रहिए और सुनते रहिए अरुणा एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज।
1: श्रोता अभी आप आनंद उठा रहे थे वांछित श्रोताओं का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है और अब आप सुन पाएंगे ईद मिश्रोताओं का कार्यक्रम।

0: ona goa nyo che okoma ne shiba ne eta ni jata ka pi ba ji ma pune anando che don ji atiko ne mogai boda la ho ga ma ho a shiba cha he inoda ne president Draupadi Murmu vice president dr cp radhakrishnan do ne prime minister narendra modi me la hen de ga da ho ga puluk eba ma che class hune hune ni ma che exam ma pram ba e a मैं आका पी है अरुणाचल प्रदेश गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के टी पार्नेक में बुनी एजेंट बहुता स्कॉलरशिप पाऊँ आप ये बता आओगा पुरुष आजाहित आरोचा पुरुष वेलफेयर सोसाइटी का कार्पस फंड आखलाने खागा मचे पाऊँ ची अली अवार्ड हंगा बम्मा क्लास हुनी मचे जीना सीजी ने नया पुरीक ऐडो ने क्लास हु मचे चरमक सोजाने बिजली पेंचे क्या पगता ला होगा एवर गया काफी होया या कौन दा लगा अरुणाचल प्रदेश राज्यसभा एमपी तय तागक में आंगन मिलन सेवा कोकोमाने पकुम पर डिस्ट्रिक्ट दुईमुख ने सगली सब डिविजन में मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर आज तेजी नाला ने होलमा लागता पाऊ न्याची एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड मने हा बदा होगा आंगनवाड़ी सेंटर आज तेगा जिगा डीसी में लिखी आचो तेगा बा अतु त्याना ने एमपी में लाओ बदा आओगा इमु चियो पुमा जो तंगो नी पुंगा इमु का बने स्पोर्ट्स टाउन है आउ इंदा पुगे दा ने दा पुजे एमएलए तानिया सोकी में पुन्य अपर सुबंसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में पहाच स्पोर्ट्स टाउन मगा अखने का मा करो है तशा बा महो लगाने सेवा संकप उत्सव को कमाने आ स्पोर्ट्स टाउन मगा अखगा जी माने बहा आई सच स्पोर्ट्स टाउन दो गा माता जी गा मिपुजी ना लाइव बता आओगा दापुर जाती बची आउटडोर स्टेडियम मने तामगा अखगा मा चिसाई बा एमएलए में गवर्नमेंट जी स्कीम ने प्रोग्राम तो चीपो वे लाख ओ बता आओगा आठो ना पगे अरुणाचल प्रदेश मा जी आसिपु दो चीपो अनिली गा बने नेशनल वर्कशॉप है बुनी ईटानगर से दुर्जी खांडू कन्वेंशन सेंटर मने अखापगाम बामाहो आ वर्कशॉप है ईटानगर चिंग पाती कोची सिफ्री मैम अरुणाचल प्रदेश बायोडाइवर्सिटी बोर्ड बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया दोने जीबी पॉन्ट इंस्टीट्यूट को आवागमन गने अखगा दा आहोगा पतानिची ईद मिशमी आहो अलीमाओ तो भाई
1: एचआईवी एमबे चिपो आसवे आउदा खागा
2: एचआईवी हम बे है एचआईवी गिला में निची एयू गया दोगा गए कांडो ने जीतोगा गए एचआईवी हम बे गिला इंजेक्शन ठापो बीजीजी ठा दोगा गए माने एचआईवी की अली ओदा एचआईवी हम बे गिला नानी में आ आगे माने खे दोगा ही
1: एचआईवी हम बे है जापा जी गए आँखों में गा गए जापा हाथोगा गए आई ओदा ने आरंडो में ठोबा माने एचआईवी हम बे की गुमी
2: अल ने एच आई बी हेम्बे गई चिंगाची तमको अतु सु अरुंदा खागा हेम्बे गई ओबो जमा असागा गई गो अब एंगो याबु इजीगा अतु चितोगा हिव एच आई बी हेम्बे यीजी मी कबा असागा अला जीजी तमको अगुते ने अतु सुजी इचा एच आई बी हेम्बे चिपोमा इचिबु असाओदा ओगा इबुया है नेशनल एड्स हेल्पलाइन ची नंबर खगे जीरो खिनी उमा कॉल एजी इचा को बह है अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेस नाहरलगन मच में लाहेगा
0: एजेंटा ला होगे अंजी इंडिया मच ओको के एलामामा माओकास यूनिट इलेक्ट्रिक पावर आंदुमा चिगाना होगे बने पीएम सूर्यगौर मुफ्त बिजली योजना पीएमएस जीएमबीवाई लाएगा स्कीम में गए आयोगा जिदा ला होगा सेवा संकल्प अभियान कोकोमाने अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट मच पावर डिपार्टमेंट में आई स्कीम जो नेवचिप अरुणाचल प्रदेश अधिकारी इमु लाके वचा एचाला पुची जिहुलु माचे ने इगावे माचाला पुची जिहुलु माचे ने लिबा अरुणाचल प्रदेश अधिकार ब्रह्म सेवा सेतु कैम अखगा वदा ला होगा कैम अखगा मामा अमु जुटेगा टेबल गे स्कीम चिपो लाकेगा टेबल गे स्कीम ग्राहके बा टेबल गे अदोने अमे तांगा बैंक ची टेबल गे अखगा वदा ला होगा ने आ स्कीम ग्रावदा उया है बैंक में आमे तंगा जिगा अरगावदा ला होगा काजे काजे इनिमा काजे आंतिमा ने कैम अखगावे अरुजी एहन दो एचला पुची जानु हिउ इन्या मले निमा चिनी सियांग डिस्ट्रिक्ट पोलेंग आतिको ने आ कैम अखगाई बाउ महा

0: चलापोचे जान्यो हेखेने आंडोले निमाचिने अरुणाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एमएमआ इगवे माचलापुची एलएमए बरुले निमाचिने माचलापुची हिमंगा आसुले निमाचिने माचलापुची हिउ लेउले निमाचिने आइदोने माचलापुची जिहुनि आसुले निमाचिने अरुणाचल प्रदेश आंतिकाय मामाचे इलेक्ट्रिकल डिविजन मामाने कैम अखगाउदा लाहोगा आतिपो सोलर अदागने एलामामा माओकासु यूनिट इलेक्ट्रिक आंदुमा आजुदा उयामे अहुजिगावे सोलर माने योगे लुतो इलेक्ट्रिक है पावर ग्राइड गा बाना बने इलेक्ट्रिक बिल मा अप्रा अलिम्या ही लगाई बावे सब्सिडी को माने खेगे किलोवाट रे सोलर अदावमा एजरमा असुरुकासो कानी किलोवाट अदावमा एजरमा तारु तारो एदोने कासो किलोवाट अदावमा एजरमा यो मंगा पहु गवर्नमेंट में स्कीम ग्राचे अकाउंट मा सोलर ताते पहुने हाथ गए बोधा लगा आम है हो सोलर लोए आमे ना इमु में बैंक माने मंगा पॉइंट यू मंगा परसेंट इंटरेस्ट माने कानी लाख लिबा एदोने यू पॉइंट किनी परसेंट इंटरेस्ट माने ताहु लाख लिबा पहु दाजिगाव मा हो प्रोजेक्ट अजिगु है वो परसेंट वेदा ला होगा आजिपो सोलर अदाजिगाव ओ आखाजी आइदोने आहाने स्मार्ट मीटर बम्बो इलेक्ट्रिक दातेजिगा इमुमेम आय स्कीम गाजिगाव महाम स्मार्ट मीटर आउंदा पोचातुगने स्मार्ट मीटर गामेम आय स्कीम गाउदा उगाजी बुयाओ पावर डिपार्टमेंट मा चिचागाजी ना लगा आजिपो सोलर अदाहिउदा उयामे नेशनल पोर्टल मा बालानेम www.pmsuryagarh.gov.in मा अलिम्याम पीएम सूर्यगढ़ मोबाइल एप मा बालाने पावर डिपार्टमेंट मा मोबाइल नंबर रजिस्टर एही रूफटॉप सोलर जुतेला मा लुटेम बने रजिस्टर एला वेंडर इंस्टॉलेशन इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट चे मीटर एदोने बैंक मा सब्सिडी पाऊ क्यूए मा बाजीना लगा डॉक्यूमेंट
1: HIV embe chipo asawe auda kaga
2: HIV hembe he HIV gila mingi chi iyu gadoga ga kandune jituga ga HIV hembe gila injection thapo BGG thadoga ga mane HIV khi ali oda HIV hembe gila nani me a ga mane kha doga i
1: HIV embe he japaji ge akonwe ga ge jepa hatuga ge ai odone arondo me thoba mane HIV embe khi gumi
2: अल ने HIV हेम्बे गई जिंगाची तमाको अतुसु अरुंदा खागा हेम्बे गई ओबो जमा असागा गई गो अबो एंगो याबु इजिगा अतुची तोगा हिव HIV हेम्बे इजी मी कबा असागा अलाजीजी तमाको अगुतेने अतुसु जी इचा HIV हेम्बे चिपुमा इचिबु असाओदा ओगा इबुया है नेशनल एड्स हेल्पलाइन ची नंबर खगे जीरो खिनी उमा कॉल एजी इचा को बह अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज नाहरलगुन में चिमे लाहेगा
3: श्रोता दोस्तों आप सुन रहे थे इदुमिस में श्रोताओं का समाचार आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे जहां होती है दिल से दिल की बात और अब शुरू होगा हमारा संगीत में सफर एक बार फिर से हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के साथ

श्रोता दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्म सॉन्ग्स आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां होती है दिल से दिल के बाद। और इसके तुरंत बाद आप सुनेंगे तांगसा श्रोताओं का समाचार। और दोस्तों, हमारी स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं 4:17, यानी अब वक्त हो गया है मेरे अलविदा कहने का। लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि अब आपके साथ जुड़ने वाली है आप सबके चहेते आरजे सुलोकना, जो बने रहेंगी आप सबके साथ हमारी तीसरी प्रसारण सभा में। और दोस्तों, इस सभा को, आज की इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ थे स्टूडियो और एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक टी तांगजांग तथा तकनीकी अभियंता रितेश सिंह। तो अब मुझे, यानी आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे नवाज को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी स्टेशन से एक बार फिर से। तो बने रहिए और सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

एर आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ मचौसा डुबार रंगबलई अक्टूबर जिलिंग रामचेत तारीख पांग हजनीरा खकरोपांग आरो रंगजा बलि बई खुमिनी थौरीजा मसोत तांसा प्रोग्राम तफांगराई मचौ रंगजा रुंगलांग लोकवांग कोनका मामाईर इंडिया मोबाइल कांग्रेस पर न्यू दिल्ली नंग यासुभूमि नंग मनीषा मसो रंगबलई राम कथुंगर इर कांग्रेस पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी र तफांग इंडिया मोबाइल कांग्रेस पर तथुंगरौले मुंग नंग टेली कम्युनिकेशन कौनंग नई डिजिटल कनेक्टिविटी कौनंगरा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन दाम कौनंग उन्नति कयांग रप तखय रुमो फान त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी र इंडिया मोबाइल कांग्रेस नंग मसौ फान बाय त परजु इंडिया मोबाइल कांग्रेस प्लेटफॉर्म र नांगमुंग टेलीकॉम सेक्टर नई डिजिटल कनेक्टिविटी कलोकलाई रूप खैरु मोफान द आरो मचौ है 5G कनेक्टिविटी प नांगमुंग नांग बडो डिस्ट्रिक्ट ताम नांगसो थोग्रु मो प्राइम मिनिस्टर फान द परम ला बंगारा हजत बायोंग अपात बेस स्टेशन ताम र नांगमुंग वपम नांग 5G कनेक्टिविटी सेहेरु मोमन प्राइम मिनिस्टर मोदी र फान्त इन्डिया मोबाइल कांग्रेस र इनोवेशन एन्ड नेक्स्ट जेनेरेसन

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का नांगनै टेक्नोलॉजी लेड इकोनॉमिक ग्रोथ प आरें सतायरो रायरंग रोत इंडियन एयरफोर्स वनर मजुपांग एयरफोर्स डे प इंडियन एयरफोर्स इनफेलिबल इम्पर्वियस एंड प्रिसाइस मंगनंग मचौसा सरेंग चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह र मचौसा एयरफोर्स डे सकानंग आकाशवाणी काउ म रुंगलांग कुत प्रजुंगो इंडियन एयरफोर्स र मुंग प वोंग म कचुपाई डाक तोंग र मोरोत आरो मनपांग यंग ऑपरेशन सिंदूर तयंग रोले एयरफोर्स र नांगमुंग वोंग म तान र पावर प तखोइतुंगो एयर चीफ मार्शल र फांद इंडियन एयरफोर्स र मचुपांग एक्सरसाइज वायु शक्ति प समुद्र नई बली बाई बायलेटरल एक्सरसाइज दाम तयंग रोरा दोनों थान नई मचो बालांगवन मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज तारंग शक्ति तयंग रोरे इंडियन एयरफोर्स र पन कॉम्बेट रेडीनेस प नरीम माइताई रंगो चीफ मार्शल र फांद वमंगरो फिल्म एक्टर नाना पटेकर प मचौरंग ना गोवा नंग अपी हम नंग रही लेते आरो अपी मंग प मचौसा पोने हा कुवंग दोंजे हा नंग रंजा काउ बले बजी नंग चुक चिंग ओरोते प्रतुम नंग महाराष्ट्र सरकारी र नाना पटेकर म स्टेट फ्यूनरल कुम रफांते हिंदी फिल्म ने मराठी फिल्म एक्टर नाना पटेकर प रही लखा म नांगमुंग प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रनई वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन रडा परजु प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सियांग रन थबात पोरियो नो सिंगमुंग वांग दिवंसा वाबलेर क्लास 10 नंग ने क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन नंग अह कुरी खाम अरुणाचल प्रदेश गवर्नर के टी परनाइक र लिवंसा म स्कॉलरशिप अवार्ड कुत पोरियो वेलफेयर सोसाइटी वंग लिवंसा म एडुकेशनल सपोर्ट कुमंग वरौ गवर्नर्स एक्सीलेंट अवार्ड कोरपास फान मानतवंग लिवंसा वाबलई र हजत सनत कजय लापचिंग वरौत गवर्नर र स्कॉलरशिप प कुम रोखेपतनांग स्कॉलरशिप लापची लिवंसा प जेचे कजय खाम गवर्नर र रनपथत आरो इर स्कॉलरशिप र आखावै लिवंसा म लिफात प तह म कुचिंग वरौ अपीर रतुंग रंगो गवर्नर रफांत अरुणाचल प्रदेश वंग राज्यसभा एमपी ताई तागाग्र दुईमुख हानंग नई सागली हानंग मॉडल अंगनवाड़ी सेंटर खाकमंग वरो अपी एमपी लेट फान वंग लाक्सर बंगा कजोय कुमर रोखेप्त इरमान पर ताई तागाग्र मनैसा तिजिदो थ्री अंगनवाड़ी सेंटर नंग अंगनवाड़ी कामसोमन महिंग जमनई हेल्पर्स महिंग जमरा परजु पंचायत मेंबर्स हिंजाम रहमत प्रजु फानकुत आरो मजवंग मॉडल अंगनवाड़ी सेंटर अनैप खाकम जगह प अहवंग रायरंग मुरौताई तागाग्र पापम परे डिप्टी कमिश्नर मरौत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी र मुंग म पांखर बंगा खाकसो कामसुम र मंगलो मंगवरौ सेवा संकल्प अभियान थलिंग अंगन मेलन सेवा तफांग्र आरें मानप एमपी र फानकुत फानबाय तनां आवर अंगनवाड़ी आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी मंगनां अंगन मेलन सेवा प हयात नई रोम अपात अंगनवाड़ी सेंटर स्टाम नंग तथुंग रुंगो एमपी ताई तागाग्र फानत अपर सुबनश्री डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नई बीजेपी डिस्ट्रिक्ट युवा मोर्चा दापुरियो प कचुरौरे सेवा संकल्प उत्सव जखुंगनां करोखक ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन पर दापुरियो नंग आउटडोर स्टेडियम नंग मनीषा तथुंग परजु दापुरियो एमएलए तानिया सोकी पर चीफ गेस्ट जंग नंग मामा मई डेवलपमेंट तयंग मनई सिंगमुंग डेवलपमेंट तयंग म गेम्स एंड स्पोर्ट्स पर अरेंग जंग रंगो रोत परसा तानिया सोकी रंगो इंडिजिनस स्पोर्ट्स पर एशियन गेम्स नंग नई इंटरनेशनल खेल अजुम नंग थयोक म रवुरंग रा रंगोमन रोत परम सिंगमुंग वंग मई म हुबिदा थलाक मंग वरौ नई मुंग प ओनुति तयंग मंग वरौ सरकारी स्कीम्स ताम नई वेलफेयर प्रोग्राम्स

0: Macam namre HIV rak kamungnang areng runglang tajen. HIV rak sa kamungnang ahma tegro juade meipa akawong jangre. Meung hanwang HIV rak menai meijam me tongwo lau kaumra. Perma HIV rakun mei bocem aking sirings kaum rakpo riling renang me arau meung hanwang rakpo nausa hanata riling rakci. Perma taipo jasiek pe meijam me tongang lau nei jak lalu lau ra rakui pam lau nei adam me faksa rau HIV rakpo riling mu perma surong le kagroman pe HIV rakpo riling mu. HIV rak po homoinang karai roure kuthang ma acha tomai rakchi arau HIV rak ma hadrang jamu arau doctor ma karai rang rar rasan pan rang jamu parma ere rak kam nang nari ma taghai ma national helpline number 1097 nang phone rang rar ireman po singmung wa mai ma ahu rang tan mung arau Arunachal Pradesh State AIDS Control Society ra kuta.
1: श्रोता दोस्तों अभी आप सुन रहे थे तांगसा श्रोताओं का समाचार. इस कार्यक्रम को आगे पूरा सुनने के लिए आप ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज पर. ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM है जिसे आप सुन रहे हैं FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर.
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है. कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था. कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है. पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना. मैंने कहा ओ ये सही है बेटा.
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in.

0: ढलती हुई शाम हमें ये सिखाती है कि ढलना भी कितना खूबसूरत हो सकता है, जब दिल में कल एक नई सुबह का यकीन हो। नमस्कार श्रोता दोस्तों, इसी उमंग, सुकून और खिली हुई शाम के साथ आप सभी का आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम में तहे दिल से स्वागत है। और दोस्तों, दूसरी प्रसारण सभा में आरजे नानाश ने आपके दोपहर को संगीतमय बनाया। और अब इस तीसरी प्रसारण सभा के इस खास दौर में मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त सुलोकना। साथ ही दोस्तों, ये भी बताना चाहेंगे कि इस तीसरी प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचाने में हमारा साथ दे रहे हैं तमाम एफएम ट्रांसमीटर के सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गोपाल राय और तकनीकी अभियंता ताना आतुम। तो चलिए रुक करते हैं इस तीसरी प्रसारण सभा की ओर। सबसे पहले प्रस्तुत है ज्ञान और मनोरंजन का कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर।
1: इंडिजेनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश आयोजित कर रहा है रन फॉर आइडेंटिटी। इस थीम के साथ एक मैराथन 11 अक्टूबर 2026 को। ये मैराथन न्योकुम निया ग्राउंड निर्जुली से आरंभ होकर न्योकुम लापांग ईटानगर तक होंगे, जिसमें पुरुष और महिला दोनों वर्ग के विजेताओं को मिलेगा आकर्षक पुरस्कार। तो जल्दी से रजिस्टर

0: कीजिए और रजिस्ट्रेशन के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8837434121 पर।
1: गुड इवनिंग ईटानगर।

निखिल पॉल जॉर्ज एवं श्रेया घोषाल की आवाज में आप सुन रहे थे इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी कि ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया फिल्म बर्फी से। आपको बताना चाहेंगे कि इसी गीत के साथ ही हमने शुरुआत कर ली है कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर की, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर।

0: साइबर कैरन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।
1: इंडिजिनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश आयोजित कर रहा है रन फॉर आइडेंटिटी इस थीम के साथ एक मैराथन 11 अक्टूबर 2026 को। ये मैराथन न्योकुम निया ग्राउंड निर्जुली से आरंभ होकर न्योकुम लापांग ईटानगर तक होंगे, जिसमें पुरुष और महिला दोनों वर्ग के विजेताओं को मिलेगा आकर्षक पुरस्कार। तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए और रजिस्ट्रेशन के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8837434121 पर।
0: श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर। शाम का माहौल है और इस माहौल को थोड़ा हल्का फुल्का बनाते हैं और आपके चेहरे पर लाते हैं एक प्यारी सी मुस्कान। तो चलिए, आप सभी के लिए प्रस्तुत है एक छोटी सी हास्य कहानी। उम्मीद करते हैं कि ये छोटी सी कहानी आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान जरूर ले आए।

तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक चूहे ने हीरा निगल लिया। तो हीरे के मालिक ने उस चूहे को मारने के लिए एक शिकारी को ठेका दिया। जब शिकारी चूहे को मारने पहुंचा तो वहां हजारों चूहे झुंड बनाकर एक दूजे पर चढ़े हुए थे, मगर एक चूहा उन सब से अलग बैठा था। शिकारी ने सीधा उस चूहे को पकड़ा जिसने डायमंड निगल लिया था। अचंभित डायमंड के मालिक ने शिकारी से पूछा, हजारों चूहों में से इसी चूहे ने डायमंड निगला, ये तुम्हें कैसे पता लगा?

तो इस पर शिकारी ने जवाब दिया, बहुत ही आसान था। जब मूर्ख धनवान बन जाता है तब अपनों से भी मेल मिलाप छोड़ देता है।

तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी हास्य कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपके चेहरों पर एक प्यारी सी मुस्कान जरूर आई होगी। और वैसे ये कहानियां भले ही महज कहानियों में ही सच होती हो, लेकिन इनकी सीख हमारी असल जिंदगी में कहीं ज्यादा कभी कभार मायने रखती है।

0: तो श्रोता दोस्तों, इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुन पाएंगे हिंदी में समाचार, उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार, और फिर शाम के 5 बजते ही आप सुनेंगे दौड़ते श्रोताओं का समाचार। समाचारों के बाद शाम के 5:05 पर हम फिर हाजिर होंगे यही आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM पर लेकर कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव।
1: अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम यानी कि ACWF अपना फर्स्ट एवर स्टेट लेवल सेमिनार आयोजित करने जा रहा है, जो होगा क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ESS सेक्टर ईटानगर नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक। इस सेमिनार के रिसोर्स पर्सन होंगे श्री जेम्स।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से 25 करोड़ छात्रों को जोड़ेगी। उन्होंने कहा, 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशन के साथ 5G कनेक्टिविटी हर जिले तक पहुंची। सर्वोच्च न्यायालय ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियम की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को समिति गठित करने का निर्देश दिया। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का निधन। अरुणाचल प्रदेश की राज्यसभा सांसद ताई तागाक ने दोईमुख और सागाली में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए अपने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि फंड से 15-15 लाख रुपए देने की घोषणा की। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने विकसित अरुणाचल 2047 के लिए व्यापक रोडमैप तैयार करने के उद्देश्य से नागरिकों, सामुदायिक आधारित संगठनों और गैर सरकारी संगठनों से विचार और सुझाव आमंत्रित किए। अरुणाचल प्रदेश के ऑर्किड पर टेक्सोनॉमी, माइक्रो प्रोपेगेशन, कंजर्वेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, XC2 ब्रीडिंग एंड इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज विषय के साथ 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला ईटानगर के DK कन्वेंशन हॉल में जारी। भारत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। कहा, पाकिस्तान आतंकवादी गुटों को समर्थन देने की बात छिपा नहीं सकता। और देश वायुसेना दिवस पर सेना के जवानों के बलिदानों को नमन कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इनमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को दिखाया जा रहा है। 4 दिवसीय इस सम्मेलन की शुरुआत कल हुई थी। इस वर्ष का विषय है सीमाओं से आगे विस्तार। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस मंच ने भारत में दूरसंचार क्षेत्र और डिजिटल कनेक्टिविटी के विकास को दिखाया है।
3: बीते वर्षों में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया है। हमारे सामने विकसित भारत का एक विराट संकल्प है। इसके लिए हमें अपने प्रयासों को निरंतर व्यापक करते रहना है। हमें IMC को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट और आइडिया का एक जंक्शन बन सके।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा है कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशन हैं। उन्होंने कहा है कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में सुविधा प्रदान की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने दीक्षा प्लेटफॉर्म के जरिए भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी प्रदान की।
3: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशन और करीब 6,000 करोड़ लर्निंग मिनट दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है, हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है, इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
2: वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडप में हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक की अध्यक्षता कर रही है। इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, हरियाणा के मुख्यमंत्री एवं राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में जीएसटी विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा हो रही है। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार स्टार्टअप, शिक्षण संस्थानों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के व्यापक वर्ग तक एआई की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा है कि भारत अब उन देशों में शामिल है जिन्होंने एआई को अपनाकर इसके वास्तविक लाभ को हासिल किया है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेता थे। एक रिपोर्ट।
4: कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो।
5: विश्वनाथ पाटेकर, जिन्हें दुनिया नाना पाटेकर के नाम से जानती है, उनका जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के मुरुड जंजीरा में हुआ था। नाना पाटेकर उन कलाकारों में से थे जो पर्दे पर आते ही किरदार में जान डाल देते थे।
6: आज तुमने राम और अल्लाह को मारने की कोशिश की है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, हम भले ही ऊपर वाले को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन हमारा धर्म एक है, मतलब एक है, इंसानियत।
5: 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित नाना पाटेकर ने परिंदा, क्रांतिवीर, अग्निसाक्षी, नट सम्राट, अब तक 56 और यशवंत जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से अमिट छाप छोड़ी। वर्ष 1978 में गमन से बॉलीवुड में कदम रखने वाले नाना पाटेकर ने अलग अलग तरह के किरदारों को पर्दे पर जीवंत किया। शक्ति द पावर, अपहरण, टैक्सी नंबर 9211 और राजनीति जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को खूब सराहा गया। फिल्म वेलकम में गैंगस्टर उदय शेट्टी के किरदार से उन्हें खास तौर पर लोकप्रियता मिली। नाना पाटेकर ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी सिनेमा से अपना रिश्ता बनाए रखा। हाउसफुल 5, ओ रोमियो और हाल ही में रिलीज हुए सूबेदार में भी नाना नजर आए। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
2: अरुणाचल प्रदेश के राज्यसभा सांसद ताई तागाक ने टिकदोती आंगनवाड़ी केंद्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के साथ बातचीत के दौरान दोईमुख और सागाली में मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए अपने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि MPLAD फंड से 15-15 लाख रूपये देने की घोषणा की। उन्होंने पापुमपारे उपायुक्त को प्रस्तावित मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि चिन्हित भूमि सभी प्रकार के कानूनी भार या विवाद से मुक्त हो। सभा को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद ने सेवा संकल्प अभियान के तहत शुरू किए गए आंगन मिलन सेवा के महत्व पर प्रकाश डाला। अरुणाचल प्रदेश सरकार के विकसित भारत अरुणाचल 2047 के लिए व्यापक रोडमैप तैयार करने के उद्देश्य से नागरिकों, सामुदायिक आधारित संगठनों और गैर सरकारी संगठनों से विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य ऐसा अरुणाचल प्रदेश बनाना है जो विकसित, समृद्ध, आत्मनिर्भर, तकनीकी रूप से उन्नत और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ हो। श्री खांडू ने कहा है कि राज्य का लक्ष्य समावेशी विकास सुनिश्चित करना है, जिसमें बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, कनेक्टिविटी, कौशल और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध जैव विविधता, स्वदेशी विरासत, पर्वतों और नदियों का संरक्षण भी

0: शामिल है। नागरिक अपने सुझाव समर्पित विकसित अरुणाचल 2047 पोर्टल विकसित अरुणाचल 2047.in के माध्यम से 31 अक्टूबर 2026 तक जमा कर सकते हैं। इन सुझावों की समीक्षा करते हुए वर्ष 2047 के लिए राज्य के विजन दस्तावेजों को अंतिम रूप देते समय इन्हें ध्यान में रखा जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के ऑर्किड पर टैक्सोनॉमी, माइक्रो प्रोपेगेशन, कंजर्वेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सीटू ब्रीडिंग एंड इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज विषय के साथ 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला ईटानगर के डीके कन्वेंशन हॉल में जारी है। 2 दिवसीय इस राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन राज्य वन अनुसंधान संस्थान चिंपू ईटानगर द्वारा अरुणाचल प्रदेश जैव विविधता बोर्ड, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के क्षेत्र केंद्र ईटानगर और जीवी पंत के सहयोग से किया जा रहा है। भारत ने आतंकवाद के मुद्दों पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छुपाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कहा है कि दुनिया 9/11, 2008 के मुंबई और 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमलों को नहीं भूल सकता। एक रिपोर्ट।
1: संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रथम सचिव रघुपुरी ने कहा कि केवल घोषणाओं से आतंकवाद का खात्मा नहीं किया जा सकता। श्री पुरी ने आतंकवादियों, उनके वित्त पोषकों और समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने मसूद अजहर के अफगानिस्तान में छिपे होने के पाकिस्तान के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि तालिबान सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया है। श्री पुरी ने मसूद अजहर के बारे में सूचना देने के लिए 70 लाख रुपए के इनाम की नई घोषणा को भी दिखावा बताया। प्रमुख आतंकवादी हमलों का उल्लेख करते हुए श्री पुरी ने कहा कि आतंकवादियों को सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराना आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को कमजोर करता है। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: देश आज भारतीय वायुसेना की 54वीं वर्षगांठ मना रहा है। 8 अक्टूबर 1932 को इसका गठन किया गया था। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी वायु योद्धाओं, अनुभवी सैनिकों और उनके परिवार को बधाई दी है। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने आज वायुसेना की बढ़ती क्षमताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि वायुसेना की असली ताकत केवल उन्नत उपकरणों और तकनीक में शामिल नहीं बल्कि इसके योद्धाओं में निहित है। वायुसेना प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायुसेना के युद्ध अभियानों की भी याद दिलाई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय प्रेम शर्मा। Prime Minister Narendra Modi today said that the Indian Mobile Congress platform has witnessed the evolution of the telecom sector and digital connectivity in India. Inaugurating the 10th edition of the India Mobile Congress at Yashobhoomi in New Delhi, Mr. Modi highlighted that over the years this platform has emerged as a platform showcasing India's progress and its aspirations. Mr. Modi said, today 5G connectivity has reached every district of the country. He added, there are now more than 5,50,000 base stations to operate 5G connectivity across India. He said that the government is now working to connect around 25 crore students through various digital and online education platforms. Mr. Modi highlighted the growing importance of digital education in India through the Diksha platform. The 57th GST Council meeting is underway at Bharat Mandapam in New Delhi. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman is chairing the meeting. The GST Council meeting is deliberating policy reforms to resolve GST disputes and improve the flow of input tax credit, with the aim of reducing the time and cost of compliance. Sources in the Finance Ministry said that the government will propose a five-pronged plan for the next set of reform to the GST system. These reforms are aimed at automating and easing a lot of current administrative bottlenecks in the GST system and reducing the compliance burden, especially for small businesses. The Supreme Court today directed the Centre to constitute a three-member committee to examine whether pharmaceutical companies' marketing practices, including gifts and other benefits offered to doctors, require statutory regulation. A bench of Justices Vikram Nath and Sandeep Mehta issued the direction while hearing a plea seeking against unethical interactions between drug companies and doctors. The centre has been asked to file an affidavit on compliance with the matter listed for further hearing on January 29. A case study on the evolution of water governance in Gujarat and India was launched at IIM Bengaluru yesterday in the presence of Secretary, Department of Drinking Water and Sanitation under Ministry of Jal Shakti, Ashok Kumar Meena. Taking a page from the case study, the Jal Shakti Secretary Meena spoke on how people's mission, backed by strong institutions, steady investment and Gram Panchayat ownership, can quicken transformation. The nation is celebrating the 94th anniversary of Indian Air Force today. Air Chief Marshal AP Singh today highlighted Indian Air Force's growing capabilities and stressed that its true strength lies in its air warriors rather than merely in advanced equipment and technology. Addressing on Indian Air Force Day celebrations at Hindon Air Base in Ghaziabad, Air Chief Marshal Singh emphasized the role of air power in protecting national interest and described the Indian Air Force as the custodian of the skies. Veteran actor Nana Patekar passed away at the age of 75 after suffering a severe cardiac arrest at his residence in Goa this morning. Patekar, one of India's most acclaimed actors, was known for his performances across Hindi and Marathi cinema, with a career spanning several decades. Prime Minister Modi today said that actor Nana Patekar was an outstanding artist who won the hearts of audiences through various roles. Addressing an event in New Delhi today, Mr. Modi said, Nana Patekar's life was dedicated to the honor, dignity and pride of the tricolor. Mr. Modi highlighted that through his films, he strongly criticized the prevailing social system and work against social evils. Prime Minister said, Nana Patekar was a strong advocate of taking firm action against anti-national elements. India has accused Pakistan of doublespeak on terrorism, saying Islamabad in attempting to gloss over its support for terror groups by announcing a reward for information on Jaish-e Mohammed chief Masood Azhar. India said the world was not forgetting the 9/11, 26/11 and the Pahalgam attacks. Exercising its right to reply in the UN General Assembly, India's First Secretary Raghu Puri said terrorism cannot be defeated through declarations and call for action against its perpetrators, financiers and sponsors. That's all in the news bulletin. Namaskar.
3: श्रोताओ अभी आप सुन रहे थे हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार. ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है और अब आप सुन पाएंगे नुक्ते श्रोताओं का कार्यक्रम.

समा है सुहाना सुहाना, हवाओं में मस्ती से छा जाना, आपके शाम के सफर को कर देने और भी खुशनुमा, लेकर आते हैं हर शाम नींद ड्राइव।

0: अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम यानी कि ACWF अपना फर्स्ट एवर स्टेट लेवल सेमिनार आयोजित करने जा रहा है, जो होगा क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ESS सेक्टर ईटानगर नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक। इस सेमिनार के रिसोर्स पर्सन होंगे श्री जेम्स टेची तारा, प्रेसिडेंट अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम कम प्रेसिडेंट NBCC, एवेंजेलिस्ट गुमदे रिबा सोंगथिंग और एडवोकेट नाबम रामा गुवाहाटी हाई कोर्ट ईटानगर बेंच। अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम अरुणाचल प्रदेश के सभी विमेन हेड्स ऑफ डिनोमिनेशंस, हेड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिनोमिनेशंस और विमेन लीडर्स को इस सेमिनार में सादर आमंत्रित करते हैं। याद रखें, जगह है क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ESS सेक्टर ईटानगर नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक। धन्यवाद।
1: इंडिजेनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश आयोजित कर रहा है रन फॉर आइडेंटिटी। इस थीम के साथ एक मैराथन 11 अक्टूबर 2026 को। ये मैराथन न्योकुम निया ग्राउंड निर्जुली से आरंभ होकर न्योकुम लापांग ईटानगर तक होंगे, जिसमें पुरुष और महिला दोनों वर्ग के विजेताओं को मिलेगा आकर्षक पुरस्कार। तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए और रजिस्ट्रेशन के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8837 4341 21 पर।

शाफकत अमानत अली एवं सुनीति चौहान की आवाज में अभी आप सुन रहे थे बिन तेरे। तो दोस्तों, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, सुन रहे हैं कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव।

0: अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम यानी कि ACWF अपना फर्स्ट एवर स्टेट लेवल सेमिनार आयोजित करने जा रहा है, जो होगा क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ESS सेक्टर ईटानगर नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक। इस सेमिनार के रिसोर्स पर्सन होंगे श्री जेम्स तेची तारा, प्रेसिडेंट अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम कम प्रेसिडेंट NBCC, एवेंजेलिस्ट गुमदे रिबा सोंगथिंग और एडवोकेट नाबम रामा गुवाहाटी हाई कोर्ट ईटानगर बेंच। अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम अरुणाचल प्रदेश के सभी विमेन हेड्स ऑफ डिनोमिनेशंस, हेड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिनोमिनेशंस और विमेन लीडर्स को इस सेमिनार में सादर आमंत्रित करते हैं। याद रखें, जगह है क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ESS सेक्टर ईटानगर नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक। धन्यवाद।
1: इंडिजेनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश आयोजित कर रहा है रन फॉर आइडेंटिटी। इस थीम के साथ एक मैराथन 11 अक्टूबर 2026 को। ये मैराथन न्योकुम निया ग्राउंड निर्जुली से आरंभ होकर न्योकुम लापांग ईटानगर तक होंगे, जिसमें पुरुष और महिला दोनों वर्ग के विजेताओं को मिलेगा आकर्षक पुरस्कार। तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए और रजिस्ट्रेशन के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8837434121 पर।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: तो दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म क्रुक से, और इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन आप जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि अब से कुछ ही क्षणों में हम फिर हाजिर हैं लेकर सोलफुल सूदिंग बॉलीवुड ट्रैक्स का कार्यक्रम शाम की महफिल के साथ, यही आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर।
1: ना मैंने अब ये तुमसे कहने लगा हूँ।
2: इंडिजेनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश आयोजित कर रहा है रन फॉर आइडेंटिटी इस थीम के साथ एक मैराथन 11 अक्टूबर 2026 को। ये मैराथन न्योकुम निया ग्राउंड निर्जुली से आरंभ होकर न्योकुम लापांग ईटानगर तक होंगे, जिसमें पुरुष और महिला दोनों वर्ग के विजेताओं को मिलेगा आकर्षक पुरस्कार। तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए और रजिस्ट्रेशन के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8837434121 पर।
3: अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम यानी कि ACWF अपना फर्स्ट एवर स्टेट लेवल सेमिनार आयोजित करने जा रहा है, जो होगा क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ESS सेक्टर ईटानगर नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक। इस सेमिनार के रिसोर्स पर्सन होंगे श्री जेम्स तेची तारा, प्रेसिडेंट अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम कम प्रेसिडेंट NDCC, एवांजेलिस्ट गुमदे रिबा सोंगथिंग और एडवोकेट नाबम रामा गुवाहाटी हाई कोर्ट ईटानगर बेंच। अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम अरुणाचल प्रदेश के सभी विमेन हेड्स ऑफ डिनोमिनेशंस, हेड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिनोमिनेशंस और विमेन लीडर्स को इस सेमिनार में सादर आमंत्रित करते हैं। याद रखें, जगह है क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ESS सेक्टर ईटानगर नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक। धन्यवाद।

तन्हाइयों में अक्सर एक आवाज आती है, दिल की धड़कन में किसी की याद मुस्कुराती है। यूं तो गुजर जाती है हर शाम दुनिया की भीड़ में, मगर जब बात महफिल की हो तो रूह खिल जाती है। नमस्कार और एक बेहद हसीन शाम आप सभी लिसनर्स को मुबारक। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा शो शाम की महफिल में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त सुलोकना और ये अंक शाम की महफिल कार्यक्रम समर्पित है सिर्फ और सिर्फ सोलफुल और सूदिंग बॉलीवुड ट्रैक्स के नाम, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात।

इंडिजेनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश आयोजित कर रहा है रन फॉर आइडेंटिटी इस थीम के साथ एक मैराथन 11 अक्टूबर 2026 को। ये मैराथन न्योकुम निया ग्राउंड निर्जुली से आरंभ होकर न्योकुम लापांग ईटानगर तक होंगे, जिसमें पुरुष और महिला दोनों वर्ग के विजेताओं को मिलेगा आकर्षक पुरस्कार। तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए और रजिस्ट्रेशन के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8837434121 पर। अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम यानी कि ACWF अपना फर्स्ट एवर स्टेट लेवल सेमिनार आयोजित करने जा रहा है, जो होगा क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ESS सेक्टर ईटानगर नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक। इस सेमिनार के रिसोर्स पर्सन होंगे श्री जेम्स टेची तारा, प्रेसिडेंट अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम कम प्रेसिडेंट NBCC, एवांजेलिस्ट गुमदे रिबा सोंगथिंग और एडवोकेट नाबम रामा गुवाहाटी हाई कोर्ट ईटानगर बेंच। अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम अरुणाचल प्रदेश के सभी विमेन हेड्स ऑफ डिनोमिनेशंस, हेड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिनोमिनेशंस और विमेन लीडर्स को इस सेमिनार में सादर आमंत्रित करते हैं। याद रखें, जगह है क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ESS सेक्टर ईटानगर नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक। धन्यवाद।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

ब्रेक से पहले डियर लिसनर्स सुन रहे थे आप, सांवली सी रात हो खामोशी का साथ हो, बिन कहे बिन सुने बात हो तेरी मेरी, फिल्म बर्फी से अरिजीत सिंह की मखमली आवाज में। और ये है कार्यक्रम शाम की महफिल, जहां हम आपके लिए पेश करते हैं सोलफुल सूदिंग बॉलीवुड नगमे।

0: कितनी खूबसूरत और अजीब बात है ना दोस्तों, कि जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो हमारी जिंदगी को संगीत से भर देते हैं, हमें बेहतरीन और लाजवाब गानों से रूबरू करवाते हैं। शुक्रिया उन सभी का। दोस्तों, कार्यक्रम शाम की महफिल में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
1: इंडिजेनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश आयोजित कर रहा है रन फॉर आइडेंटिटी इस थीम के साथ एक मैराथन 11 अक्टूबर 2026 को। ये मैराथन न्योकुम निया ग्राउंड निर्जुली से आरंभ होकर न्योकुम लापांग ईटानगर तक होंगे, जिसमें पुरुष और महिला दोनों वर्ग के विजेताओं को मिलेगा आकर्षक पुरस्कार। तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए और रजिस्ट्रेशन के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8837 4341 21 पर।

0: तो दोस्तों कार्यक्रम शाम की महफिल में आज के लिए बस इतना ही।
1: अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम यानी कि ACWF अपना फर्स्ट एवर स्टेट लेवल सेमिनार आयोजित करने जा रहा है, जो होगा क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ESS सेक्टर ईटानगर नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक। इस सेमिनार के रिसोर्स पर्सन होंगे श्री जेम्स तेची तारा, प्रेसिडेंट अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम कम प्रेसिडेंट NBCC, एवेंजेलिस्ट गुमदे रिबा सोंगथिंग और एडवोकेट नाबम रामा गुवाहाटी हाई कोर्ट ईटानगर बेंच। अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम अरुणाचल प्रदेश के सभी विमेन हेड्स ऑफ डिनोमिनेशंस, हेड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिनोमिनेशंस और विमेन लीडर्स को इस सेमिनार में सादर आमंत्रित करते हैं। याद रखें, जगह है क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ESS सेक्टर ईटानगर नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक। धन्यवाद
0: दोस्तों। अब आप सभी के लिए प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम व्हाट्सअप अरुणाचल।

0: कई बॉर्डर विलेज का मैंने दौरा किया और मैंने पाया जैसे हवाई जो हेडक्वार्टर है वहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर वाला और वातोंग विलेज है। वहां के युवाओं का कहना है कि हम जब बाहर जब नौकरी करते थे तो हमारा इनकम इतना नहीं था, लेकिन कोविड के पीरियड में डिमांड कीवी का बढ़ा और हमें पता चला कि अगर हम कीवी की बागवानी अगर हमारे यहाँ सफल होती है तो हमें अन्य जगह पे नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। और बहुत से जो युवाओं ने वातोंग विलेज और वाला विलेज में कीवी की बागवानी शुरू की और आज उनको लाखों रुपए की आमदनी हो रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बागवानी जो है बॉर्डर एरिया से पलायन को रोकने में भी एक कारगर साबित हो रही है। और इसी से जहां तक हम सियांग बेल्ट की बात करें, सियांग बेल्ट को हमेशा जो है हम लोग ऑरेंज और पाइनएप्पल के प्रोडक्शन के लिए जानते हैं, लेकिन सियांग बेल्ट में भी इनोवेशन चल रहा है। गोबोक विलेज, गेलिंग, सिंगा, मतलब बहुत सारे जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत वहां कीवी के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। और मैं गोबोक विलेज में गया था और वहां के मैंने एक किसान से बातचीत की तो उसने बताया कि पर्सिमम और कीवी की बागवानी से, वैसे तो संतरे की बागवानी तो वहां होती है, पाइनएप्पल की बागवानी होती है, लेकिन कीवी और पर्सिमम की बागवानी दो जुड़ जाने से उनका जो सोर्स ऑफ इनकम जो है वो सस्टेनेबल हो गया है। अगर सपोज दैट उनको अगर ऑरेंज की बागवानी से किसी साल इनकम नहीं हुआ, किसी कारण से उनका अगर पाइनएप्पल की बागवानी अच्छी नहीं हुई, तो उनको कीवी और पर्सिमम की बागवानी से उनका जो इनकम हो रहा है उससे उनका परिवार चल रहा है, जिसको कहते हैं सस्टेनेबल इनकम। इसी विषय पर हम आपसे बात करेंगे कि कितने जिले हैं जो अरुणाचल प्रदेश के हैं जो कि कीवी का विस्तार हो रहे हैं।
1: अभी पीला रामा 14 डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहा है, और भी डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन इसमें जो छोटा छोटा पॉकेट्स में वो कीवी माना फिजिबल हो रहा है, लेकिन उसको हम लोग अभी इस बार नहीं ले रहा है, बाद में उसको एक्सटेंड करते जाएंगे। एज ऑन डेट वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन 14 डिस्ट्रिक्ट दैट इंक्लूड्स कीवी यूएसपी ऑल्सो।
0: जीरो वैली के किसानों की जो समस्या क्या है अभी प्रेजेंट टाइम में, दूसरी चीज है कि इससे किस तरह से लोगों को रोजगार मिला हुआ है।
2: किसान का प्रॉब्लम्स चैलेंजेस है कि अभी जो हमारा मार्केटिंग के लिए पहले काफी चैलेंजेस होता था, तो अभी तो वो चैलेंजेस तो कम होना शुरू हो गया। जैसे हमारा ये अपेटा डिपार्टमेंट ने मतलब हमें सहयोग किया, सहयोग करने के बाद उन्होंने मार्केटिंग बाहर कंट्री एक्सपोर्ट करने के लिए सहायता दिया, तो हम इस बार करने जा रहे हैं, तो उसमें तो हमारे तो काफ़ी अच्छी बात है मतलब इनकम होने के लिए। और तकलीफ ये है कि हमारा जो हैंड ग्रेडिंग जो होता है एक्चुअली हमारे जो सेग्रीगेशन पीरियड होता है, जो उसको चाटना बोलते हैं ना, चाटना मतलब जो ग्रेडिंग वाइज होते हैं, उसी में हमको काफ़ी तकलीफ होते हैं। जैसे हमारा डॉक्टर लोई सर को भी हम लोग ने काफ़ी बार मतलब इस बार बोला था कि सर आप कहीं नहीं थोड़ा लुकअप तक कर दीजिए कि कीवी यूएसपी में कुछ हो सके, तो उन्होंने सर ने हमको एश्योरेंस दिया कि मतलब इस बार तो आप लोग को मिल जाएंगे थ्रो ये कीवी मिशन द्वारा ये जो मशीनरीज मिलेंगे, तो उसमें तो चैलेंजेस तो आई थिंक जब वो आ जाएंगे तो इतना चैलेंजेस तो नहीं होगा सेग्रीगेशन में।
0: जीरो वैली में कीवी से वाइन बनती है और ये भारत का पहला एक ऐसा जगह है जहां से कीवी से वाइन बनता है। इसके बाद अन्य जिलों ने शुरुआत की, अन्य हिस्सों के लोगों ने शुरुआत की। तो जब वहां कीवी से वाइन बन रहा है तो आपके जो प्रोडक्ट है वाइन फैक्ट्री में तो बिक रहे हैं।
2: हाँ जी, वाइन फैक्ट्री में भी हमें हम लोग देते हैं जो मतलब उनके डिमांड जैसे जैसे होते हैं तो हम उनको देते हैं सप्लाई। जो तो वही कि वो उनके डिमांड और हमारा अपना फार्मर्स का डिमांड अलग अलग होते हैं। फार्मर्स को चाहिए इंस्टेंट कैश, तो उनको चाहिए थोड़ा

0: क्योंकि उनका जो मार्केटिंग होता है अलग होता है, तो उसी लिए थोड़ा सा मतलब डिमांड वहाँ में भी जाते हैं लेकिन कम जाते हैं, जितना उसका रिक्वायरमेंट होता है उससे जरूरत से ज़्यादा जाते हैं मतलब वहाँ में भी ना।
1: आप देख रहे हैं कि दिन पर दिन सरकारी नौकरियों के अवसर कम होते जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, तो अगर युवाओं को रोजगार देना है तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर अभी के समय में सबसे बड़ा सेक्टर है जो कि युवाओं को उद्यमिता या ट्रेनिंग देकर उनको ऑब्जर्व कर सकता है, बागवानी के क्षेत्र में आकर्षित कर सकता है। तो युवाओं के लिए आप क्या स्कीम चला रहे हैं?
2: इसमें युवाओं के लिए हमारा एग्री एंड एलाइड सेक्टर में आगे में पहले से शुरू हो गया, लेकिन ये साल से हमारा ये कैच देम यंग, एक हमारा ऑनरेबल हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर का उसका इनिशिएटिव से ये उसका एकदम अपना ये पेड प्रोग्राम है, जिसमें हमारा मंत्री ने ये सोचा है, विजन किया है कि जितना जितना हमारा ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड जो बस्ती में रह गया है तो उसको आगे बागवानी में कैसे किसके लिए लाना है, सब करना चाहता है लेकिन टेक्निकल नो हाउ नहीं है उनके पास, नॉलेज नहीं है, इसलिए इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बार से हम ट्रेनिंग भेज रहे हैं। इस बार हम लोग डिपार्टमेंट फ्लोरिकल्चर, नर्सरी मैनेजमेंट, मशरूम और ये एक हाईवे में तीन सेक्टर में उसको ट्रेनिंग भेज रहा है। अभी हमारा डिस्ट्रिक्ट में सब सभी डिस्ट्रिक्ट से लिस्ट आ गया है, अभी उसको जो जो फ्लोरिकल्चर में जाना चाहता है उसको उसमें ट्रेनिंग में भेज देगा, जो नर्सरी मैनेजमेंट करना चाहता है उसमें भेज देगा। तो ये हमारा जो अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए काफी माने बेनिफिट मिलेगा, और ये ट्रेनिंग खत्म करके जब वापिस लौटेगा तो ये बागवानी में उसको बेनिफिट मिलना है, ताकि वो जो ट्रेनिंग लेके आ गया वो बेकार में नहीं जाना है। तो ये बागवानी में उसको हम लोग प्रायोरिटी जो जो वहां से ट्रेनिंग लेके आएगा बागवानी में प्रायोरिटी उसमें रखना है।
1: अगर कोई भी युवा बागान लगाना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कैसा मतलब कि तैयारी करनी चाहिए ताकि वो ज्यादा लाभ कमा सके?
0: पहले जो अगर कीवी क्षेत्र में ये कुछ शुरू करना चाहो, पहले उसको एरिया को आप देखना पड़ेंगे कि मतलब क्या एरिया जो ज्यादा प्लेन है ना स्लोप है ना, उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ में अकॉर्डिंगली जैसे जैसे मतलब एरिया जैसे उस हिसाब से पेंशन भी आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि एरिया अगर ज़्यादा भरा होगा तो फिर एंगल पोस्ट बुकने के लिए काफ़ी मतलब तकलीफ होता है, वुडन पोस्ट ही लगाना पड़ेंगे, तो उसमें इकोनॉमी के लिए वुडन पोस्ट लगाने से तो ठीक है, तो वहाँ में मतलब करके वेराइटी सिलेक्शन बहुत जरूरी होते हैं। हम अभी देखा गया हमारे जीरो में अभी सर ने जैसे बताया 5 वेराइटी मिलते हैं, तो वैसे तो वहाँ में 4 प्रकार का हमारा वहाँ में उत्पन्न होता है मतलब ना वेराइटी जो सैंपल निकल रहे हैं जो बेचते हैं। तो अभी जैसे हमारा डायरेक्टर सर ने बोला कि आने वाला ये वर्षों से मतलब हमारा जो कीवी जो भी बाहर बेचते हैं तो क्वालिटी एक्सपोर्ट करने के लिए क्वालिटी प्रोडक्शन आप कीजिए, तो उस क्वालिटी प्रोडक्शन में जाने के लिए हमें हेवर्ड वेराइटी में जाना पड़ेंगे, तो हेवर्ड में तो थोड़ा प्रोडक्शन थोड़ा कम होते हैं क्योंकि वो पोलिनाइजर सही पोलिनाइजर नहीं होने के कारण से, सर को तो पता है, सर को भी हम लोग ने बोला इस पर होल सेकने से थोड़ा पोलिनाइजर वेराइटी को थोड़ा अच्छे से देख दीजिए बोल करके। तो आगे हम वही चाहते हैं कि हमारा युवा लोग को मतलब जो भी आना चाहता हूँ बागवानी मतलब कोई खेल नहीं होता है, मतलब उन लोग सोचते हैं कि बहुत इजीली करेंगे लेकिन ये बहुत टफ है मतलब।

0: ना करने के लिए. पहले मैंने भी सोचा था बहुत इजी है, जब मैं पिताजी के साथ जाता था तो मतलब जैसे जैसे पिताजी लोग ने किया उनको देख करके मैं बहुत इजी है. जब मैं खुद अपना या मैं बगीचे करके देखा मेरे को कठिनाई बहुत मिला है. कभी सड़क बनाना है, कभी ये पेंशन उठाने के लिए मतलब हेड लोड करके लेकर के जाना है, जैसे जैसे एरिया होता है मतलब ना, तो उस हिसाब से एरिया को देखते हुए उन लोग को मतलब सेलेक्शन करना चाहिए कि मतलब यहाँ में ठीक होगा नहीं हो. कि वहाँ एक बार बनने के बाद आप अगर सही ढंग से नहीं बना पाते तो आपका मेहनत तो बेकार जाएंगे. क्योंकि वहाँ में साल में हमारा जैसे सीजन में होता है दो बार हम वेडिंग करते हैं. वेडिंग करके मतलब जैसे जैसे वेडिंग करते हैं तो अगर वो अगर वेडिंग नहीं कर पाते तो फिर कीवी कीवी नहीं रहता है मतलब वो पूरा घास उस जंगल होकर के मतलब डैमेज हो जाते हैं.
1: डॉक्टर लोई, अगर हम बात करें आप किसानों को, युवाओं को जो अभी बागवानी करना चाहते हैं, बागवानी क्षेत्र में आना चाहते हैं मुख्य रूप से कीवी के लिए, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे?
2: ये कीवी में ज्वाइन होने से पहले ये कीवी, क्योंकि हमारा स्टेट कीवी मिशन जो लॉन्च हुआ है लास्ट ईयर और ये यूएसपी में, हम लोग इसमें जो जो फार्मर आना जो चाह रहा है पहले उसका हमारा सोयल टेस्टिंग हो रहा है. ये जैसा गंबो ने कहा है पहले उसका सोयल का टेस्टिंग होगा. अगर ठीक है वो कीवी के लिए सही है तो उसमें आप कीवी का स्कीम देगा. उसके बाद इसमें हम डिपार्टमेंट ने एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा कीवी यूएसपी में चार डिस्ट्रिक्ट में है, वेस्ट कामेंग, लोअर सुबनसिरी, दिबांग वैली, सीयोमी, तो इसमें हम एफपीओज बना रहे हैं. तो वो एफपीओज रजिस्टर्ड एंटिटी होगा तो उसके द्वारा हमारा ये इम्प्लीमेंटेशन होगा. और जो न्यू जो फार्मर जो आना चाहेंगे वो भी इसी एफपीओ में ज्वाइन करना पड़ेगा. तो जीरो में हम लास्ट ईयर जब विजिट करते समय, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पहले से जो एफपीओ बना वाला भी है तो उनको भी हमने रिक्वेस्ट किया, अगर अभी कोई नया फार्मर्स आपका साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो, क्योंकि हमारा बेनिफिट तो एफपीओ का जरिए हमारा इम्प्लीमेंट हो रहा है तो आप लोग इसको कैसे इंक्लूड करेंगे. तो उन्होंने कहा सर जिस जिसके पास 100 प्लांट कीवी का है वो हमारा ग्रुप में एलिजिबल है तो वो ज्वाइन कर सकेगा. तो उन्होंने बताया तो उसी हिसाब से अभी जो जो हमारा कीवी में जो कल्टीवेशन कीवी का कल्टीवेशन जो करना चाहेगा तो हमारा डिपार्टमेंट से भी सलाह मिलेगा, मतलब वो एफपीओ से भी नॉलेज मिलेगा. अभी ये हम लोग इसके साथ साथ साथ ट्रेनिंग भी देते जाएगा, एफपीओ को भी ट्रेनिंग देगा और ये ऑफिसर्स जितना इन्वॉल्व है उसको भी ट्रेनिंग देगा.
1: किसानों की जानकारी के लिए मैं जानना चाहूंगा कि अगर कोई भी कीवी की बागवानी किया है तो उसको उसका जो कितना समय में मैच्योर हो जाता है, बेचने लायक हो जाता है?
2: देखिए कीवी का मैच्योरिटी को जब पहचान के लिए आप जब फार्मर्स को भी मैं ये सलाह देता हूं क्योंकि उनको भी पता नहीं होता है. कीवी का जब आप हार्वेस्ट करेगा सोचता है जब उसके हेरी जो है उसको आप ऐसे ऐसे रैप करके देखिए वो हेरी उखड़ने लगेगा, निकालने लगेगा और ये अंदर में ग्रीनिश टाइप का वो जो जब डेवलप हो जाता है उसमें समझ लेना है कि कीवी पक गया है. और ज्यादा कुछ माने लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन में जाने लायक का ये होता है तो उससे थोड़ा आगे, लेकिन मैच्योर के बाद वो हार्वेस्ट करने से भी सही रहता है. तो कीवी को हार्वेस्ट करने का पहचान वही है, ये सूल जो नूम जैसा जो हेरी हेरी है उसको टच करने से वो जो मैच्योर हो गया गिरता जाएगा और ये डार्किश मतलब ग्रीन का वो दिखाई देगा.
1: दर्शकों हमें उम्मीद है कि ऑर्गेनिक

तो दोस्तों अभी आपने सुना साप्ताहिक कार्यक्रम व्हाट्सअप अरुणाचल, जिसका विषय था मिशन अरुणाचल कीवी। आपको बताना चाहेंगे कि अब से कुछ ही क्षणों में आप सुन पाएंगे आदि श्रोताओं का समाचार। तब तक के लिए बने रहे, हम फिर आप सभी के साथ रूबरू होंगे 6:35 से, लेकर आएंगे कार्यक्रम आज के कलाकार।

श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आदि श्रोताओं का समाचार। इस कार्यक्रम को आगे पूरा सुनने के लिए आप ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी ईटानगर कारण FM है, जिसे आप सुन रहे हैं FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब से कुछ ही क्षणों में प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के कलाकार।

0: देखिए, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है, इतना रुतबा ही शर्म है कि किसी भी घर में अगर रिश्ता बनाना चाहूं तो कोई ना नहीं कह सकता। बस एक अच्छा खानदान चाहिए, एक शरीफ ने एक लड़का चाहिए।
1: लेकिन पंडित जी कुछ खुलकर हमें आपके बिजनेस के बारे में नहीं बता सके।
0: आपने बिजनेस के बारे में नहीं बताया।
2: नमस्कार डियर लिसनर्स, आप सभी का कार्यक्रम आज के कलाकार में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा ये एपिसोड किसी आम कलाकार के नाम नहीं है। आज हम बातें करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने जब भी स्क्रीन पर कदम रखा तो तूफान आ गया, जिनकी कड़क आवाज, बेबाक अंदाज और आंखों के गुस्से ने सिनेमाघरों में तालियों की गूंज पैदा कर दी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा की दमदार अभिनेता नाना पाटेकर की।
3: अरे छोड़ना ज्वाला की बात, यहाँ बीड़ी जलाने के लिए माचिस दूसरे के पास मांगनी पड़ती है। क्रांति की बात, एक होने पे तेरा बाप हूँ।
4: ए बुटे, सुना नहीं क्या पंजा लड़ाएगा?
5: बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं।
3: ना मैं बदलूंगा ना तो मेरा रवैया बदलेगा। अगर आपको बदलना है तो वो शपथ बदलिए जो कमीशन के वक्त दी जाती है। भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान रहूंगा, भारतीय गणतंत्र की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहूंगा, धर्म भाषा जात पात के नाम पर लोगों में वैमनस्य फैलने नहीं दूंगा। संविधान ने मुझे जो अधिकार दिए हैं उसका इस्तेमाल निष्पक्ष होकर ईमानदारी से करूंगा।
2: और दोस्तों, कार्यक्रम आज का कलाकार समर्पित है नाना पाटेकर जी को।

कार्यक्रम आज के कलाकार में अभी आप सुन रहे थे रवीना टंडन एवं नाना पाटेकर स्टारर मूवी गुलाम ए मुस्तफा का ये गीत तेरा गम मेरा गम। यह कार्यक्रम आज के कलाकार और आज हम बातें कर रहे हैं नाना पाटेकर जी की। दोस्तों, वे सिर्फ अपनी गंभीर अदाकारी के लिए ही नहीं जाने जाते थे, उनके ऊपर फिल्माए गए कुछ गाने आज भी हमारे दिलों में एक खास जगह रखते हैं। चाहे वो फिल्म खामोशी, द म्यूजिकल का इमोशनल ड्रामा हो या फिर फिल्म वेलकम का मजाकिया अंदाज़।

तो आइए अब सुनते हैं फिल्म तिरंगा का वो सदाबहार और जोशीला गीत जो नाना पाटेकर और राजकुमार की बेमिसाल जोड़ी को सलाम करता है।

नाना पाटेकर सिर्फ पर्दे के कलाकार ही नहीं थे, असल जिंदगी में भी वे एक सच्चे कलाकार और मसीहा थे। एक ऐसा अभिनेता जिसने कभी अपनी सादगी को नहीं छोड़ा। महाराष्ट्र के सूखे से जूझ रहे किसानों की मदद के लिए उन्होंने नाम फाउंडेशन की शुरुआत की। वे हमेशा कहते थे कि अगर भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है तो दूसरों के आंसू पोंछना सीखें। आज ही के दिन 75 वर्ष की आयु में वे हमारे बीच से विदा हो गए, लेकिन उनकी यादें, उनकी फिल्में और उनका ये बेबाक अंदाज हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगा।

दोस्तों कार्यक्रम आज के कलाकार में बस इतना ही। कहते हैं कि जाने वाले कभी नहीं आते, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ बनी रहती है। यही प्रार्थना है कि ईश्वर उनकी आत्मा को शाश्वत शांति प्रदान करे। इसी नोट पर आपको बताना चाहेंगे कि अब से थोड़ी ही देर में आप सुन पाएंगे निशे श्रोताओं का समाचार। समाचार के उस पार हम फिर हाजिर होंगे।

श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे निशी श्रोताओं का समाचार। इस कार्यक्रम को आगे पूरा सुनने के लिए आप अभी ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज पर। आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM है, जिसे आप सुन रहे हैं FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोता दोस्तों, अभी आप सुनेंगे एक विशेष प्रस्तुति जो समर्पित है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर। इस विशेष श्रृंखला को अभी आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली के केंद्र से।

0: dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next-gen K-Series 1.0 litre dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next-gen K-Series 1.0 litre dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: Indigenous और जिन अलग अलग पहलुओं की आज हम बात करेंगे उनमें एक साझा कड़ी दिखाई देती है। इनके कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव शायद ऐसे हैं जो आंकड़ों में तुरंत दिखाई नहीं देते, चाहे वो पानी या ईंधन लाने में बचने वाला समय हो, या फिर वो स्वच्छ ईंधन से होने वाले स्वास्थ्य के लाभ हो, या फिर बिजली और बेहतर आवास से पैदा होने वाली आर्थिक गतिविधियां हो। आज की हमारी चर्चा इन सब विषयों पर है और आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वीके पॉल, फॉर्मर मेंबर नीति आयोग एंड पवन कुमार, सीनियर जर्नलिस्ट। नमस्कार और आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी स्टूडियोज में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बुनियादी सवाल से। जब भी कोई पॉलिसी अस्तित्व में आती है उसका मूल्यांकन कितने समय में किया जा सकता है? पहले हम आपसे शुरुआत करते हैं पवन जी।
3: नमस्कार, अच्छा लगा आपके स्टूडियो में आके। देखिए, कुछ पॉलिसी आप 2 महीने में नाप सकते हैं, कुछ पॉलिसी आप 1 साल में नाप सकते हैं, कुछ 5 साल में, कुछ 10 साल में। पर जो आपका रिक्वायरमेंट है, जिस पॉलिसी के बारे में आप बात करना चाहते हैं, वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी इम्पैक्ट आपको, उसके लिए आपको लंबा वक्त देना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, इन्फ्लेशन नापने के लिए कोई पॉलिसी लेते हैं आप, तो 1 महीने में नाप सकते हैं कम हुआ कि नहीं हुआ। FDI पे आपको बात करनी हो तो 1 साल का टाइम चाहिए, देखते हैं क्या हुआ, कितना आया, कहां से आया, कौन से सेक्टर में आया। अब जिस स्ट्रक्चरल पॉलिसीज की बात आप कर रहे हैं कि साहब जल जीवन मिशन का कितना फर्क पड़ा, या जो दूसरी और गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसका कितना फर्क पड़ा, उसमें आपको मिनिमम कम से कम 5 साल का, जो मेरा इकोनॉमिक्स जितनी मुझे समझ में आती है उसके हिसाब से 5 साल का आपको एक होराइजन मान के चलना पड़ेगा। कुड बी 5 साल, कुड बी 10 ईयर्स ऑल्सो, बट 5 साल मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको देना पड़ेगा। तो पॉलिसी नापने के अपने मेजरमेंट के अपने एक तरीके हैं, वो है नहीं कि साहब कोई पॉलिसी सरकार ने कल को लॉन्च किया और आज उसका मूल्यांकन करें और उसके बाद आप कहें कि साहब काम हुआ या काम नहीं हुआ, वो सही तरीका पॉलिसी का नहीं है। आपको एक सर्टेन टाइम पॉलिसी को देना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ पॉलिसी दैट यू हैव लॉन्च्ड,
2: ताकि उसका प्रभाव नजर आए और बेहतर समझ में आए।
3: जी
2: डॉक्टर पॉल, आपसे मैं यही सवाल पूछना चाहूंगी क्योंकि आप नीति आयोग के सदस्य रह चुके हैं, आपका नजरिया शायद थोड़ा सा अलग होगा इस बारे में।
4: एक्चुअली अलग नहीं है पवन जी, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। ये पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका असर कब होगा, ये बात बिल्कुल सटीक है। लेकिन ये हम रख के चल सकते हैं कि अगर एक पॉलिसी ने एक्शन अचीव करना है, मान लीजिए कि एक बात हो गई कि हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाएंगे, तो फैसला हो गया
2: जी
4: कि हम कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर को अगले लेवल पे लेके जाएंगे। इसको बनाने का टाइम लगेगा, इसको 4-5 साल, 3 साल लगते हैं बनाने में। इंक्रीमेंटल रोल आउट होता है, फिर क्वालिटी एश्योरेंस होती है, फिर एक सैचुरेशन लेवल पे कवरेज, फिर क्वालिटी। तो कुछ चीजों में डिपेंडिंग ऑन द सेक्टर, डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम, डिपेंडिंग ऑन द इनिशिएटिव, इट टेक्स डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम टू सी द इम्पैक्ट। लेकिन एट अ गुड बेंच मार्क इज, आई एग्री विद सर दैट 5 years इज अ गुड बेंच मार्क फॉर मेनी ऑफ द इनिशिएटिव्स दैट विल एंड हैव चेंज्ड द ईज ऑफ लिविंग फॉर आवर फैमिलीज।
2: ओके,
4: तो उस बेंच मार्क से आपसे आगे बात बढ़ाते।
2: जी बिल्कुल, और क्योंकि आज का जो विषय है वो हर घर बेहतर जीवन के बारे में है, जो शुरुआत घर से करते हैं। अब जब हम घर को परिभाषित करते हैं या हम आवास की बात करते हैं, तो क्या

0: आवास को केवल एक छत के रूप में देखना चाहिए या फिर परिवार की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के आधार के रूप में भी उसे देखना चाहिए?
1: घर की जब आप बात करते हैं तो उसमें आपको घर में पहुंच के अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? आप 5 दिन कहीं बाहर रहे, आप घर में जाए, घर से ज्यादा कहीं खुशी नहीं हो सकती। तो इसीलिए हम जब घर बोलते हैं तो उसमें सब कुछ होना चाहिए, सारी सुविधाएं होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, उसमें बिजली होनी चाहिए, उसमें रहने की जगह होनी चाहिए, इसमें इतनी सिक्योरिटी होनी चाहिए। इसमें घर में रह के आपके बच्चे हैं, आपके जो परिवार हैं उसकी देखभाल करिए आप। तो आप मेरे लिए घर जो है, इवन सरकार की स्कीमों के हिसाब से घर जो है केवल छत दे दिया तो वो घर नहीं है,
0: एक होलिस्टिक
1: पूरी
0: डेफिनेशन।
1: पूरा पूरा एक होलिस्टिक आकार प्रकार है
0: जी
1: उसका। वो जब आपके पास है तो आप उसको घर बोल सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: मेरे ख्याल से शायद यही पूछना चाह रही थी आप।
0: जी बिल्कुल, मैं यही पूछना चाह रही थी और ये मैं प्रधानमंत्री आवास योजना को मद्देनजर रखते हुए पूछना चाह रही थी। डॉक्टर पॉल, मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या आप पवन जी की बात से सहमत हैं, पहली बात तो, और दूसरी बात ये कि भारत में कई दशकों से गरीबों के लिए, गरीब परिवारों के लिए सरकारी आवास योजनाएं चलती आ रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ने किन चुनौतियों को भापा या किन कमियों को भापा जो वो पूरा करने की कोशिश कर रही है, या कौन से ऐसे गैप्स थे जिसे इस पॉलिसी ने आइडेंटिफाई किया?
1: पहले भी सरकार जो है वो आवास योजनाओं पे काम करती थी। इस सरकार ने क्या किया है, इस सरकार ने उसको आगे बढ़ाया, ठीक है, इस सरकार ने उसको आगे बढ़ाया। साथ ही साथ जो सरकार एक ओवरऑल होलिस्टिक एटीट्यूड जो पहले था उसमें पूरा एक कल्चरल इमोशनल चेंज लाया, उसमें चेंज लाया, जिसमें बोला कि साहब ये आवास जो है ये, अब हमने कहा कि ये केवल एक स्केलेटन नहीं है, ये स्ट्रक्चर नहीं है, ये उससे बढ़ के कुछ है। तो पहले भी हम लोग गांव में जाते थे, जैसे पत्रकार के तौर पे कहीं गए तो आपने कहा कि साहब घर बनाया क्या आपने, तो पता चला कि साहब उसका घर बना हुआ है और आधा बना हुआ है आधा नहीं बना हुआ है। आधा घर बना मतलब आप समझिए कि सीने तक की दीवार आई, उसके बाद दीवार नहीं है, पैसा खत्म हो गया था।
0: जी
1: इस सरकार ने आके थोड़ा सा उसमें बात को आगे बढ़ाया, उसको ज्यादा चेंज किया, और अक्रॉस दी स्टेट्स, आप मध्य प्रदेश जाए, बिहार जाए, आप यूपी जाए, किसी भी स्टेट में जाएंगे तो आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि एक रूपता मिलेगी आपको प्रोग्राम में। अब वो जो आवास योजना है वो उनके लिए केवल छत नहीं है, आवास योजना उनके लिए सुरक्षा है, उनके लिए डिग्निटी है, उनके लिए उनका रिकॉग्निशन है। अब सोचिए कि एक फैमिली के लिए ये सब कितना जरूरी होता है, क्योंकि पहले हम इसलिए निहारिका इस पे बात नहीं करते थे क्योंकि हमें पता ही नहीं होता था। अब हमें पता चला कि अच्छा सरकार ने रिकॉग्नाइज किया कि हम एग्जिस्ट करते हैं, कोई एक ऐसी सरकारी बॉडी है जो इस बात की चिंता कर रही है कि साहब हमारे बारिश हो रही है तो बारिश में हम केवल भीग नहीं रहे हैं, हमें रहने की जगह नहीं है। उसमें डॉक्टर साहब से आप मेडिकल पे ज्यादा बात करेंगे, जैसे फर्ज करिए कि हमारे पास घर नहीं है, घर नहीं होने से उसके हेल्थ कितना इम्पेक्ट होता था,
0: बिल्कुल
1: ये लोग उसके विद्वान हैं उस पर ज्यादा बात करेंगे। अब फर्ज करिए किसी का घर है, सांप काट लिया, आप कल्पना करते हैं कभी गांव में जिनके घर में मिट्टी के हैं, छप्पर हैं, घास फूस के हैं, डॉक्टर साहब वहां सांप बैठा हुआ है, दूसरे जानवर बैठे हुए हैं, बिच्छू है, जगह नहीं है, दो ईंटों के बीच में या दो मिट्टी के नली के बीच में।
0: जी
1: तो ऐसा नहीं, घर केवल उनके लिए अभी आज की तारीख में रिकॉग्निशन है, प्राइड है, गौरव का भाव है, उसके अलावा एक ओवरऑल मेंटल एंड फिजिकल एश्योरेंस एंड सिक्योरिटी, वो सब पूरा एक पूरा आस्पेक्ट है, वो पूरी चेन है, वो घर है। इसलिए वो सबसे पहला तो उनको कि साहब अच्छा हमें घर मिला। अब जब घर देंगे अभी, क्योंकि आगे जब आप बात करेंगे, आगे बिजली की बात करिएगा, ये सब सरकार के अलग अलग मंत्रालय निहारिका हो सकते हैं, वो सरकार के लिए मंत्रालय अलग हो सकते हैं, वो सारी मंत्रालय के जो चेन्स हैं वो जाके सिंपल एक फैमिली और एक व्यक्ति उसके अपलिफ्टमेंट कैसे कर रहा है वो अब से जो पहले होता था उसमें एक सी चेंज है। हम देखिए कोई सरकार कितना काम कर रही है इसका मूल्यांकन आपको एक समय के बाद करना पड़ेगा,
0: बिल्कुल
1: और किसी पॉलिसी की जब हम लोग बात करते हैं कि साहब अच्छा है बुरा है जो भी है, तो आपको एक वक्त उसको देना पड़ेगा, उसके बाद उसका असेसमेंट करेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि साहब कितना फर्क पड़ा है। एक फर्क ये पड़ गया कि लोग कहते थे कि अच्छा घर हमें क्यों नहीं मिला, जिनको नहीं मिला उनको इस बात की दिक्कत नहीं कि हम कैसे रह रहे हैं, उनको इस भरोसा है कि साहब ऐसा है कि देयर इज अ स्कीम अवेलेबल जिसमें हमारे बराबर के आर्थिक समानता वाले लोगों को मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। ये अवेयरनेस अपने आप में बताता है कि साहब इसका मतलब है कि थोड़ा सा सोच में एक बेहतरी आई है, ये एक अच्छी बात है। तो मैं ये कह रहा था आवास योजना उनके लिए केवल वो नहीं है, वो मेंटल एंड फिजिकल बोथ, वो उनके लिए अपलिफ्टमेंट का
0: यानी
1: एक
0: काफी
1: टूल।
0: लेयर्ड टर्म है जब हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं, और जब हम आवास की बात करते हैं तो वो केवल दीवारें नहीं है, उसकी काफी सारी लेयर्स हैं। आपके विचार क्या हैं सर इस पे?
2: मैं ये कहना चाहूंगा कि हर आवास में दो जरूरतें पूरी हों तो वो आवास पूरा है। एक है कि उसमें पानी की सप्लाई होनी चाहिए, पीने लायक पानी टैप से घर में आए, तो प्रधानमंत्री जी ने उसका कार्यक्रम बनाया, जल जीवन मिशन बनाया।

0: घर नल जल की उन्होंने परिकल्पना करी। दूसरा है और शायद उससे पहले आता है कि टॉयलेट हो
1: जी,
0: घर में, एक टॉयलेट हो, ये फंडामेंटल नीड है, एक ह्यूमन राइट वाली बात है ये। और हम इतना बड़ा काम हुआ है सिर्फ दीवार बनाने और टॉयलेट ही भूल जाना, या फंक्शनल टॉयलेट ही भूल जाना, या उस तरह का इस्तेमाल ना बता पाना उस हाउस होल्ड को, तो अधूरी बात है। तो अगर हम ये दो चीजें देखें, तो प्रधानमंत्री जी ने आपके कार्यक्रम में स्वच्छ भारत का अभियान के अंतर्गत गाँव में 12 करोड़ टॉयलेट बनाने का संकल्प लिया और उसको सिद्ध करके दिखाया। उसके कितनी डायमेंशंस है, ईज ऑफ लिविंग है पहले, एक सिक्योरिटी है, और हमारी महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, खासकर जो उनकी लाइफ इम्प्रूव होती है, आप उसके बारे में सोचिए। तो जो घर में जो बदलाव आया है, ये एक मुद्दे को अगर देखें तो ये अपने आप में इतनी बड़ी बात है जो काम पूरा नहीं हुआ था।
1: जी
0: और अगर मैं इसको स्वास्थ्य से जोड़ू तो पब्लिक हेल्थ का जो हाइएस्ट प्रिंसिपल है वो साफ पानी है और एक एनवायरमेंट है जो कि सफाई वाला हाइजीनिक एनवायरमेंट है, और टॉयलेट आती है आसपास गांव में, सारा ओपन डिफिकेशन फ्री होता है कि बाहर शौच कोई नहीं जा रहा है, तो जो जीवाणु है वो मुंह के रास्ते से, गंदगी से मुंह के रास्ते से आके बीमारी नहीं पैदा करते। दस्त नहीं उसकी बीमारी होगी, हेपेटाइटिस नहीं होगा, टाइफाइड नहीं होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसको स्वास्थ्य से जोड़िए। यहाँ की हम पढ़ते थे बहुत जमाने पहले कि हर बच्चे को 3 एपिसोड जो है वो डायरिया के होते हैं बचपन में, अब
1: जी
0: सब बदल गया है, नेग्लिजिबल हो गया है। और इसके फॉर्मल एस्टिमेट्स हमारे पास हैं कि जब ये सैचुरेट हुआ काम रूरल इंडिया में, तो 70,000 बच्चों की डेथ हर साल कम हुई है, क्योंकि डायरिया कम हुआ, इन्फेक्शन डिजीज कम हुई, ओरोफिकल रूट टूटा, और इसके अलावा न्यूट्रिशन बढ़ी,
1: जी
0: और ये सब होने के साथ साथ खाफ एनवायरनमेंट से। सिर्फ ये एक सेंटिमेंट की बात नहीं है, एक नपीतुली बात है कि लाइव्स बच रही हैं और उनको नहीं दौड़ना पड़ रहा है, अपना पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ रहा है कि डायरिया के लिए और दस्तों के लिए। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अगर बढ़ते हुए हम इसको जोड़ेंगे कि हर घर नल जल से कितना ईज ऑफ लिविंग हुई है, वो भी
1: बिल्कुल।
0: मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा।
1: मेरा अगला सवाल इसी पर होने वाला था, जल जीवन मिशन और स्वच्छता अभियान पे। दोनों की मेरे ख्याल से एक साथ बात हम कर सकते हैं, और वो इसलिए कि इसका सीधा सीधा असर स्वास्थ्य पे पड़ता है और दूसरा असर वुमेन एम्पावरमेंट पे पड़ता है। तो अगर हम जल जीवन मिशन की बात करें, हमारे देश का एक चित्र रहा है जहां हम एक महिला को दूर जाते हुए देखते हैं मटका लेके पानी लेकर आने के लिए, और शायद ये जो काम था, ये जो कार्य था, वो उसे पढ़ाई से, रोजगार से दूर रखता था, और दूसरा इसका असर जो पड़ता था वो महिलाओं के स्वास्थ्य पे पड़ता था। तो जल जीवन मिशन आने से क्या ये चित्र बदलने लगा है थोड़ा सा?
2: कल्पना कीजिए, सुबह सुबह के 6 बजे हैं और गांव की महिलाएं 2 बाल्टी हाथ में लिए हुए, या पानी का कोई बर्तन जो जिसके बगल के जलाशय में गए, कुएं पे गए, या कोई और पानी का जो दूसरा स्रोत है उसके पास गए और लेके आए, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाना और 2 किलोमीटर वहां से लौट के आना। ऐसा नहीं है कि कोई ये चीज हमने किताबें पढ़ी, बाद में हमने पत्रकारिता की तो हमने देश के अलग अलग इलाकों में भी देखा, राज्य का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे सीन बहुत सारे इलाकों में थे। वो जाती थी तो क्या करती थी, वो जाती थी तो बेटी उसके साथ जाती थी, पति नहीं जाता था। पानी लाने में पुरुष का रोल नहीं होता था, पानी लाने में महिला का ही रोल होता था। वो लेके जाती थी, बेटी जाती थी उसके साथ, और वो पूरे 3 घंटे की यात्रा होती थी निहार का, जाना आना और तैयारी। ये वक्त ज्यादा लगता था, एनर्जी जाता था। इकोनॉमिक्स में बोलते हैं ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट,
1: बिल्कुल।
2: तो आप देखिए कि क्या हालत क्या थी। वो सीन नहीं है जैसे बुंदेलखंड के इलाके में, मध्य प्रदेश के बाकी और इलाके में। यूपी गवर्नमेंट ने इस पे बहुत काम किया जल जीवन मिशन पे। ये जल जीवन मिशन, इसमें जो सफरिंग कम्युनिटी थी वो महिलाएं थी, पुरुष नहीं था।
1: बिल्कुल।
2: टू अ ग्रेट एक्सटेंट, मैं ये कहूंगा टू अ ग्रेट एक्सटेंट, महिलाओं के लिए टाइम खराब होता था, एनर्जी जाती थी, घर में बच्चों को पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता था, ये सब समय की बचत हुई। तो आप देखेंगे जल जीवन मिशन से न केवल क्वालिटी ऑफ वाटर अवेलेबल है, बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज बिकम मच बेटर।
1: और शायद इसका जो प्रभाव है आगे आने वाली कई पीढ़ियों तक नजर आएगा, इसका पीढ़ीगत प्रभाव शायद ज्यादा होगा। शायद हमें इमीडिएट इफेक्ट देखने को इतना ना मिले, लेकिन आगे जाकर, जैसे आपने शुरू में कहा था कि हर पॉलिसी का मूल्यांकन करने के लिए कुछ वक्त हमें देना पड़ता है,
0: इतना प्रभाव तो जिस दिन पानी आ गया
2: उस
0: घर की तो दशा उसी दिन
1: जी,
0: बदल
1: जी,
0: गई।
1: उसी दिन बदल गई।
0: अब देखिए मैं इसके एक आंकड़े से जोड़ता हूँ,
2: जी जी
0: पवन जी आपने जो बातें कही है, एक स्टेज पे इसका जो स्पीड एंड स्केल है ना इसका, आंकड़ा मैं थोड़ा सा उभारना चाहूंगा।
1: जी बिल्कुल।
0: उसका मतलब कि स्पीड एंड स्केल सिर्फ प्रोजेक्ट का नहीं है, काम का नहीं है, जो चेंज हो रहा है। अब स्पीड की बात करो, एक स्टेज पे पवन जी जब पीक पे चल रहा था, उस टाइम पे एवरी सेकेंड एक नया टैप वाटर नए हाउस होल्ड में पहुंच रहा था। एवरी सेकेंड। इसका थोड़ा सा अगर मैथ करते हैं, मल्टीप्लाई करिए, तो 86,000 टैप कनेक्शन एक दिन में लग रहे थे, 86,000 घरों में पानी लग रहा था। मैथ चाहिए
1: जी,
0: रिफ्लेक्ट कर। आप अब सोचिए लाइफ कितनी बदल रही थी। 86 घरों के साथ में एस्टिमेट है कि 3.5 लाख लोग उसमें रह रहे होंगे, 3 से 4 से मल्टीप्लाई करिए। आप सोचो आज ये 3.5 लाख लोग पानी ला रहे हैं
2: जी,
0: जिंदगी और है, कल बदल गया, ये स्पीड है। तो इसके लिए वेट करने की और जरूरत नहीं है,
1: नहीं।
0: ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसका स्केल देखिए, स्केल ये है कि जब शुरुआत हुई थी तो 19 करोड़ या 19.4 करोड़ रूरल हाउस होल्ड में से सिर्फ 3.23 करोड़ 17% घरों में टैप का पानी आ रहा था। आज हम ये बात ऑलमोस्ट 13 करोड़ तक पहुंच गए हैं, और वो 17% था, और आज हमें 79% 80%। 17 से 80 की जर्नी, और रोज बदलाव हुआ होगा उस घर में एक दिन के अंदर छोटे ड्यूरेशन में, ये सोचने वाली बात। जब ये मिशन पूरा हो जाएगा तो हमने लगभग 16 करोड़ घरों में पानी की सुविधा कर दी होगी। इसको अगर मैं देखूं कि इसका मतलब क्या है, 70 करोड़ लोगों की जिंदगी बदली, मल्टीप्लाई करिए आप। और पता कितनी पॉपुलेशन है, आप अमेरिका की पॉपुलेशन लो, उसके साथ में जोड़ो आप ब्राजील की 21 करोड़, अमेरिका 33, ब्राजील 21, और फिर जोड़ो इंग्लैंड की पॉपुलेशन 6 करोड़। आप ये सोचिए कि 5, 6, 7 साल के अंतर अमेरिका, इंग्लैंड, ब्राजील उतने बड़े हाउस होल्ड में, उतनी बड़ी पॉपुलेशन को आपने पानी की, ये सर खास बात है जी। इस सरकार में जो आप शुरू में बात करी ना कि अधूरे छूट जाते थे वो, तो इस स्केल पे ये काम हुआ। और हेल्थ से जोड़ू अगर तो बिल्कुल क्लियर है कि साफ पानी आएगा, वाटर, सेफ वाटर एंड सैनिटेशन फंडामेंटल एसेट्स है पब्लिक हेल्थ के। पब्लिक हेल्थ शुरू ही वहां से होता है
1: जी,
0: सफाई हाइजीन पानी से ही शुरू होता है, पर्सनल हाइजीन से इसी से शुरू होता है। तो उसमें 4 लाख बच्चों की डेथ, अगेन बच्चों पे प्रभाव ज्यादा पड़ता है, 4 लाख डेथ जो है वो 5 साल के दायरे में कम होंगी और हुई है। तो अगर हम इसको इस तरह से देखें तो ये जो बुनियादी बदलाव है, उस घर की दशा बदल गई और उस घर के बच्चों की दिशा बदल गई
1: जी,
0: और उस घर के में एक माहौल की दिशा बदल गई, ये दो मिशन को हम इस स्वरूप में भी सर देख सकते हैं।
1: मेरा ख्याल है हमारी परिचर्चा में अब स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बात करने का वक्त आ गया है। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में शुरू किया गया था, इसको शुरू करने के पीछे का कारण और उससे आने वाले बदलावों के बारे में अब मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी।
0: स्वच्छ हो भारत, गाँव स्वच्छ हो, हमारा आसपास स्वच्छ हो, तो ये तो हमारे पूज्य गांधी जी का एक सपना रहा है, और उन्होंने देश को दशकों तक उस तरफ ले जाने का एक एग्जाम्पल पैदा किया। जैसे सर ने फिर कहा, सबने कोशिशें करी, कुछ कुछ कर पाए, कुछ कुछ अच्छा किया, कुछ कुछ नहीं कर पाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी के आने के बाद इसमें एक टारगेट बांधा गया, टारगेट के साथ साथ एक स्ट्रेटजी बनाई गई, फंड्स उपलब्ध किए गए, पॉलिटिकल कमिटमेंट जोड़ी गई, एक कंसेंसस बनाई गई, और सबसे बड़ी बात इसको एक जन आंदोलन बनाया गया। तो जन आंदोलन जब बना तो असली चेंज जो है तभी होती है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म में, ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जबकि जन आंदोलन होता है
1: जी।
0: ठीक है, आइडिया बन जाता है, वो रिफॉर्म हो गया, फिर परफॉर्म करना शुरू किया कि चलो पाइपें बिछाओ, चलो ये टॉयलेट बनाओ, पानी लाइए, लेकिन जब जनता जुड़ती है उस, तो वो हर घर नल जल में भी जरूरी है, पानी की समितियां हैं, वो क्वालिटी एश्योरेंस देखती हैं, उन्होंने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो इतने स्केल पे इस तरह से जो काम हुआ है तो वो काम अकम्प्लिश हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ बजट दिया गया, पॉलिटिकल कमिटमेंट स्टेट ने भी दिखाई, राज्यों ने भी दिखाई, और उसको करने के लिए जो शैली बनी उसको एक हम बिल्कुल वो सिग्नेचर शैली की तरह मैं तो कहूंगा फॉर सोशली रेलेवेंट ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैव हैपेंड इन आवर कंट्री रिसेंटली।
1: और यदि मैं आपसे अगर पीएम उज्ज्वला योजना का जिक्र करूं तो इस योजना की ग्रास रूट लेवल पर बदलाव लाने में क्या भूमिका रही है, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और आवश्यक स्कीम रही है भारत सरकार की सौभाग्य योजना, सौभाग्य योजना की क्या भूमिका रही है ग्रास रूट लेवल के जो घर हैं उन तक बिजली पहुंचाने में।
2: जैसे डॉक्टर साहब ने स्वच्छता पे बात की, अभी आप कहाँ बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए ऑल इंडिया रेडियो में राइट
1: जी,
2: पर आरबीआई सामने बिल्डिंग है रिजर्व बैंक की, इस पूरे इलाके में अभी से 7-8 साल पहले, हो सकता है कि थोड़ा और पहले, लेकिन रफली 7 साल पहले आप एक भी टॉयलेट इस आसपास में नहीं था, एक भी नहीं था। जब मैं कह रहा हूं, अगर कहीं मेरी याददाश्त धोखा दे रही तो अलग बात है, पर कहीं एक भी टॉयलेट नहीं था। अभी इस विसिनिटी में आपको ढेर सारे टॉयलेट अप एंड रनिंग, बढ़िया अच्छी क्वालिटी के अच्छे स्टेटस में वो मिल जाएगा आपको कोने पे, म्युनिसिपल फ्लेवर के सामने आरबीआई के कोने पे, और थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको उद्योग भवन के कोने पे, फिर आगे जाएंगे तो आपको

0: बिल्कुल,
1: वो उसमें हमारी जिम्मेदारी बनती है। दूसरा जो आप पॉलिसी जिसकी बात आप कर रहे हैं, जैसे फर्ज करिए कि आपने शुरुआत की घर से, घर में स्केलेटन नहीं है, घर बनाया आपने, उसके बाद उसमें इंसान रह रहा है, उसमें घर में 24 घंटे में ज्यादातर टाइम जो है वहां पे महिलाएं देती हैं। इस बात को हम लोग बिल्कुल भूल जाते हैं जब घर की बात कर रहे होते हैं तो, कि उसमें पुरुष नहीं है, उसमें महिलाएं दिन भर काम कर रही हैं। उसके लिए सबसे पहले तो उसके लिए इतना बड़ा वो इंश्योरेंस है। आप किसी पुरुष से पूछिए कि घर पे कितनी खुशी है आपको, और महिला से पूछिए घर की कितनी खुशी है, आप बिल्कुल आसमान जमीन का फर्क पाएंगे दोनों, दोनों के रिस्पांस में, क्योंकि घर में दिन भर वो रहती है। उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है, उसके लिए दिल की बात है, इज्जत की बात है, गरिमा की बात है, डिग्निटी की बात है, रिकॉग्निशन की बात है। अब घर है तो घर में साहब बिजली है, आधा काम आपका खत्म, घर पे बिजली है, दूसरे और काम कर सकते हैं आप, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, बिजली के और 10 उपयोग है, मिक्सी कैसे चलाएगा, मिक्सी से चलाएगा, पहले आप लगे रहते थे सिलबट्टे पे
0: जी।
1: आधा घंटा आपका हेल्थ खराब भी हो तो भी आप मसाला भी पीस सकते हैं, पहले वो काम नहीं कर सकते थे सिलबट्टा उठाने में ही बहुत मेहनत लगती थी। तो बिजली आ गई, पानी आ गया आपके पास, अब जिस स्कीम की बात आपने की है, जिस बिजली की बात हम लोगों ने की, आपके पास पूरा रसोई का जो पूरा नक्शा है, पूरा मैप है, पूरा रसोई का जो लैंडस्केप है वो पूरा बदला हुआ है अब। और जब पूरा रसोई का लैंडस्केप बदला हुआ है तो ये पूरी, आपको अगर इकोनॉमिक समझना हो तो किसी के रसोई में घुस जाइए, आपको समझ में आ जाएगा, और कोई तरीका दूसरा नहीं हो सकता। रसोई में घुस जाइए और इन सब पे प्रकाश डालिए, आप पानी है, रसोई है, बिजली है, घर में बिजली है, तो आखिर में जो सबसे बात, वो डॉक्टर साहब इस पे प्रकाश डालेंगे, इनसे सवाल पूछिएगा जरूर तैयारी करके, कि बीमारी से सुरक्षा, महिलाएं जलावन लाने की जिम्मेदारी महिलाओं की होती थी, जलावन अगर मान लीजिए सिला हुआ है, धुआं निकलेगा अभी आधा घंटा, तब जाके जलावन थोड़ा कड़क होगा, तब जाके वो जलेगा, तब तक वो स्ट्रगल कर रही होगी, बेटी को पीट रही होगी, बेटी पे चिल्ला रही होगी, झुंझला रही होगी, उसके बाद उसकी आंखें खराब होगी, अगर उसका लंग खराब है मैं तो उसका विशेषज्ञ हूं, मैं केवल आपको इंडिकेटिव बता सकता हूं, फिर वो खांसते खांसते तैयार करेगी खाना, टाइम उसका जाएगा, उसका मेंटल पीस लूज होगा, वगैरह वगैरह। उस सूरत में रसोई में अब उसके लिए कोई दिक्कत नहीं बची है, तो ये सामाजिक सुरक्षा से बढ़ के आप उसके देखियो बीमारी से उसकी सुरक्षा है। स्वच्छता अभियान में थोड़ी और सख्ती की जरूरत है, उसमें ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हम जैसे लोगों को करने की जरूरत है, जो
0: जनता
1: की कैटेगरी में जी। तो ये फर्क दिख रहा है साथ में जमीन पे मेरे ख्याल से।
0: डॉक्टर पॉल, हमारी इस परिचर्चा में स्वास्थ्य का बार बार जिक्र होता है, स्वास्थ्य का बार बार मेंशन होता है, और स्वास्थ्य से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस स्कीम ने ग्रास रूट लेवल पर क्या चेंज इंट्रोड्यूस किया है और आरोग्य मंदिर का इसमें क्या रोल रहा है?
2: आयुष्मान भारत में दो मेजर प्रोग्राम लॉन्च हुए थे 2018 में और फिर दो उसके बाद आए। पहली जो आपने बात कही वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दूसरा आपने मेंशन फिर किया आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो कि कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर है, उसको थोड़ा बाद मिलाते हैं। हम पीएमजे की बात, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में हम ये अटेम्प्ट कर रहे हैं कि जब अस्पताल में जाने की जरूरत पड़े, अस्पताल में दाखिल होने की जरूरत पड़े, या सेकेंड उसको हम कहें और तरह से तो सेकेंडरी टर्शरी केयर में हमें एक्सेस करनी है केयर, दाखिल होकर इलाज होना है, इन पेशेंट इलाज होना है, आउट पेशेंट वाला प्राइमरी केयर में जाता है, तो वहाँ जो सुविधाएं हेल्थ केयर की मिले, पहली बात एक्सेस हो, दूसरा है कि एक्सेस के साथ साथ मेरी जेब पे, मेरे अपने रिसोर्स पे, मेरी बचत पे बोझ ना पड़े
0: जी,
2: ये उसका मेन पर्पस है। आप सोचिए कि ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2004 के एस्टिमेट या 2014 के एस्टिमेट हम लेते हैं, आपको हैरानी होगी कि तरह तरह के एस्टिमेट कहते थे कि हमारे देश में 4 करोड़ से 7 करोड़ लोग 9 करोड़ लोग, डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं, बीमारी की वजह से जो गरीबी की रेखा उसके नीचे गिरते थे
0: जी,
2: इतने लोग, और वो किस तरह से, इंडिविजुअल पे जाइए कि वो वुमन अकेली है, उसके बच्चा बीमार है, राइट, कैंसर हो गया मान लीजिए, भयानक बीमारी, घर में कोई नहीं है तो क्या होगा, या तो हम जाएंगे ही नहीं, बताइए कितनी दर्दनाक बात है वो
0: जी।
2: और गए तो घर बेच के जाएंगे, जमीन बेच के जाएंगे, गहना, तो ये सच्चाई है, सच्चाई रही है ये, कि हमें हेल्थ केयर का खर्चा इतना बोझ पड़ता रहा है, जितनी भी कोशिशें हुई उसके बावजूद भी इतना बोझ पड़ता था कि हमारे जेब से खर्च करके हम बर्बाद होके इन पेशेंट केयर हम लेते थे। तो

0: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने क्या किया कि 60 करोड़ लोगों के लिए 15 करोड़ के ऊपर हाउस होल्ड्स को लेके ये सुनिश्चित कर दिया गया कि उनके लिए हर परिवार को हर साल 5 लाख का जो खर्चा है उसके बराबर जो हेल्थ केयर मिलनी है, उसके एवज में जो मिलनी है वो 5 लाख का कवरेज हर फैमिली को, उन फैमिलीज को सुनिश्चित कर दिया गया है। तो एक परिवार को स्वास्थ्य के लिए, इन पेशेंट केयर के लिए 5 लाख का जो खर्चा है वो एंटाइटलमेंट की तरह उन बेनिफिशरीज को मिलेगा। अब ये बदलाव है और बहुत बड़ा बदलाव है। इसमें मैं सिक्योर होता हूँ। और ये जब बीमारियां कवर हो रही है ना, उसमें कोई भी छूटी नहीं है। 1900 से ज्यादा प्रोसीजर्स, चाहे वो इंटेंसिव केयर है, चाहे क्रिटिकल केयर है, चाहे कैंसर केयर है, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट है, या चोट लग गई है उसका इलाज है, या नी रिप्लेसमेंट होना है वो है, या स्टेंट डालनी, ये सारे उसमें शामिल है। और किस व्यक्तियों के लिए, जो हमारे बॉटम के 40% लोग हैं, ये वो 15, इनको हम उस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं इन परिवारों को। तो इतना ये बदलाव है, उसकी वजह से लोगों के, एक तो उन्होंने जाना शुरू कर दिया, और अभी जो NSSO का साइकिल आया उसमें दिखाया गया है कि अब लोग छुपाते नहीं है, वो जाने शुरू हो गए। ये बिल्कुल कैशलेस है, आपको वहां पे एक पैसा ही नहीं देना है। और आप अगर इसको आंकड़ों में फिर एक बार कोशिश करो डालने की, तो हर रोज लगभग 90,000 से 1,00,000 लोग, व्यक्ति हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है इस कार्यक्रम के अंदर। आजकल अभी तक 12 करोड़ व्यक्तियों को इसका फायदा हुआ है। और उसमें मैं कहना चाहूंगा मेल फीमेल का प्रपोर्शन पवन जी एग्जैक्ट
1: जी,
0: जितने व्यक्ति मेल गए दाखिल हुए, या जितने कार्ड मेल्स के बने उतने ही फीमेल्स के बने हैं, उनकी एक्सेस बढ़ी है। और अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि जो लगभग 2,00,000 करोड़ का जो खर्चा इस स्कीम ने उठाया, वो बोझ अदरवाइज जनता के ऊपर था, इन 40% लोगों पे था, और अब जो है 70 और 70 से ऊपर के लिए एडिशनल, आप किसी भी तबके से हो उनके लिए भी 5 लाख का कवरेज उपलब्ध कर दिया गया है, चाहे अमीर गरीब कोई भी है, और उसके बियॉन्ड है ये, मतलब जो शुरुआत हुई थी उसके बियॉन्ड है, और उस 60 करोड़ नंबर के अंतर्गत है। लेकिन ये वो जो लोअर सोशो इकोनॉमिक वाले हैं, प्राइड है, उनके लिए नहीं है, ये सबके लिए है। तो एक ये ऐसा कार्यक्रम है, और ऐसी ये एक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ एक इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप है, जो कि आम जिंदगी को बहुत बेहतर करता है, और लाइफ बचती है और खर्चा बचता है।
2: और शायद पब्लिक हेल्थ पर जो तनाव रहा है इतने सालों से, शायद वो भी काफी कम हो जाएगा इन कदमों की वजह से, इन स्कीम्स की वजह से।
0: इन स्कीमों से, ये दोनों स्कीम अगर हम जोड़ें
2: जी,
0: कि यहाँ तो सेकेंडरी टर्शरी अंदर, फिर प्राइमरी केयर वाली आयुष्मान आरोग्य मंदिर की हम स्कीम को जोड़ें, जिसमें कि एक नया, एक जो हमारा सब सेंटर लेवल है 6,000 की पॉपुलेशन के लिए, उनकी जो दवाइयाँ जो बढ़ गई हैं वहाँ पे, डायग्नोस्टिक टेस्ट बढ़ गए हैं, और इसी तरह से जो एक्स्ट्रा वहाँ पे व्यक्ति हमारे लिए उपलब्ध हो गया है, उन सब के वजह से हेल्थ केयर जो है वो लोगों के पास, क्या ये काम पूरा हो गया है? नहीं। क्या ये काम पूरा परफेक्ट करना है? हाँ। लेकिन इन सालों में व्यवस्था बन गई है, और इसको सक्सेस करना, जैसे पवन जी ने कहा, सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, जनता को भी जुड़ना है। वो इन सुविधाओं का फैसला लें, वहाँ जाके बोलें कि मेरा ब्लड प्रेशर चेक करिए, मेरा ब्रेस्ट कैंसर चेक करिए, मेरे 3 साल हो गए हैं, या पिछली बार आपने देखा, वहां पे जाके लाइन में लगिए, आप भीड़ करो, उसका इस्तेमाल करिए, वहां टेलीमेडिसिन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दृष्टि से अगर हम देखें, तो एक्सेस बढ़ना एक फर्ज है उसमें, और एक्सेस हेल्थ का बढ़ने के साथ साथ जेब के ऊपर, मेरे पर्सनल खर्चे के ऊपर, मेरा फाइनेंशियली मुझे सिक्योर रहना है, ये दोनों को जोड़ते हुए एक बड़ा ही नोबल मिशन हुआ है, बहुत हद तक सक्सेसफुल है, बहुत हद तक आप भी आगे जाना है।
2: बिल्कुल। और एक और बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। पवन जी, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये नवंबर 2023 में स्कीम आई थी। जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं, या जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए इस स्कीम की, इस कदम की, इस योजना की क्या भूमिका है?
1: देखिए फिर इसमें केवल ग्रुप बदला है निहारिका, आप मतलब बाकी चीजें तो सबके लिए है, ये केवल आदिवासी इलाकों में है जिसमें सरकार ने आइडेंटिफाई किया था, मेरे ख्याल से 72 या 75 कुछ जनजातीय ग्रुप थे जिनके लिए लॉन्च किया था वो, इसलिए क्योंकि वो और उनकी स्थिति और थोड़ी ज्यादा विकट है। तो ये बहुत नया इस्टेब्लिश किया है, इस पॉलिसी को थोड़ा सा और आपको टाइम देना पड़ेगा असेस करने के लिए, लेकिन सरकार का इंटेंशन वही है, सरकार की ऑनेस्टी वही है, सरकार का ऑब्जेक्टिव वही है, केवल ग्रुप लोगों का डिफरेंट है। कुल मिला के इस पे बात करिए कि देखिए जनसेवा की कसौटी जो सरकार काम कर रही है, जो पब्लिक सर्विस सरकार कर रही है, उसका क्या पैमाना है? उसका पैमाना है कि आम आदमी की जिंदगी में ये कितना बदलाव आया। इसमें ये भी आम आदमी है
2: जी।
1: जो अभी तक जो बात डॉक्टर साहब कह रहे थे, जो बात हम कहते हैं, वो सब आम ही आदमी के लिए है, राइट। इसमें ग्रुप केवल चेंज हुआ पड़ा है, पर ये सब आम आदमी, वो पूरा भीड़ जो है वो आम आदमी का है। तो आम आदमी की जिंदगी में कितना बदलाव आया है, आपकी बातचीत का आज का जो है केंद्रीय तत्व ये है, और आम आदमी कि जिंदगी में कितना बदलाव आया है और महिलाओं की जिंदगी में कितना बदलाव आया है। मैं आपसे थोड़ी देर पहले ही बात कह रहा था कि जो सोसाइटी अपने 50% पॉपुलेशन को एक्सक्लूड कर दे, उसकी चिंता नहीं करे, उसको छोड़ दे अपने हाल पे, वो सोसाइटी कभी तरक्की नहीं कर सकती। इस सरकार ने आके वापस ये केंद्र में इस डिमांड को, इस अटेंशन को वापस लाया है कि इस देश में महिलाओं की स्थिति जब तक आप बेहतर नहीं करेंगे तब तक आप किसी अच्छे सोसाइटी की कल्पना नहीं कर सकते।
2: बिल्कुल।
1: कवरेज क्या है? नंबर एक देखिए, आपको पता चलेगा उसको कवरेज का, उसका यूसेज क्या है, कितना लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मैं मेजरमेंट और अल्टीमेटली टेस्ट करने की बात कर रहा हूं कि सरकार जब टेस्ट करेगी अब से 5 साल बाद तो क्या होगा, कवरेज कितना है, यूसेज कितना है, इसका आउटकम क्या रहा है, और अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। कल को जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो कल को ये नहीं कहेंगे साहब कि मैं ओपन डिफेकेशन में जाऊंगा, वो पूछेंगे कि हमारे घर में टॉयलेट क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ अवेयरनेस। उसको पता है कि साहब ये दिस इज द न्यू नॉर्मल, घर में टॉयलेट चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं इसको नापने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा
2: जी।
1: इसीलिए बदलाव है, सरकार की सीरियस एफर्ट्स हैं, अलग अलग राज्य में उसके अलग अलग इंपैक्ट हो सकते हैं। मेरे ख्याल से आम आदमी की जिंदगी में ढेर सारे बदलाव हैं, पॉजिटिव हैं, मेरे ख्याल से इसमें और बेहतर हो सकता है, इससे कोई इनकार करेगा क्या? कोई नहीं,
2: कोई नहीं। बहुत खूब, मेरा ख्याल है इसी विचार के साथ हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा, और धन्यवाद आपका, आप दोनों हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़े और हमारे स्टूडियो आए, थैंक यू सो मच।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 22वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा हर घर बेहतर जीवन। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व सदस्य वीके पॉल और वरिष्ठ पत्रकार पवन कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी निहारिका भवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

0: और श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक विशेष प्रस्तुति जो समर्पित है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर। यह आकाशवाणी ईटानगर का रुन एफएम है, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और श्रोता दोस्तों, अब हम आपके लिए पेश कर रहे हैं चंद हिंदी फिल्मी नगमे।
1: इंडिजेनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश आयोजित कर रहा है रन फॉर आइडेंटिटी। इस थीम के साथ एक मैराथन 11 अक्टूबर 2026 को। ये मैराथन न्योकुम निया ग्राउंड निर्जुली से आरंभ होकर न्योकुम लापांग ईटानगर तक होंगे, जिसमें पुरुष और महिला दोनों वर्ग के विजेताओं को मिलेगा आकर्षक पुरस्कार। तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए और रजिस्ट्रेशन के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8837 43411 पर।

0: अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम यानी कि ACWF अपना फर्स्ट एवर स्टेट लेवल सेमिनार आयोजित करने जा रहा है, जो होगा क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ESS सेक्टर ईटानगर नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक। इस सेमिनार के रिसोर्स पर्सन होंगे श्री जेम्स तेची तारा, प्रेसिडेंट अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम कम प्रेसिडेंट NBCC, एवेंजेलिस्ट गुमदे रिबा सोंगथिंग और एडवोकेट नाबम रामा गुवाहाटी हाई कोर्ट ईटानगर बेंच। अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम अरुणाचल प्रदेश के सभी विमेन हेड्स ऑफ डिनोमिनेशंस, हेड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिनोमिनेशंस और विमेन लीडर्स को इस सेमिनार में सादर आमंत्रित करते हैं। याद रखें, जगह है क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ESS सेक्टर ईटानगर नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक। धन्यवाद।
1: इंडिजेनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश आयोजित कर रहा है रन फॉर आइडेंटिटी। इस थीम के साथ एक मैराथन 11 अक्टूबर 2026 को। ये मैराथन न्योकुम निया ग्राउंड निर्जुली से आरंभ होकर न्योकुम लापांग ईटानगर तक होंगे, जिसमें पुरुष और महिला दोनों वर्ग के विजेताओं को मिलेगा आकर्षक पुरस्कार। तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए और रजिस्ट्रेशन के लिए इस

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर। मेरे उनके बारे में ऐसे कुछ न कहना।

0: तो दोस्तों, इन्हीं चंद नगमों के साथ ही हिंदी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे क्षेत्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम अपना गीत।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़। अपना गीत कार्यक्रम के इस अंक में आप सभी श्रोताओं का मैं आपके रेडियो साथी गैर अतः तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी होगी हल्की फुल्की बातें और अपना गीत। तो शुरुआत करते हैं नुक्ते गीत से। हतवंग होचा की आवाज में इस गीत को लिखा है रिथम काखो ने।

तो आज कुछ सामाजिक बातें हो जाएं। जो गीत लिखते हैं सामाजिक व्यवस्था या बदलाव को लेकर, जो कविता लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं जिसमें समाज कल्याण की बातें भरी पड़ी होती है, क्या वाकई में वे गीतकार, वे कवि, वे लेखक और इवन आजकल मोटिवेशनल वीडियोस जैसे कई चीजें हैं, क्या उन लोग दिल से उन चीजों का पालन कर पाते हैं या वे लिखने के लिए लिखते हैं? है ना कुछ सवाल। ये बातें मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कईयों को कहते सुना है कि उन गीतकारों को, गायकों को, लेखकों को कोसते हुए, उनके प्रति नकारात्मक बातें करते हुए कि खुद तो ऐसा है नहीं, चला ज्ञान बांटने। यार दिल में लग जाती है ये सब बातें। हम तो यही मानते हैं कि वे हो ना हो, उनके गाने सुन के, उनकी किताबें पढ़कर, वीडियोस देखकर अगर दो लोगों में बदलाव आ सकता है तो उतना काफी है। कोई तो बदल रहा है ना अच्छी दिशा में। सकारात्मक चीजों पर क्यों ना हम फोकस करें, वे हमें समाज का आईना दिखाते हैं। हमें देखना है, खुद को साफ करना है, आईने को नहीं। कुछ ज्यादा गंभीर बातें हो गई शायद। चलिए ट्रैक बदलते हैं और रुख करते हैं अगला गीत की ओर। ये गीत है तालुत मिजे जी की आवाज में, आदि गीत।

सुन रहे थे मासूम से तायंग की आवाज में मिजू मिसमी गीत। अपना गीत कार्यक्रम में आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अगला गीत अपातनी भाषा में हागे तादकी आवाज में।

दोस्तों, आजकल कई बीमारियों की तरह निराशावादी भी एक खतरनाक बीमारी बन गई है। नहीं, सब कुछ दिल से शुरू होता है। निराशावाद है तो हर चीजों में निराशा ही पाना है, क्योंकि हम जो देखना चाहते हैं अक्सर हम वही देखते हैं। हमारी मानसिक स्थिति समझकर अगर कोई हमें कुछ दिखा दे तो हम वही देखते हैं जो वो आदमी दिखाना चाहते हैं। दूसरे अच्छे नहीं हैं, वे अच्छा नहीं करते हैं, ये सोचने में खुद अच्छा रहना ही भूल जाते हैं। दोस्तों, कहना यही है कि अपनी खुशियों की चाबी क्यों औरों की जेब में रखे। सच कहती हूँ, अगर आप अच्छा सोचना शुरू करेंगे, सकारात्मक सोचना शुरू करेंगे, तो मन अपने आप खुश हो जाता है। किसी ने खूब कहा है कि वही चेहरा मुस्कुराता है जिसके दिल में मोहब्बत बसती है।

आपने सुना रेरिक कार्लो दिग्बा की आवाज में गालो गीत। श्रोता बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर तथा अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ज पर, और जिस पर चल रहा है कार्यक्रम अपना गीत। तो आइए कार्यक्रम अपना गीत के अंत में सुनते हैं यासुक पिगी की आवाज में तागिन गीत।

0: श्रोताओं, ये था अपना गीत कार्यक्रम का अंतिम गीत आज के अंक का। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय फिर आपसे मुखातिब होंगे एक और नए अंक के साथ। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी गैर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: एशियन विमेन फोरम यानी कि ACWF अपना फर्स्ट एवर स्टेट लेवल सेमिनार आयोजित करने जा रहा है, जो होगा क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ESS सेक्टर ईटानगर नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक। इस सेमिनार के रिसोर्स पर्सन होंगे श्री जेम्स तेची तारा, प्रेसिडेंट अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम कम प्रेसिडेंट NBCC, एवेंजेलिस्ट गुमदे रिबा सोंगथिंग और एडवोकेट नाबम रामा गुवाहाटी हाई कोर्ट ईटानगर बेंच। अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम अरुणाचल प्रदेश के सभी विमेन हेड्स ऑफ डिनोमिनेशंस, हेड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिनोमिनेशंस और विमेन लीडर्स को इस सेमिनार में सादर आमंत्रित करते हैं। याद रखें, जगह है क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ESS सेक्टर ईटानगर नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी।

पाश्चात्य संगीत के कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज के बाद चलिए अब बढ़ चलते हैं सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम भूले बिसरे गीत की ओर।

0: फिल्म किस्मत से अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में ये खूबसूरत नगमा आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं। इसी गीत के साथ ही हमने शुरुआत कर ली है सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम भूले बिसरे गीत की, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।
1: Indigenous Faith and Cultural Society of Arunachal Pradesh आयोजित कर रहा है Run for Identity इस थीम के साथ एक मैराथन 11 अक्टूबर 2026 को। ये मैराथन न्योकुम निया ग्राउंड निर्जुली से आरंभ होकर न्योकुम लापांग ईटानगर तक होंगे, जिसमें पुरुष और महिला दोनों वर्ग के विजेताओं को मिलेगा आकर्षक पुरस्कार। तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए और रजिस्ट्रेशन के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8837 43411 पर।

अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम यानी कि ACWF अपना फर्स्ट एवर स्टेट लेवल सेमिनार आयोजित करने जा रहा है, जो होगा क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ESS सेक्टर ईटानगर नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक। इस सेमिनार के रिसोर्स पर्सन होंगे श्री जेम्स टेची तारा, प्रेसिडेंट अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम कम प्रेसिडेंट NBCC, एवेंजेलिस्ट गुमदे रिबा सोंगथिंग और एडवोकेट नाबम रामा, गुवाहाटी हाई कोर्ट ईटानगर बेंच। अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम अरुणाचल प्रदेश के सभी विमेन हेड्स ऑफ डिनोमिनेशंस, हेड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिनोमिनेशंस और विमेन लीडर्स को इस सेमिनार में सादर आमंत्रित करते हैं। याद रखें, जगह है क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ESS सेक्टर ईटानगर नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक। धन्यवाद।

अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम यानी कि ACWF अपना फर्स्ट एवर स्टेट लेवल सेमिनार आयोजित करने जा रहा है, जो होगा क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ESS सेक्टर ईटानगर नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक। इस सेमिनार के रिसोर्स पर्सन होंगे श्री जेम्स तेची तारा, प्रेसिडेंट अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम कम प्रेसिडेंट NBCC, एवांजेलिस्ट गुंडे रिबा सोंगथिंग और एडवोकेट नाबम रामा गुवाहाटी हाई कोर्ट ईटानगर बेंच। अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम अरुणाचल प्रदेश के सभी विमेन हेड्स ऑफ डिनोमिनेशंस, हेड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिनोमिनेशन

0: नेशंस और विमेन लीडर्स को इस सेमिनार में सादर आमंत्रित करते हैं। याद रखें, जगह है क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च, ESS सेक्टर, ईटानगर, नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक। धन्यवाद।
1: इंडिजेनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश आयोजित कर रहा है रन फॉर आइडेंटिटी। इस थीम के साथ एक मैराथन 11 अक्टूबर 2026 को। ये मैराथन न्योकुम निया ग्राउंड निर्जुली से आरंभ होकर न्योकुम लापांग ईटानगर तक होंगे, जिसमें पुरुष और महिला दोनों वर्ग के विजेताओं को मिलेगा आकर्षक पुरस्कार। तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए और रजिस्ट्रेशन के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8837434121 पर।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, Next Gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual VVT engine and spacious interiors.
5: Get attractive offers up to ₹67,500.
6: Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.

श्रोत दोस्तों, आशा भोसले एवं शमशाद बेगम द्वारा गाए हुए इसी गीत के साथ ही सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आज यहीं पर समाप्त होता है। इसी के साथ ही आज हम इस तीसरी प्रसारण सभा के समापन पर आ पहुंचे हैं। इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में हमारा साथ दे रहे थे तमाम FM ट्रांसमीटर के सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गोपाल राय, तकनीकी अभियंता ताना आतुम और मैं आपकी रेडियो दोस्त सलोकना। चलते चलते आपको बताना चाहेंगे कि अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे FM गोल्ड से रिलेट कार्यक्रम और हम आप सभी से कल सुबह 5:48 से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि। जय हिंद।

Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए पोषण माह से जन भागीदारी तक पोषण के संदेश पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर नीना भाटिया, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं।

0: अहम प्रश्न है। पोषण माह से हमारा उद्देश्य ये है कि सभी लोग जो कि पोषण से जुड़े हैं, जिसमें कि लगभग 16 मिनिस्ट्रीज इंक्लूडेड हैं, सभी लोग एक साथ मिलकर इस महीने में पोषण के बारे में जानकारी सभी लोगों तक पहुंचाएं और एक्टिविटीज के माध्यम से सभी को इन्वॉल्व किया जाए। सो इस साल हमारे पोषण माह का जैसे उद्देश्य और थीम है, हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी, और इसके अंतर्गत 5 थीम और सब थीम्स और इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि भोजन में विविधता और प्रोटीन की उत्तम और पर्याप्त मात्रा, जिसे डाइटरी डाइवर्सिटी एंड एडिक्वेट प्रोटीन कहते हैं। इसी तरह फ्रेश कुक्ड हॉट मील्स जो आंगनवाड़ी में दिए जाते हैं, जो खाना ताजा बना हुआ 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी में दिया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिटी ओनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी, जो हम कह रहे हैं हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी, तो एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी है कि सभी लोग कम्युनिटी में ओनरशिप लें और अपनी जिम्मेदारी समझकर अपनी आंगनवाड़ी में जिस भी तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो करें। और फिर न्यूट्रिशन फॉर एंड अर्ली स्टिमुलेशन फॉर चाइल्डहुड डेवलपमेंट, मतलब जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनके लिए पोषण और उनके साथ खेल के थ्रू अर्ली स्टिमुलेशन, जिससे कि उनका ना सिर्फ पोषण पर मानसिक विकास और ओवरऑल विकास पे भी काम किया जा सके। और लास्ट इस बार का थीम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसके तहत जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनको कैश ट्रांसफर किए जाते हैं। तो एक महीना लगकर चाहते हैं कि इन्हीं सभी विषयों पर सभी के पास जानकारी जाए और सभी लोग हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी का थीम समझते हुए पूरी जिम्मेदारी के साथ इसमें भाग लें।
1: डॉक्टर नीना, जैसा कि आपने जिक्र किया अकाउंटेबिलिटी का, जाहिर से बात है सभी की जिम्मेदारी बन जाती है, तो सरकार ने अपनी तरफ से पोषण अभियान शुरू किया जिसका कि उद्देश्य ये था कि अलग अलग विभागों और योजनाओं को साथ लाकर पोषण परिणामों में सुधार किया जाए और पोषण को जन आंदोलन बनाया जाए। तो सरकार ने पोषण अभियान से लेकर मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 तक की कई महत्वपूर्ण पहल की है, तो इन योजनाओं के माध्यम से देश में जो भी पोषण संबंधी सेवाओं को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं, इसमें आम लोगों की जिम्मेदारी किस तरह से सुनिश्चित की जा सकती है?
0: हम लोगों की जिम्मेदारी जो हमारे थीम्स हैं उन्हीं में है, और खासकर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी देखभाल करना है, उनकी पोषण को सुनिश्चित करना है, उसमें उनके पति का, उनकी सास का, एक बहुत परिवार जनों का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। फिर साथ ही साथ जो सभी सेवाएं सरकार के अलग अलग विभागों से और मंत्रालयों से दी जाती है बच्चों के लिए और माताओं के लिए, उनमें उनको रजिस्टर कराना, उनको हॉस्पिटल में उनकी प्रेगनेंसी को रजिस्टर कराना है, उनको जो भी टीकाकरण है वो कराना है, बच्चे की डिलीवरी इंस्टीट्यूशन में कराना है। सो जो ये सारा पोषण से रिलेटेड बिहेवियर्स हैं जिनको एक परिवार को अडॉप्ट करना है और माँ की और बच्चे की मदद करनी है, जिससे कि जो भी जानकारी उन्हें दी जा रही है, जो भी स्कीम्स उनके लिए हैं, उनको परिवार के जन और समुदाय के जन मिलकर पूरी तरह से अपनाने में और इम्प्लीमेंट करने में मदद करें, और जो भी उनकी सेवाएं हैं उनको ठीक तरह से यूज भी करें और उनमें दिए गए संदेशों में अमल और पालन भी करें।
1: डॉक्टर नीना, आपने जिक्र किया गर्भवती महिलाओं का, तो ये आम व्यक्ति आम लोगों को अगर समझाया जाए, उन्हें बताया जाए कि ऐसा क्यों जरूरी है, खासतौर पे जब हम बात करते हैं कि गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार की आवश्यकता क्यों होती है, इसका महत्व क्या है, और इसका जो होने वाले बच्चे होते हैं उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर क्या असर पड़ता है?
0: ये बहुत ही अहम मुद्दा है न्यूट्रिशन के तहत और पोषण के तहत। हम पहले 1000 दिनों की बात करते हैं, वो 9 महीने प्रेगनेंसी के और उसके बाद पहले 2 साल बच्चे की विकास की हैं। इनको एक गोल्डन पीरियड कहा जाता है और ये ऐसा पीरियड है जिसमें बच्चे का हर तरफ से चहुमुखी विकास हो रहा है। हम सब जानते हैं कि हम अपनी लाइफ एक सिंगल सेल से शुरू करते हैं और वो एक बच्चा सिंगल सेल से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पूरी उसकी एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। सभी काम चाहे वो छोटे स्तर पर देख सकता है, सुन सकता है, खा सकता है, रिस्पॉन्ड कर सकता है, उसकी ब्रेन की खास करके बहुत ज्यादा डेवलपमेंट जो है वो इसी 9 महीने में होती है। और डिलीवरी के बाद भी जो ये पहले 2 वर्ष है सबसे ज्यादा गति से विकास होता है पूरी लाइफ में, उसके बाद सिर्फ एडोलेसेंस किशोरावस्था में ही इतनी तेजी से विकास होता है, वो भी इससे शायद थोड़ा कम होगा। जो तो ये जो एक गोल्डन पीरियड है जिसमें बच्चे की सभी चहुमुखी जिसे कहते हैं विकास हो रहा है, उसकी फिजिकल ग्रोथ हो रही है, उसकी कॉग्निटिव मानसिक ग्रोथ हो रही है, उसकी सोशल ग्रोथ हो रही है, तो इस पीरियड में अगर न्यूट्रिशन में कोई भी कमी रह जाती है तो उसका असर पूरी लाइफ लॉन्ग बच्चे के ऊपर रहता है। और कई कुपोषण है,

0: जैसे कि स्टंटिंग, जिसमें जिसे हम नाटापन कहते हैं, जिसमें बच्चे की हाइट नहीं बढ़ पाती है क्योंकि वो ओवर अ लॉन्ग पीरियड, मतलब पूरे 1000 दिन में उसको खाना ठीक से नहीं मिला है, तो वो एक क्रॉनिक मेल न्यूट्रिशन हो गया। तो उसका इफेक्ट जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, एडल्ट बन जाते हैं, तब भी देखा जाता है उनकी पढ़ाई लिखाई पर, उनका स्कूल पूरा कर पाने पर, और इवन जब वो बड़े होकर कमाना चाहते हैं उस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये एक गोल्डन पीरियड है बच्चे के विकास के लिए, और हमारे लिए भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है कि जो हम संपूर्ण न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट अगर इस समय देते हैं तो हमें मैक्सिमम, जैसे कहते हैं, रिटर्न्स वो मिलते हैं।
1: डॉक्टर नीना, हम लगातार पोषण की बात कर रहे हैं और सरकार ने इस दिशा में अनेक प्रयास किए हैं। सरकार ने मोटे अनाज का भी लाभ आम जन तक पहुंचाने की बात कही है, जिसके लिए तमाम प्रयास किए गए, हम उसे श्री अन्न भी कहते हैं। तो देश के हर एक परिवार तक यदि इस बात को पहुंचाने की कोशिश की जाए कि पोषण का एक बड़ा हिस्सा हमें मोटे अनाज से प्राप्त हो सकता है, तो इस बारे में हमारे श्रोताओं को आप क्या जानकारी देना चाहेंगी कि किस तरह से इसका लाभ उठाया जा सकता है?
0: श्री अन्न, जिसे आज हम मोटा अनाज कहते हैं, वो हमेशा से हमारी पारंपरिक खाने पीन का हिस्सा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद खासकर से हमारी जो डाइट है उसमें वीट और राइस, गेहूं और चावल का ज्यादा प्रभाव बढ़ गया है, ज्यादा इंटेक बढ़ गया है। मगर जो मोटा अनाज है वो एक फाइबर में रिच है, विटामिन और मिनरल्स में रिच है। उसको अगर हम डाइटरी गाइडलाइंस ऑफ फॉर इंडियंस, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ICMR के तहत जारी की जाती हैं, उसमें कहा गया है कि जो आप सारा अनाज खा रहे हैं उसका 20% हिस्सा अगर मोटे अनाज से आए तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो हमारे को फाइबर देगा, वो हमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल देगा, वो हमारी ब्लड ग्लूकोज को बहुत तेजी से बढ़ने से रोकेगा। आजकल हम सिर्फ कुपोषण में कम न्यूट्रिशन से ही नहीं प्रभावित हो रहे हैं, हम ओवर न्यूट्रिशन जिसे कहते हैं कि उससे रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे डायबिटीज, शुगर की बीमारी या ब्लड प्रेशर की बीमारी से भी प्रभावित हो रहे हैं, तो उनको भी प्रिवेंट करने में मदद करेगा। और ये सभी मोटे अनाज आसानी से मिल जाते हैं, अगर हम देखेंगे तो हमारी एक पारंपरिक जो डाइट है उसका वो हिस्सा रहे हैं, उनको अगर हम अपने पूरा दिन में कम से कम एक मील में अगर इंक्लूड करेंगे तो उसका हमें काफी लाभ मिल सकता है।
1: डॉक्टर नीना, हम पोषण और जन भागीदारी की बात कर रहे हैं। एक बड़ी समस्या हमने देखी है एनीमिया की, यानी कि खून की कमी भी देश में पोषण और स्वास्थ्य से जुड़ी एक बड़ी समस्या है महिलाओं के लिए। महिलाओं की बात हो, किशोरियों की बात है, या फिर छोटी बच्चियों की बात हो, या बच्चों की बात हो, तो एनीमिया की रोकथाम के लिए सही खान पान की क्या भूमिका है? और जन भागीदारी की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम लोग, या कम से कम बच्चियां, या कम से कम महिलाएं इस समस्या से ग्रसित हों?
0: ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के लिए अनीमिया की, क्योंकि लगभग 50% से ज्यादा महिलाओं में खून की कमी, जिसे कहते हैं हम आम भाषा में, और या हीमोग्लोबिन की कमी हो पाई जाती है। और इसमें खान पान का बहुत ही महत्व है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जिसे हम कहते हैं वो दो पार्ट में बनता है, एक उसका पार्ट है ग्लोबिन जो कि प्रोटीन होता है, और हीम जो कि जिसमें आयरन होता है। मगर इसके अलावा इसको बनाने में विटामिन B12, विटामिन C, काफी विटामिन का भी रोल रहता है। तो उसके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हम डाइट खाएं उसमें विभिन्न तरह के खाने इंक्लूड किए जाएं, खासकर प्रोटीन क्वालिटी पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जैसे मैंने बोला उसका आधा हिस्सा प्रोटीन से बनता है ग्लोबिन पार्ट। हम जो हमेशा से अनाज और दालों का मिश्रण खाते आए हैं, कम से कम उसको 4:1, 4 हिस्से अनाज में 1 हिस्सा दालों का या नट्स का, जो प्रोटीन रिच चीजों का होना चाहिए, उसको इंक्लूड करना है। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आयरन की हमारा अवशोषण, मतलब एब्जॉर्प्शन कम होता है, तो उससे रिलेटेड, उससे रिच बहुत ही लोकल फूड्स मिलते हैं हम अलग अलग जगह में, खासकर हरी पत्तेदार सब्जियां, उनको हमें अपने रेगुलर डाइट में इंक्लूड करना है। और
1: जी
0: उसके साथ विटामिन C वाली चीजें, अगर हम उसमें नींबू निचोड़ सकें, हम दालों को अंकुरित करके खा सकते हैं, उसमें हम नींबू निचोड़ सकते हैं, और हमें खाने के आधे घंटे पहले और बाद में चाय और कॉफी नहीं लेनी चाहिए, जिससे कि क्योंकि आयरन की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। और हमें कीड़ों से बचने की दवाई जो होती है हर 6 महीने में बच्चों को देनी है। इसके अलावा सभी छोटे बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए और धात्री महिलाओं के लिए, और जो महिलाएं 15 से 49 ईयर्स की एज में, उनके लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से IFA की टेबलेट्स दी जाती हैं, वो जिनको हर एक ग्रुप को किसी को हफ्ते में एक बार, किसी को रोज, किसी को हफ्ते में दो बार खाना होता है, तो जैसा उनके लिए सुनिश्चित किया गया है उसको लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग एनीमिया को एक समस्या नहीं समझते, वो देख नहीं पाते शायद
1: जी
0: उसके कॉन्सिक्वेंसेस, गोली मिलने के बाद भी वो धरी रहती है और लोग खाते नहीं है, तो गोली का भी अपना महत्व है और साथ में एक संपूर्ण आहार
1: जी
0: इन लोगों को और पूरी परिवार को भी खाना चाहिए, तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जन भागीदारी में जो परिवार के लोग हैं वो ये सुनिश्चित करें कि हमारी किशोरियां, हमारी बच्चियां, गर्भवती महिलाएं और धात्री महिलाएं ये गोलियां जरूर लें, जिससे उनमें अनीमिया की प्रॉब्लम ना हो।
1: डॉक्टर नीना, आज हम पोषण को केवल एक सरकारी योजना ना कह करके जन आंदोलन कहने की बात करते हैं कि ये जन आंदोलन है, जन भागीदारी है। परिवार हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, स्कूल हो, पंचायत हो या फिर स्थानीय समुदाय हो, तो इस अभियान में तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। आप ऐसा क्या कहना चाहेंगी कि सभी लोग मिलजुल करके इन समस्याओं से उबरने के लिए, हमारे बच्चों को उनसे उबारने के लिए प्रयास करने में और आगे आए?
0: हमारे देश में बहुत विभिन्नता है, यू नो, खाने की
1: जी
0: बहुत रिचनेस भी है, बहुत चीजें अवेलेबल हैं, और हम कश्मीर में रहते हैं कि हम गुजरात में रहते हैं, अलग अलग तरह के खाने ऐसे देश प्रदेशों में अवेलेबल हैं, और ये एक बहुत पर्सनल मैटर भी है कि हम जो खाएं, जो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे सभी परिवार और परिवार के जो बड़े हैं और मुखिया हैं वो खाना ऐसा सेलेक्ट करें जो कि पोषण के आधार पर सेलेक्ट करें और उसमें संपूर्ण ऊर्जा भी मिले, प्रोटीन भी मिले और सारे विटामिन और मिनरल मिले, और ये बहुत मुश्किल नहीं है। इसको अगर हम समझें तो हमारी थाली जो होती है उसमें आधा सब्जी और फल से भरें और बाकी आधे में हमें बाकी सभी चीजों, जिसमें से बाकी आधे का भी एक तिहाई अनाज हो सकता है, मगर उसके अलावा प्रोटीन, थोड़े नट्स, थोड़ी, अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो हमें नॉन वेजिटेरियन फूड, थोड़ा ऑयल, चीनी और दूध से बनी चीजें ये लेनी है, तो ये बहुत मुश्किल नहीं है जान पाना, क्योंकि हम देख सकते हैं। और इस जन भागीदारी को कराने के लिए हर एक परिवार को ये देखना है कि उनके परिवार में इस तरह का खाना बन रहा है, बहुत ज्यादा वसा युक्त, सॉल्ट युक्त और
1: जी
0: शुगर युक्त, जो आजकल बहुत प्रचलन हो गया है रेडी टू ईट फूड्स का और बहुत उसका, उनका हमें कम करके, बल्कि हमें अपने पारंपरिक खाने पे, जिनको हम भूलते जा रहे हैं, जैसे मोटा अनाज की भी बात है, तो इन्हीं डाइटरी प्रैक्टिसेस और इन्हीं चीजों को वापस सम्मिलित करें, खासकर गर्भावस्था और धात्री महिलाएं हैं या किशोरियां हैं या छोटे बच्चे हैं, उनके खाने पे और अधिक ध्यान दें, और सभी मिलकर ही इस समस्या का तभी समाधान हो सकता है। हर परिवार को इसको सुनिश्चित करना है
1: जी
0: और अपनी पर्सनल चॉइसेस के बेसिस पे करना है, जो कि
1: जी
0: बिल्कुल संभव है।
1: जी श्रोताओं, आपको बता दें कि तकनीक के इस्तेमाल से आज के समय में पोषण सेवाओं की निगरानी और भी बेहतर हुई है। आज हमारे पास पोषण ट्रैकर है जो बच्चों की वृद्धि, पोषण सेवाओं और लाभार्थियों तक योजनाओं की पहुंच की निगरानी करने में मदद कर रहा है। डॉक्टर नीना, हमसे चर्चा करने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी
2: धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे पोषण माह से जन भागीदारी तक पोषण के संदेश पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर नीना भाटिया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। Country-wise.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों का गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में आज जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
1: The council recommended removing arrest powers under GST.
2: जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
1: From 25,000 to ₹10,000।
0: कर फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब पर करदाता को वसूली, ब्याज और अनुपातित जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्यवाही के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बेहद आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
1: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा।
0: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार स्टेशन हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने के उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र AI और साइबर सुरक्षा, AI के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने देश की जनता को एक खुला पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि इसके केंद्र में निर्वाचन आयोग है और उच्च न्यायपालिका और वैधानिक एजेंसियां भी इससे अछूती नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीमों का शुभारंभ किया। ये भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं के नेतृत्व वाली सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। 2 दिन का विभागीय शिखर सम्मेलन आज शुरू हुआ। ये शिखर सम्मेलन सभी राज्यों के महिला और बाल विकास क्षेत्र के साथ राजनीतिक नेतृत्व और आधिकारिक संबंध की भागीदारी का साक्षी है। कनाडा की लेखिका एन कार्लसन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। उन्हें ये सम्मान साहसिक और कल्पनाशील लेखन के लिए मिला है। स्वीडिश अकादमी ने स्टॉकहोम में पुरस्कार की घोषणा की। पुरस्कार राशि 1,02,00,000 स्वीडिश क्रोनर यानी करीब 11.5 करोड़ रुपए है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने भारतीय पैरा तैराक और खेल जगत की जानी मानी हस्ती पद्मश्री से सम्मानित सत्येंद्र सिंह लोहिया से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मुरुगन ने कहा कि सत्येंद्र सिंह का साहस, दृढ़ता और खेल में बेहतरीन प्रदर्शन का प्रेरणादायक सफर देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता है। पीवी सिंधु आर्केटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय VC प्रमोद। The GST Council, during its 57th meeting in New Delhi today, approved a series of measures to ease compliance for taxpayers. The decisions include scrapping the arrest powers of tax officers under the GST regime and raising the threshold for prosecution from 5 crore rupees to 1 crore rupees. Finance Minister Nirmala Sitharaman made the announcement while addressing the media in the national capital this evening.
3: The council recommended removing arrest powers under GST. Council recommended raising the prosecution threshold from 1 crore to 5 crores and reducing the general penalty from 25,000 to rupees 10,000.
2: The punishment, whether a fine, imprisonment or both, will be left to judicial discretion in each case. A taxpayer who files a return late, makes a mistake or falls behind in payment will face recovery proceedings, interest and a proportionate penalty. The Finance Ministry said no changes has been made to GST rates at the meeting and that the rate structure is settled.

0: के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना बेहद आवश्यक है। श्री मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
1: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए, उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा।
0: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया।
1: डीप फेक कितनी बड़ी चुनौती बन चुकी है, ये भी हम देख रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इसके लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क पर काम करें। सरकारें, टेक्नोलॉजी कंपनी, टेलीकॉम ऑपरेटर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सभी को इस फ्रेमवर्क से जुड़ना होगा। मैं जीएसएमए और दुनिया के टेलीकॉम ऑपरेटर से भी आग्रह करता हूं, आइए एक ऐसा ग्लोबल मैकेनिज्म बनाएं जो ऐसे फ्रॉड को लोगों तक पहुंचने से पहले ही रोक सके।
0: प्रधानमंत्री ने आज कहा कि 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशन हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में सुविधा दी है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 से 12 वर्षों में मोबाइल फोन केवल आधुनिक संचार का माध्यम ही नहीं बना, बल्कि सुशासन का एक महत्वपूर्ण साधन भी बना है। भारत और रूस ने आज रक्षा क्षेत्र में भारत रूस सामरिक साझेदारी को सुदृढ़ बनाने के लिए मौजूदा सैन्य तकनीकी सहयोग और सह उत्पादन तथा सह विकास पहलों को आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा की। सैन्य तकनीकी सहयोग और रक्षा उद्योग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 24वीं कार्य समूह की बैठक के उद्घाटन सत्र का आयोजन आज नई दिल्ली में किया गया। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छिपाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कहा कि दुनिया 9 सितंबर 2008 के मुंबई और 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमलों को नहीं भूली है। एक रिपोर्ट।
2: संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रथम सचिव रघु पुरी ने कहा कि केवल घोषणाओं से आतंकवाद का खात्मा नहीं किया जा सकता। श्री पुरी ने आतंकवादियों, उनके वित्त पोषकों और समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने मसूद अजहर के अफगानिस्तान में छिपे होने के पाकिस्तान के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि तालिबान सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया है। श्री पुरी ने मसूद अजहर के बारे में सूचना देने के लिए 70 लाख रुपए के इनाम की नई घोषणा को भी दिखावा बताया। प्रमुख आतंकवादी हमलों का उल्लेख करते हुए श्री पुरी ने कहा कि आतंकवादियों को सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराना आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को कमजोर करता है। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारत और लाइबेरिया ने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ शिपिंग एंड सीफेयर्स S4 के सह अध्यक्ष के तौर पर जहाजों और नाविकों पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने एक संयुक्त बयान में खाड़ी और उसके आसपास के इलाकों तथा काला सागर में पिछले कुछ दिनों में व्यावसायिक जहाजों और नाविकों पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि समुद्री व्यापार में बाधा डालने वाली और निर्दोष लोगों की जान लेने वाली ये हरकतें किसी भी तरह स्वीकार नहीं है। दोनों देशों ने क्षेत्र में शांति अस्थिरता बनाए रखने के लिए ऐसे हमलों को तुरंत रोकने की मांग की है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। इटली की संसद ने आज देश की चुनावी प्रणाली में व्यापक बदलाव को अंतिम मंजूरी दे दी है। इससे प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक जीत मिली। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस प्रस्ताव को व्यापक रूप से इटली की राजनीतिक प्रणाली

0: को मजबूत करने और प्रधानमंत्री मेलोनी के नेतृत्व वाले मध्य दक्षिण पंथी गठबंधन की चुनावी संभावना को बेहतर बनाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। पिछले महीने इस गठबंधन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इटली की सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार होने का रिकॉर्ड बनाया था। सदन ने गुप्त मतदान में 227 वोटों के मुकाबले 164 वोटों से इस विधेयक को मंजूरी दे दी। इससे महीनों की गर्मागर्म बहस के बाद इस कानून को अंतिम संसदीय मंजूरी मिल गई। इस सुधार में एक बड़ा बहुमत पुरस्कार शामिल है। इसके अंतर्गत चुनाव पूर्व विजयी गठबंधन को संसद के दोनों सदनों में अतिरिक्त संसदीय सीटें दी जाएंगी, बशर्ते उसे कम से कम 42% राष्ट्रीय वोट प्राप्त हों। नए कानून के अंतर्गत इटली की मौजूदा मिश्रित चुनावी प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: कनाडा की लेखिका एन कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। उन्हें यह सम्मान शास्त्रीय परंपरा और समकालीन रूपों के मिश्रण से बने साहसिक और नवोन्मेषी कार्य के लिए मिला है। स्वीडिश अकादमी ने स्टॉकहोल्म में पुरस्कार की घोषणा की। पुरस्कार राशि 1.2 करोड़ स्वीडिश क्रोनर यानी करीब 11.5 करोड़ रुपए है। वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर अमेरिका के अधिकारियों ने आज जारी किए गए नए अभियोग में यातना और अन्य अपराधों का आरोप लगाया है। इससे मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों से जूझ रहे इस सत्तावादी नेता पर दबाव और बढ़ गया है। मादुरो पर पहले अमेरिका में कोकीन भेजने की साजिश में शामिल होने का आरोप था। अब मादुरो तेल समृद्ध दक्षिण अमरीकी देश के राष्ट्रपति के रूप में अपने शासनकाल के दौरान मानवाधिकारों के हनन के आरोपों का भी सामना कर रहे हैं। सुरक्षा बलों द्वारा काराकस स्थित घर से आधी रात को छापेमारी करके गिरफ्तार किए जाने के बाद मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस जनवरी की शुरुआत से न्यूयॉर्क की जेल में हैं। दोनों ने अपने और कई कथित सहसाजिशकर्ताओं के खिलाफ वर्षों पहले शुरू किए गए आपराधिक मामलों में खुद को निर्दोष बताया है। दोषी पाए जाने पर उन्हें आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और थरुण मान्यपल्ली पुरुष सिंगल्स में हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण फोन और नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना आवश्यक। डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। कहा, पाकिस्तान आतंकी गुटों को समर्थन देने को छिपा नहीं सकता है। इटली की संसद ने देश की चुनावी प्रणाली में व्यापक बदलाव को अंतिम मंजूरी दी। कनाडा की कवियत्री एनी कार्सन को शास्त्रीय परंपरा और समकालीन रूपों के मिश्रण से बने साहसी और नवोन्मेषी कार्य के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा। और पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I'm Renuka with the World News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says growing use of digital technology makes stronger phone and network security essential. Calls for global framework to tackle deep fakes and cyber frauds. India accuses Pakistan of doublespeak on terrorism, says Islamabad cannot gloss over support to terror groups. Italy's parliament gives final approval to a sweeping overhaul of country's electoral system. Canadian poet Anne Carson wins Nobel Prize in Literature for bold and innovative work blending classical tradition with contemporary forms. And in badminton, PV Sindhu sails into women's singles quarterfinal of Arctic Open at Vantaa in Finland. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that strengthening the security framework has become essential in view of the growing importance of telecom and digital technology. Mr. Modi stated this while inaugurating the 10th edition of the India Mobile Congress at